नानक के बोलिए तन मन फिका हो फिको फिका सदिया फिके फिकी सोय फिका दरगे सटी।

आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते धारी है देखे किता है अपना दर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरिया 9870 किलोहर्ट्स से तय खां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डी फ्रेडिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, विचूड़ा कुझु नितर आहे। थोरी देर में तव्हां हमेशह कलाम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ कुझु फिल्मी गीत, तंहिंखां पोइ तबसर खां पोइ फिल्मी गीत ऐं ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। हिन प्रोग्राम जी विचूड़ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर छो त भगत कलाम साहब खे ॿुधूं।

बारम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम थी रही आकाशवाणी की सिंधी सर्विस है हिंसर पेश है तबसरो भारत के मरकजी तजारत हुनर वजीर श्री पीयूष गोयल भारत ए अजबकिस्तान के व्यापारियों के गड़ी सीड़प कर गड़ी पैदावार कर गड़ी कर इनोवेशन कर नींड डनी 3 अगस्त 2026 से उन्होंने बितरफे व्यापार के इंदर 3 साल में बढ़ाने से पिण जोर दिनों खासकर बीणो कर नई दिल्ली में भारत उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम के खिताब कंदे वजीर बिन्हीं मुल्क मंझ हिकमत अमली भाईवारी जो बुनियाद है बाहिमी अकेले इज्जत ए खुशहाली के गडियल दूरंदेशी से व्यापार सीड़प ए माली सहकार के बढ़ाने जा घणा ही वजह मैसर कराए रही है। मीडिया जा कंदे श्री गोयल तो भारत उज़्बेकिस्तान न फकत पान में एक शाहूकार इतिहास के वंडन था पर पान में उन सकाफती गंढापन रखन था तई में कतम न आंदल व्यापार जा घणा ही वजह मौजूद है। उनका चो तो बितरफो व्यापार अंदाजन 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पार कर चुको है फिर भी बिन्हीं इक्तसादन मन जत है तेजो ही महज ही कुछ हिस्सों है। वजी चाह तो भारत उज़्बेकिस्तान के न फकत एक वो एंदड़ मार्केट जो लंग मैसर कर रहा है पर एक भरोसेमंद भाईवार तौर पिण एक स्किल्ड ए नौजवान वर्कफोर्स मैसर कर रहा है इनका अलावा इनोवेशन से आधारित तरक्की पिण ताजे थियल बाहमी सीड़प व्यापार करार जो भारत उज़्बेकिस्तान मंझ थो वजीर यो करार सीड़पकार अकीदे के बधाई ए बिन्हीं मुल्क मंझ व्यापार के हथी डी बई मुल्क एक बे के इक्तसादी में सीड़प कर लंबे अरसे की भाईवारी के अडे श्री गोयल घणन खेत्र के सुा तो जैमें जी कौत है उज़्बेकिस्तान भारतीय सीड़पकार के खाने के खेत्र में सुठा वजह मैसर कर रहा है उन रोशनी में आंदो तो कपड़न में तावन के बढ़ने ला जजा वजह मौजूद है होडा उज़्बेकिस्तान की जी कौत है सा कपड़े के पैदावार में है ए भारत की महारत कपड़े के हुनर में है सो बई मुल्क मिली कर कपड़े के पैदावार डिजाइन ए आलमी मार्केट में गड़ी कम कर सकता है। दवान ए सेहत सेवा में वजीर चो तो भारत के आलम की फार्मेसी कर सुतो वो है सो उज़्बेकिस्तान के हेल्थ केयर के पहुंचंदर दवान जरिए पहुंचंदर औजार डायग्नोस्टिक टेलीमेडिसिन डॉक्टर ए पैरामेडिकल से तबियत जरिए जदीद कर सकता है। उन्होंने चो तो रवायती सृष्टि में पिण सहकार थी सकता है जड़ो को आयुर्वेद योग यूनानी जिनको लगापो इतिहासिक तौर से उज़्बेकिस्तान में पिण रो है। जरिए खाधे के सुधारण में श्री गोयल चाह तो खाधे के सुधारण पैकेजिंग कोल्ड चेन ए एग्रीटेक में जजा वजह मौजूद है बिन मुल्क के कुर्मी के फायद रसंद एन आलमी मार्केट जो लंघ पिण मिल वजी पिण बुधा तो भारत उज़्बेकिस्तान के खबरचार टेक्नोलॉजी ए डिजिटल इकोनॉमी में सहकार डेण तैयार है। भारत उज़्बेकिस्तान के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में उत्साही है तेमें तवजा खेत्र फिनटेक एग्रीटेक ए मेडटेक ध्यान चकाई ने इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जदीद मैन्युफैक्चरिंग वाहन जा औजार ए वाहन से इंदड़ वक्त में सहकार जा वजह मैसर कराइंदड़ खेत्र वजीर ध्यान चकाने चाहिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान के सदर मंझ बितरफन रिश्तन के बढ़ाने लाइ गाली थी तो व्यापार बितरफे लागापन से होने खपे। श्री गोयल व्यापार के अपील कई तो वह वजह के अजाय न वजन दियन ए तजारती भाईवारी के अडन तो व्यापार में इंदड़ बंदिशन के दूर करण घुर्जे ए म्यूचुअल स्टैंडर्ड्स तिनके मान्यता दियण घुर्जे इन अलावा टेस्टिंग सर्टिफिकेट प्रोसेस ये सब एक कराण घुर्जन उनका तो सरकार एक वे अडावती वक्त अंदर नतीजे दियण वाले सिस्टम से कम कर रही है। हुनरी अगवान के खिताब कंदे वजीर चयो तो ये वक्त तहजो है गड़ी कर सीड़प कर गड़ी कर पैदावार कर गड़ी कर इनोवेशन कर या भाईवारी लंबे अरसे ती हलंदी बिन्हीं धुरन के फायद रसंद तकरीर के आखिर में वजीर चो तो उन उज़्बेकिस्तान आयल मेड़ की आजा कई ए खेन चो तो भारत उज़्बेकिस्तान माली भाईवारी
मजबूत व्यापार सीड़प ए व्यापारी ताउन जरिए अधिक पुख्ती थी तफसर बुधी रहा।

हल मूसा जाने खाओ मच्छी माने, हल मूसा जाने खाओ मच्छी माने। सैर कराया तो खे शहर घुमाया तो खे, लाल किलो घुमाया कुतुब मीनार घुमाया, इंडिया गेट दिसू जंतर मंतर दिसू।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी असां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरी औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले के बाद ये जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के

0: अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स और डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें हर दिन एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई उम्मीद लेकर होती है। लेकिन अक्सर हम अपनी भागदौड़ और कई सारी परेशानियों के बीच में जीने का असली मजा भूल जाते हैं, खुशी को महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।

दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह की पहली किरण को मुस्कुराकर देखा है, बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी है, किसी अपने के साथ खुलकर हंसे हैं या बिना किसी वजह के खुद को आईने में देखकर मुस्कुराए हैं? यही तो है जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ जो हमारे हर दिन को खास बनाती ही है।

और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीता वेरी गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर के साथ। जीने की खुशी की बात इसमें है कि अपने पास जो है उसकी कद्र करें। अपने परिवार के साथ बिताए गए कुछ पल, दोस्तों के साथ हंसी, किसी अनजान की मदद करना या फिर किसी से थैंक यू का शब्द सुनना बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये सब ऐसे पल हैं जो जीवन को बेहतर और खूबसूरत और ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

याद रखिए, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे शिकायतों में नहीं मुस्कुराहटों में बिताइए। दूसरों की खुशियों में शामिल होइए और सपनों को जीने की कोशिश कीजिए।

और दोस्तों, आज का दिन खूबसूरत है और इसे पूरी खुशी के साथ जिए, हमारी बस यही कामना है आपके लिए। जी हाँ, और अगली बार फिर हाजिर हो जाऊंगी, यानी आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर, आज खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आपका गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने

0: मामले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पांचवीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मान रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन तो बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद ऋषिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं नवेश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एनसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। यह चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals, who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
7: According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian-flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
6: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise.
8: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
6: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussion on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers' meeting. Here is a report from our correspondent.
9: Bhopal is hosting a major BRICS cultural meeting from today. The four-day event being held under India's BRICS presidency will continue till the 8th of August. It includes meetings of the BRICS Culture Working Group and BRICS Culture Ministers. The city has been specially decorated for the event. VIP Road and Bhop Setu have been beautified with fresh paint and murals. The first 2 days are for discussions among senior officials. The last 2 days will have the meetings of culture ministers who will finalize a joint declaration. India has placed two important proposals before the member countries. One is to create a shared digital platform for artists and cultural heritage. The second is to encourage joint UNESCO nominations by BRICS nations. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
6: Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the 3rd BRICS Senior Officials meeting will also be held from today till the 7th of this month in Bhubaneswar, Odisha. Education Ministry said these meetings will bring together education ministers, senior officials and delegates from BRICS member countries. The Reserve Bank of India, RBI, will announce its bi-monthly monetary policy review today. RBI Governor Sanjay Malhotra will announce the latest repo rate decision in Mumbai at 10 a.m. Monetary Policy Committee, MPC, of the Central Bank began its three-day meeting on Monday. The policy decision comes at a crucial juncture amid persistent geopolitical tensions and a hawkish U.S. Federal Reserve. The RBI is expected to hold the core repo rate unchanged at 5.25%. The repo rate is the interest fee the RBI charges when it lends money to commercial banks. The central bank in its commentary will lay out the inflation risks, crude oil prices and global geopolitical uncertainties that may affect the Indian economy. The Supreme Court yesterday directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded

0: inspected several flood-affected areas, and reviewed the condition of educational institutions impacted by flood. During the visit, the Chief Minister handed over checks of Rs 5 lakh each as one-time financial assistance to the next of kin of 10 persons who lost their lives in the devastating floods. Rakesh Dole, Akashvani News, Guwahati.
1: In Kerala, heavy rain will continue across the state today, although the intensity is expected to be lower than yesterday. Many parts of the southern districts of the state had already received up to 15 millimetres of rainfall by this morning. Rain warnings have also been issued for all districts tomorrow. Meanwhile, the IMD has forecast heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand and Madhya Pradesh till tomorrow. Parts of Delhi witnessed light drizzle early in the morning. The IMD predicted generally cloudy sky with very light to light rainfall at many places of the national capital during the day. On to sports. In badminton, star Indian shuttler PV Sindhu will be the ninth seed in the women's singles event at the BWF World Badminton Championships 2026, scheduled to be held at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi from 17th to 23rd August. India's highest seeded entry at the World Badminton Championships will be the men's doubles pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty, who have been handed the fifth seed. Former World Championships bronze medalist Lakshya Sen is seeded 14th in men's singles, while Dhruv Kapila and Olympian Tanisha Krasto are the 15th seeds in mixed doubles. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
2: Thank you, Anuja. Stressing coordinated action, the Supreme Court seeks wider adoption of grievance and money restoration modules to ensure quicker relief for cybercrime victims. The Pioneer says, SC gives RBI 4 weeks to frame standard operating procedure on cyber fraud accounts. Qatar and US see progress in talks to end Iran war, while in the Sun Times reports, 13 Indians rescued as vessels sinks after attack off coast of Yemen. A headline in the Tribune writes about sex ratio at birth falling to 900 in first half of current year. The paper adds, Karnal tops with 945, Charki Dadri lowest at 829. Strongly criticizing Pakistan over its recently conducted so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, the statesman writes, India dismisses POJK polls as complete farce. All the dailies have covered the news of passing away of educationist, philanthropist and ex-governor of Tripura, Bihar and West Bengal, Padma Shri Dr. D.Y. Patil at the age of 90. And finally, Gen Z may help drive digital gold rush, states the Economic Times, as the savvy Gen Z emerges as the fastest growing consumer. With that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India flagship sinks after attack in Red Sea, all 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG Counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। अदा खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पश्चिम बंगाल जहाज हमले के बाद गर्क हो गया है। तेरह भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी तिमाही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के बैठने मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ आर्मी चैंपियनशिप के लिए नया मकाम, जबकि सत्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पांचवा मकाम हासिल किया है। खबरें तफसील से। यमन के साहिल के नजदीक बहर अहमर में कल भारत का परचम बरदार तिजारती जहाज MCV फैज़े नूरे औलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरा जिनमें 13 भारतीय शहरी थे उन सभी को बचा लिया गया है। तफसील हमारे नामनिकार से।
4: रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचम बरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तिजारती जहाज पर इस इश्तियाल अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि खत्ते में तिजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खत्ते में तिजारती जहाज रानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खत्ते की बैन अवी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आजाद और बिला रुकावट जहाज रानी और तिजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाक भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
3: भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नाम नहाद मकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करा दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दोनों को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में उहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक चार रोजा तबादले ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। हमारे नामनिकार की एक रिपोर्ट।
5: यह चार रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनद की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वजराय सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खासतौर पर तजयीन कारी की गई है। वीआईपी रोड और भोज सेतु को ताजा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादले ख्याल करेंगे और बाद के दो दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग मुनद होंगी। वजरा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। अपने रुकन मुल्कों के सामने दो अहम तजावीज रखी हैं जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वरसे के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफार्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
3: ब्रिक्स के वज़ीरे तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 30वीं मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनद की जाएगी। वजारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वजराय तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम, नीज हुनरबंदी को मुस्तहकम बनाने, तआवुन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक, इख्तरा, नीज स्टार्टअप्स को फरोग देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वजराय तालीम की इस 13वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपने माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर दो महीने में एक बार किया जाता है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताजातरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुतालिक यह फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के वफाकी बैंक की पॉलिसी में जारहियत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि आरबीआई अपने रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब यह होगा कि माली पॉलिसी से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी एमपीसी अपना गैर जानबदाराना मौकिफ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात जर से मुतालिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई और सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मीशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मयारी तरीकेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इस कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रुपए पैसे की बहाली में तेजी लाएं और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसिल कमेटी एमसीसी आज नीट यूजी काउंसिलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सुबह 3 बजे तक की जा सकेगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को 24 ब्लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतायज का ऐलान 17 अगस्त को होगा। सीट अलॉट किए गए उम्मीदवारों को 18 से 22 अगस्त के दरमियान मुतालिका इदारों में रिपोर्ट करना होगा। इस अमल में हिस्सा लेने वाले इदारे रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के डेटा की 23 अगस्त को तस्दीक करेंगे। काउंसलिंग के अमल की शुरुआत से पहले वजारत सेहत ने मरहलावार ट्यूटोरियल वीडियो जारी किए हैं ताकि उम्मीदवार एमसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मुतबादिल फराहम करना और सीट अलॉटमेंट के तरीकेकार को समझ सकें। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
3: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुहैया मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। रिपोर्ट।
5: मुजाहरीन ने दावा किया कि तेज धूप में भी मुजाहरी की जगह पर रहने के बावजूद उन्हें पीने के पानी, खुराक और बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। दिफा के मरकजी वजीर ममलिकत और रांची के रुकने पार्लियामेंट संजय सेठ ने इस मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में मुकम्मल बेहिसी का मुजाहरा किया है और अब तक हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात नहीं की है। मुजाहरों के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों की कमी पर इजहार ख्याल करते हुए गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन की कयादत वाली हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने इम्तिहान के दौरान सीटों की फरोख्त का संगीन इल्जाम लगाते हुए भर्ती के अमल का नज्म करने की हुकूमत के तरीकेकार पर सवाल उठाए। तलबा ने पेपर लीक और एहतजाज के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों के फुकदान का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज जारी रखने के अपने अजम को दोहराया है। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
3: उत्तर प्रदेश सरकार रियासती रोडवेज की बसों में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
4: उत्तर प्रदेश हुकूमत के पहले सप्लीमेंट्री बजट में माली साल 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहल को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रूपये मुख्तस किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस पहल का वादा किया था। इस फैसले के जरिए रियासत भर की लाखों मुअम्मर खवातीन शहरियों को माली तौर पर राहत मिलेगी और वो मजहबी, सामाजिक, खानदानी और सेहत देखभाल से मुतालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सफर कर सकेंगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
3: भारत के महकमे मौसमियात ने आज आसाम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाज मकाम पर शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। आज सुबह दिल्ली के बाज हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। आरएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में आज उमूमी तौर पर आसमान अबरूद रहेगा और मुतअद्दिद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। आज केरल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसकी शिद्दत

0: इलाकों में 15 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से 23 अगस्त के दरमियान मुनक्किद होने वाली BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान साबिक चैंपियन पीवी सिंधु के खवातीन के सिंगल मुकाबलों में दर्जाबंदी 9 है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की सबसे आला दर्जेबंदी मर्दों के डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिली है, जो 5 है। साबिक आलमी चैंपियन और कांसे का तमगा जीत चुके लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स में 14वें नंबर पर, जबकि ध्रुव कपिला और ओलंपिक खिलाड़ी तमिशा क्रेस्टो मिक्स डबल्स में 15वें नंबर पर हैं। ताइपे ओपन में खवातीन के सिंगल्स की चैंपियन तन्वी शर्मा और साबिक आलमी नंबर 1 किदांबी श्रीकांत समेत भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी आज से जनूबी कोरिया के आसान में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मौसम गर्मा के दौरान सालाना तौर पर अमृत उद्यान इस महीने की 16 तारीख से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग अमृत उद्यान की सैर 15 सितंबर तक कर सकते हैं। इस दौरान ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और इसमें दोपहर 5 बजे तक दाखिल हुआ जा सकेगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आने के साथ हैं करीम अहमद।
1: शुक्रिया सीन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में होने वाले बलदियाती इंतखाबात को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत अपनी खुदमुख्तारी और सरहदों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी कदम उठाएगा। वजारत खारजा ने नाम निहाद बलदियाती इंतखाबात को मजहका खेज और दिखावा करार दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। रोजनामा इंकलाब की अहम सुर्खियां इस तरह हैं, यूपी हुकूमत ने असेंबली में 59,000 करोड़ रूपये का जिमनी बजट पेश किया। दारुलहुकूमत का AQI मुसलसल 5वें दिन इत्मीनान बख्श रहा।
0: भारत का पश्चिम बंगाल जहाज बहरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। यूरोपीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा है कि वह फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के बुनियादी तौर तरीके तैयार करे। 2026 की नीट UG काउंसिलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महत्व मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शरीर बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए नया मकाम, जबकि सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मकाम हासिल किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम, शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। गायन कलाकार हैं अपूर्वा तिवारी और आज का राग है मियां की तोड़ी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। गायन कलाकार थे अपूर्व तिवारी और राग था मियां की तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब कार्यक्रम का वक्त हुआ है साइंस मैगजीन का, तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

अहम नजर डालें आज की इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबह ही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप शब्द सुन सकेंगे। 9:45 पर सुनेगा प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें नश्र होंगी 9:50 पर और 10 बजे आप सुन सकते हैं प्रोग्राम शम्मी फरोजा। 10:05 पर हम पेश करेंगे उसने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गीतों भरी कहानी चाहतों के रंग। 11 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। 11:30 पर सुनिएगा ड्रामा नाटक दर नाटक। दिन में 12 बजे खबरों का वक्त होगा और 12:10 से मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम नश्र किया जाएगा। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नश्र होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर आज की मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों पर।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। आज के प्रोग्राम में सुनिए बलजीत सिंह और गुरमीत सिंह का गाया हुआ ये शब्द।

कभी का समय है, कभी का समय है।

गानक ने उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का सम्मान भी मिला। एक दिन चलते चलते यूं ही ढुलक जाएगी गर्दन, सबसे ज्यादा दुख सिर्फ चश्मे को होगा। ये पंक्तियां हिंदी के चर्चित कवि वीरेन डंगवाल की कविता कैसे जिंदगी जिए से है। इस कविता में कवि एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की विडंबना और अकेलेपन को सामने रखते हैं जो भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेला है और अपनी ही उलझनों में घिरा हुआ है। वीरेन डंगवाल की कविताओं में आम आदमी और रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां सहज भाषा में दिखाई देती है। इसी दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठा और स्याही ताल उनके प्रमुख कविता संग्रह है। दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए उन्हें 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कुछ कलाकार पर्दे पर किरदार निभाते हैं और कुछ अपने अंदाज से उन किरदारों को यादगार बना देते हैं। काजोल का नाम ऐसी ही अभिनेत्रियों में लिया जाता है। आज काजोल अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं। काजोल ने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और फना जैसी फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभाई। उन्हें 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुके हैं और 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। अगर काजोल के अभिनय की किसी एक खासियत की बात करें तो वे है भावनाओं की सहजता से पर्दे पर उतार देना। यही वजह है कि उनकी कई भूमिकाएं आज भी दर्शकों की स्मृतियों में ताजा है। आइए काजोल के जन्मदिन को थोड़ा और खास बनाते हैं उनके यादगार गीतों के साथ।

0: सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे और अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत का परचम बरदार जहाज बुहरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मयारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 के नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ आर्मी चैंपियनशिप के लिए 9वां मुकाम जबकि सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मुकाम हासिल किया है। यमन के साहिल के नजदीक बुहरे अहमर में कल भारतीय परचमबरदार तजारती जहाज MSV फैज नूर औलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरानों को, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, बचा लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचमबरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनोवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तजारती जहाज पर इसे इश्तियालंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि खत्ते में तजारती जहाजरानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि खत्ते में तजारती जहाजरानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खत्ते के बैन अलाकवामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आजाद और बिला रूकावट जहाजरानी और तजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वजारत ने कहा कि रियाज में वाकई भारतीय सिफारत खाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुकाम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नामनिहाद मुकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाली ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के 2 तरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोजा तबादले ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। ये 4 रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक़िद की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग शामिल है। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ीनकारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताजा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई 2 रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादले ख्याल करेंगे और बाद के 2 दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग मुनाकिद होंगी। वज़रा एक मुश्तरका ऐलानी को कतई शक्ल देंगे। ब्रिक्स के वज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 3री मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक़िद की जाएगी। वजारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रूपी मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान आज करेगा। इस माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान हर 2 महीने में एक बार किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ताजा तरीन रेपो रेट के फैसले का ऐलान मुंबई में सुबह 10 बजे करेंगे। पॉलिसी से मुतालिक ये फैसला एक ऐसे वक्त किया जा रहा है जब जोग्राफियाई व सियासी कशीदगी का सिलसिला जारी है और अमरीका के विफाकी बैंक की पॉलिसी में जारहीत का रुझान पाया जाता है। उम्मीद है कि आरबीआई अपनी रेपो रेट 5.25% में कोई तब्दीली न करे। इसका मतलब ये होगा कि माली पॉलिसी से मुतालिक 6 रुकनी कमेटी एनपीसी अपना गैर जानबदाराना मौकफ बरकरार रखे। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से आयद सूद की वो फीस होती है जो वो कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देते हुए वसूल करता है। रिजर्व बैंक अपने तबसरे में इफरात जर से मुतालिक उन अंदेशों, खाम कीमतों और आलमी जोग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी हालात का जिक्र करेगा जो भारतीय मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को हिदायत दी है कि वो फर्जी खातों और साइबर घोटालों वाले बैंक खातों से निपटने के लिए एक मियारी तरीकेकार तश्कील दे। अदालत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों इस कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी हिदायतें जारी की हैं कि वो शिकायतों के इजाले को मुस्तहकम बनाएं, घोटालों से बचाए गए रूपए पैसे की बहाली में तेजी लाएं और डिजिटल घोटालों के केस से निपटने के अमल को बेहतर बनाएं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी आज नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। शेड्यूल के मुताबिक पहले राउंड का रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी इस महीने की 12 तारीख को सहपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। उम्मीदवार 6 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान अपने मुतबादिल फराहम कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए 12 और 13 अगस्त को चॉइस लॉकिंग सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दौरान 13 से 16 अगस्त के दरमियान पहले राउंड की सीटों का अलॉटमेंट होगा। नतीजे का ऐलान 17 अगस्त को होगा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के इम्तिहान में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा के मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। रांची में हजारों उम्मीदवार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिन से गैर मुबैना मुद्दत का एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहरीन ने दावा किया कि तेज धूप में भी मुजाहरे की जगह पर रहने के बावजूद उन्हें पीने के पानी, खुराक और बैतुलखला जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। वफाकी मरकजी वजीर ममलिकत और रांची के रुकने पार्लियामेंट संजय सेठ ने इस मामले पर अपोजिशन की खामोशी पर नुक्ताचीनी की है। मुजाहिरों के मुकाम पर बुनियादी सहूलतों की कमी पर इजहार ख्याल करते हुए गोड्डा के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन की क्यादत वाली हुकूमत को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश हुकूमत रियासती रोडवेज की बसों में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करेगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत के पहले सप्लीमेंट्री बजट में माली साल 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की पहल को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रूपये मुख्तस किए गए हैं। भारत के महकमे मौसमियात में आज आसाम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाज मुकाम पर शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। आज सुबह दिल्ली के बाज हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। आईएमडी के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत में आज उमूमी तौर पर आसमान अब्र आलूद रहेगा और मुतअद्दिद मुकाम पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से 23 अगस्त के दरमियान मुनाकिद होने वाली बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान साबिक चैंपियन पीवी सिंधु की खवातीन के सिंगल्स मुकाबले में दर्जाबंदी 9 है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की सबसे आला दर्जे बंदी मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिली है जो 5 है। खास खास खबरों एक बार फिर, भारत का परचमबरदार जहाज बुहेरे अमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सुबह अपनी 2 माही माली पॉलिसी के जायजे का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से कहा है कि वो फर्जी और साइबर घोटाले वाले खातों से निपटने के लिए कामकाज के मियारी तौर तरीके तैयार करे। 2026 के नीट यूजी काउंसलिंग के पहले मरहले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो रहा है। भारत के महकमे मौसमियात ने आसाम और मेघालय में आज बहुत शदीद बारिश से आगाह किया है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के लिए नौवां मुकाम जबकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पांचवां मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश है अखबारी जरिए का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: मौजूदा कायनात में इंसान सबसे आला अफजल और अशरफ तरीन मखलूक है, वहीं दूसरी तरफ एक समाजी व सकाफती जानदार भी है। वो तन्हा अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता, पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के तमाम शोबों में वो एक दूसरे का मोहताज है। यही वजह है कि उनके माबैन इमदाद बाहमी का जबरदस्त जज्बा पाया जाता है। चूंकि इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ मामला दरपेश होते हैं जिसकी वजह से आपसी इख्तलाफात रोनुमा होते हैं और जंगो जिदाल, जुल्म व ज्यादती, नाइंसाफी, हक तल्फी तक ये बात पहुंच जाती है जिसकी वजह से इंसानी समाज मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंच जाता है और लोग इंसाफ के हसूल के लिए दर दर भटकते रहते हैं और इस तरह समाजी ताने बाने बिखरने लगते हैं। ये मामला घर से शुरू होता है और गांव, शहर, मुल्क और बैन अल-अक़वामी सतह तक पहुंच जाता है। चूंकि हर मुल्क में मुख्तलिफ मजाहिब, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ कौमें रहती हैं जहां उनके दरमियान लिसानी और तहसीबी तजादों फितरी अमर हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में गांव में पंचायत सतह से लेकर ब्लॉक व जिले सतह तक, फिर सूबाई और मुल्की सतह तक अदल व इंसाफ के लिए इदारे कायम किए जा चुके हैं। यहां तक कि बैन अल-अक़वामी अदालत का क्याम अमल में लाया जा चुका है ताकि कोई भी इंसाफ से महरूम न रहे। तारीख आलम का मुताला करने से ये बात रोज रोशन की तरह आया हो जाती है कि दुनिया की तमाम कदीम जदीद मजाहिब के अंदर भी अदल इंसाफ को बुनियादी हैसियत अदा की गई है। इस तरह तमाम कदीम जदीद ममालिक में भी अदल इंसाफ पर मबनी कवानीन और जवाबित मौजूद हैं। चूंकि अदल इंसाफ के बगैर मुल्क व समाजी खुशहाली का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए हर जमाने में अदल इंसाफ का निजाम कायम रहा। आलमी मजाहिब के तमाम मजहबी पेशवाओं ने

मेघत का ताल्लुक एक औसत घराने से है। बचपन में ही उसकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है। मेघत की देखभाल के लिए उसके वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं। शुरू में मेघत की नई माँ उसे खूब प्यार दुलार से पालती है, पर जब उन्हें पता चलता है कि वो खुद भी माँ बनने वाली है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनी औलाद होने की खुशी से ही वो फूली नहीं समाती। मेघत की माँ एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए उन्हें घर के कामकाज की आदत नहीं है। मेघत पर भी वो खूब हुक्म चलाती है। मेघत की छोटी बहन रिमशा के पैदा होते ही मेघत की सौतेली माँ का सारा वक्त उसकी देखभाल में बीतने लगता है। अब मेघत का काम और बढ़ जाता है। अब उसे घर के कामकाज के अलावा छोटी बहन रिमशा की भी देखभाल करनी पड़ती है। अब वक्त की कमी की वजह से उसका स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। उसे न खाने का होश रहता है न कपड़ों का। सारा सारा दिन वो घर के कामों में ही मसरूफ रहती है। मेघत के वालिद अपनी बेटी पर होते हुए ये जुल्म देखते हैं, पर मुंह से कुछ नहीं कह पाते। मेघत जब काम करते करते थक जाती है तो कमरा बंद करके अपनी बेबसी पर खूब रोती है।

राहिल को पाकर निगहत अपने सब गम भूल जाती है। एक दिन राहिल को आने में थोड़ी देर हो जाती है तो निगहत बेचैन हो जाती है। यही हाल राहिल का भी होता है जब निगहत को आने में देर हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दोनों एक दूसरे को पाकर इस दुनिया को भूल जाते हैं।

इधर निघत की बहन रिमशा भी बड़ी हो गई है। उसकी माँ को उसकी शादी की फिक्र है। उसकी वालिदा उसकी शादी ऊंचे घराने में करना चाहती है। वो अपने चचा जाद भाई के लड़के आजम से रिमशा की शादी करना चाहती है। निघत के वालिद राहिल से निघत की शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बीवी से ये बात कहते हुए डरते हैं। एक दिन निघत सोचती है कि वो अपनी और राहिल की मोहब्बत के बारे में अपने वालिद को सब कुछ साफ साफ बता देगी। तभी उसकी वालिदा से उसे पता चलता है कि कल रिमशा को देखने उनके चचा जात भाई का लड़का आजम आने वाला है, तो वो चुप हो जाती है। निघत की वालिदा आजम की बहुत खातिर तवाजी करती है और रिमशा को सजा संवार कर

एक बार आजम फोन पर निघत से कहता है कि वो सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहता है। वो शाहीन बाग में आकर उससे मिल ले, उसके बाद वो कभी उससे फोन नहीं करेगा। निघत कुछ सोचकर उसे मिलने के लिए हाँ कर देती है। निघत और आजम की बातचीत उसकी वालिदा दूसरे फोन पर सुन लेती है। उन्हें कुछ शक हो जाता है। वो निघत का पीछा करती हैं और बाग में पहुंच जाती हैं। आजम निघत से कहता है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और शादी भी तुम्ही से करना चाहता हूं। तब निघत उसे समझाती है कि रिमशा यानी मेरी छोटी बहन बहुत ही बासलाहियत लड़की है। उसके दिल में आपके अलावा कोई नहीं है। जो मोहब्बत आपको उससे मिलेगी वो किसी और से नहीं मिल सकती। मुझे आप में इस तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा आप मुझसे मिलने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। तब आजम निघत से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि रिमशा मुझे इतना पसंद करती है। आपने अच्छा किया मुझे बता दिया। जब निघत की वालिदा ये सारी बातें अपने कानों से सुनती है तो उन्हें अपने किए पर बहुत शर्म आती है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि निघत, जिस पर उन्होंने इतने जुल्म किए, उसके दिल में रिमशा के लिए इतनी मोहब्बत है। उसी वक्त वो दौड़कर निघत को अपने गले से लगा लेती है और उससे रो रो कर माफी मांगती है। निघत भी उसके गले से लग जाती है। निघत फिर से सेंटर ज्वाइन कर लेती है। इस तरह निघत और राहिल फिर मिलने लगते हैं।

जब निघत की वालिदा को पता चलता है कि निघत राहिल को पसंद करती है और वो भी उसे पसंद करता है, मगर राहिल के वालिद को इस शादी से इनकार है, तो वो निघत से कहती है कि मायूस न हो। वो राहिल के घर जाकर उसके वालिद से बात करेंगी और उन्हें मना लेंगी। निघत की वालिदा जब राहिल के घर रिश्ता लेकर पहुंचती है तो वहां पर उसकी अपनी बचपन की सहेली को देखकर हैरान हो जाती है। वो खुशी से पागल हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो ही राहिल की माँ है। दोनों पुरानी सहेलियां बड़े प्यार से एक दूसरे को गले मिलती हैं और अपनी अपनी कहानी सुनाती हैं। जब राहिल की वालिदा को पता चलता है कि निघत उन्हीं की बेटी है तो वो फौरन शादी के लिए हाँ कर देती हैं। इस तरह निघत और राहिल की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है।

अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी चाहतों के रंग, पेशकश थी कौसर नसीम की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में ये नगमा था राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आशा भोसले और साथियों को सुनिए फिल्म है कहो ना प्यार है।

राज फिल्म का नाम आपने सुना अलका याग्निक का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए आप सुनिए जनाब गुलशन खान शानी का तहरीर करदा नाटक ड्रामा, उन्वान है नाटक दर नाटक।

0: आखिर पहुंच ही गए मंजिल मकसूद पर। कुली को देखी किसी कुली कुली भाई, ये सामान उठाओ। नहीं नहीं, इसे रहने दो, इसे मैं लिए चलता हूँ। चलो चलो आओ।
1: अरे कुणाल, तुम यहाँ?
2: कहिए हुजूर, इस कदर लदे फंदे कहाँ से?
0: अरे यार कुछ ना पूछो, घर से लौट रहे हैं छुट्टी गुजार कर। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये समझ लो फिर सुबह मक्तल। लेकिन तुम यहाँ कहाँ? तुम आ रहे हो या जा रहे हो या?
2: आ रहा हूँ तुम्हारे साथ इसी ट्रेन से।
3: और सुनाओ तुम कैसे हो?
0: अरे बस क्या सुनाना है, यूँ समझ लो चलती का नाम गाड़ी है। वो दिन हवा हुए जब खलील मियाँ फाकता उड़ाया करते थे। लेकिन यार तुम यहाँ कैसे? क्या किसी नॉवल के किरदार की तलाश है?
2: यही समझ लो, सोचा तुम्हारा लोहे का शहर भी देख लिया जाए। इस लोहे के शहर में लोग अपने आप को किस हद तक बनाए हुए हैं, या बनाए हुए भी हैं या नहीं, वो
0: तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ?
2: पता नहीं, तुम्हें अभी देखा नहीं ना, क्या राह चलते मिलना देखना कहाँ जा सकता है।
0: तो साथ चलकर देख लो, कलमकार और मशीन मैन का साथ बुरा नहीं होगा।
2: क्यों चल रहे हो ना? तेरा, लेकिन फिर कभी सही।
3: फिलहाल तो मुझे कहीं और पहुंचना है।
0: कहीं और यानी?
2: कहीं और यानी कहीं और, क्या बताना जरूरी है?
0: हरगिज नहीं, फिर कभी सही। चलो भाई कुली, अच्छा भाई चलता हूँ, बाय
2: बाय बाय।

0: रेखा रेखा
1: कुणाल, हेलो कुणाल।
0: हेलो वर्षा।
1: हेलो कुनुलिया, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। मैं तो
0: तुम इतनी घबराई हुई और परेशान क्यों हो? अरे पता मेरे पास था, मैं पहुंच ही जाता।
1: हाँ लेकिन अचानक खपला हो गया और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। सीधे भागकर मैंने मिसेस वालिया को पकड़ा। अरे मैंने तुम लोगों का तारुफ तो कराया ही नहीं। ये है मिसेस वालिया, मेरी फ्रेंड, और इंदु यही है कुणाल सक्सेना। हेलो
0: हेलो।
1: सुनो अब एक काम करें, रिक्शे वाले को यही छोड़ देते हैं और पैदल ही निकल चलते हैं।
0: ठीक है चलो।

0: अब सुनाओ क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लगता है जैसे भागती भी आई हो।
1: कुन्नू डियर, पता नहीं तुम मुझे माफ भी कर पाओगे या नहीं। दरअसल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज अचानक इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, वरना मैं तुम्हें लिखती ही क्यों। मालूम है इस वक्त घर पर कौन कौन है? मेरे पति हैं, बच्चे हैं, छोटा भाई है और है बीमार माँ।
0: तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं वापस लौट जाता हूँ।
1: वो बात नहीं है डियर, मैं क्या तुम्हें वापस भेजने आई हूँ? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि फिलहाल तुम्हें अपने घर पहुँचने से रोक दूँ। दरअसल हुआ ये कि माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और छोटा भाई उन्हें लावनी एम्बुलेंस में लादकर यहाँ ले आया है।
0: अच्छा ये बताओ मुझे क्या करना है?
1: अब कुछ नहीं, बस घंटे आठ घंटे के लिए रुकना होगा। अब क्या ये नहीं हो सकता कि तुम यहाँ शहर के किसी रेस्तरा या सिनेमा में एक आध घंटा निकाल लो और मेरा इंतजार करो?
0: सॉरी बच्चा, ये तो मुझसे होगा नहीं। ये शहर मेरे लिए बिल्कुल नया है और रेस्टोरेंट वगैरह में भटकना मुझे अच्छा नहीं लगता।
1: कारखाना नहीं देखोगे? देखो यहाँ कितना बड़ा काम हो रहा है और किस तरह।
0: मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि।
1: अच्छा अच्छा ना सही, लेकिन डियर इस तरह नाराज नहीं होते। अच्छा एक काम करते हैं, तुम मिसेस वालिया के साथ चले जाओ और इतने में मैं घर जाकर देखती हूँ कि क्या हो सकता है। क्यों इंदु, ठीक है ना?
2: हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था। आइए कुणाल जी।
0: इनके साथ?
1: हाँ क्या हर्ज है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये मेरी पक्की सहेली है।
0: हाँ लेकिन मैं इनके साथ।
1: अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं कहीं दूर नहीं जा रही। अच्छा कुणाल, ओके इंदु।

0: मिसेस वालिया, दोपहर में आपका शहर उनता है।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, देख लीजिए, बिल्कुल एक सी पीली इमारतों का शहर, गलियां, सड़कें, चौराहे, मोड़, सब बिल्कुल एक जैसे, गोया ये बस्ती ना हो, एक जैसे पेड़ों का जंगल हो। ऐसे आपको ताज्जुब होगा, जब मैं स्टेशन पर उतरा तो हैरान रह गया, इतना नामवार सनती शहर और ऐसा वीरान स्टेशन, यकीन करना मुश्किल था कि बाहर ही लोहे का शहर खड़ा है।
1: अगर ये लोहे का शहर है तो बेजान हुआ ना।
0: क्या आसमान ऐसा होता है, धम्मन भट्टियों और लोहे की चिमनियों से बिंधा हुआ?
1: अरे भाई, ये मजदूरों की बस्ती है, लोग इस वक्त कारखाने में होते हैं।
0: पता नहीं यहाँ रहते हुए लोगों को कैसा लगता होगा। अच्छा बताइए, क्या ये अजीब बात नहीं कि मकान को उनकी मकानियत से नहीं बल्कि नंबरों, दरवाजे, खिड़कियों पर लगे पर्दों से पहचाना जाए?
1: बस वो आ गया, वो साइन बोर्ड के पास कोने वाला क्वार्टर।
0: आपका?
1: नहीं, मेरा घर तो पीछे रह गया, याद नहीं थोड़ी देर पहले आपको बाहर ही रोक कर मैं जिस मकान में थोड़ी देर के लिए गई थी।
0: हाँ, लेकिन तब आपने कहाँ बताया था कि वो आपका घर है? मैंने सोचा कि शायद आप किसी से मिलने गए हैं।
1: असल में हम लोग वहीं चलने वाले थे, वर्षा से तय भी ये हुआ था, लेकिन तब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मिस्टर वालिया की आज इवनिंग शिफ्ट है और वो कभी भी आ सकते हैं।
0: फिर
1: क्या, आशा कुलकर्णी के यहाँ चल रहे हैं।
0: ये आशा कुलकर्णी कहाँ से आ गई?
1: आई नहीं, वो यही थी, बहुत भरोसे की सहेली है, हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंड, खासकर वर्षा उन्हें बहुत मानती है। अरे आप परेशान तो नहीं हो रहे ना?
0: अब कैसे कहूँ,
1: मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर की तो बात है, मुश्किल से एक आध घंटा, इतने में एम्बुलेंस चली जाएगी और मिस्टर साथी भी वापस दफ्तर लौट जाएंगे, फिर आशा के यहाँ से वर्षा का घर भी बहुत पास है, वो देखिए, वो रहा सारथी का क्वार्टर।
0: मिसेस वालिया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वर्षा ने ये सब क्या नाटक फैला रखा है, अगर इतनी उलझन थी तो मुझे बुलाया क्यों, पंजे साल के पीछे पड़ गई थी और अब यहाँ। तो ये भी कोई बात हुई कि आदमी को गेंद की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में उछाला जाए? मैं माफ कीजिए, इससे बेहतर तो ये है कि मैं वापस लौट जाऊंगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, वर्षा को बहुत तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ कि आज का वो कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, फिर वक्त ऐसा और इतना कम कि आपको आने से रोका भी नहीं जा सकता था, घबरा कर मेरे पास आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। लीजिए लीजिए, आशा का घर आ गया।
0: एम कुलकर्णी, ये एम से क्या हुआ?
1: अरे हिंदू, तुम आओ आओ। आशा, ये है कुणाल सक्सेना, वर्षा के। वर्षा ने तुम्हें बताया था ना? हाँ हाँ।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, अंदर आइए। भाई माफ करना, इस फ्रॉक की सिलाई बहुत जरूरी है, तुम बैठो, मैं सभी मुकम्मल हुआ जाता है।

0: क्यों, तुम बोर तो नहीं हो गई? किससे? कुणाल जी से? कुणाल जी, देखा आपने याशा कितनी शरीर है, अपना हो या पराया, ये खिंचाई से बाज नहीं आती।
1: ये खिंचाई थी
0: क्यों, आपको लगी नहीं?
1: पता नहीं।
0: खिंचाई तो दरअसल वर्षा की हो रही है। ओ बिचारी।

0: आप एक प्याला चाय और पीना पसंद करेंगे?
1: नहीं नहीं, अब बस, मैं ज्यादा चाय नहीं पीता हूं।
0: वर्षा कहती थी कि आप बहुत सिगरेट पीते हैं, पाइप आपने कब शुरू कर दिया?
1: यही इधर 2-3 सालों से पीने लगा हूँ। डॉक्टर ने शोर मचा रखा है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है।
0: और पाइप से कुछ नहीं होता?
1: होता क्यों नहीं, सिगरेट से फेफड़े का कैंसर होता है तो पाइप से होठों का। भाई मैंने तय किया कि फेफड़े बचा लूं, होठों की देखी जाएगी।

0: आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं।
1: अच्छा,
0: वो नॉवल भी पढ़ा था जो कहीं सीरियलाइज हुआ था, क्या नाम था उसका?
1: सेपिया।
0: हाँ वही, बहुत अच्छा लगा था। आप दोनों की दोस्ती तो बहुत पुरानी है ना?
1: 11 साल पुरानी।
0: दोनों शायद एक ही शहर में रहते थे।
1: एक छोटे से शहर में, तब हम दोनों की शादी भी नहीं हुई थी और तभी मैंने लिखना भी शुरू किया था।
0: आजकल तो आप भोपाल में है ना?
1: 1-2 महीने पहले था, अब पास आ गया हूँ, यही यहाँ से कोई 20 मील दूर।
0: हाँ हाँ, वर्षा ने बताया था कि आप किसी रिसर्च के काम में लगे हैं। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है?
1: 10 महीने का, फिर मैं भोपाल लौट जाऊंगा।
0: आप लोग तो 11 साल बाद पहली बार मिलेंगे ना?
1: दूसरी बार। महीने भर पहले वर्षा मिलने खुद मेरे पास पहुंची थी, लेकिन वो मुलाकात इतनी रवा-रवी में हुई और ऐसी सरसरी थी कि बस।
0: ओफो, देखी तो मैं भी कैसे भुला करूं। वर्षा ने ये भी बताया था शायद घर पर आपकी बीवी थी, आप बिजी थे या ऐसा ही कुछ।
1: हाँ, तभी वर्षा ने वादा लिया था कि मैं उसके घर आऊं।
0: अभी तो 1-2 दिन ठहरेंगे
1: ना? बिल्कुल नहीं, शाम की गाड़ी से ही लौट जाऊंगा। अच्छा आशा जी, एक बात तो बताइए, ये वर्षा हमेशा मुझे थर्सडे को ही आने के लिए क्यों कहती रही है?
0: ये तो आप वर्षा से ही पूछिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये दिन मिस्टर सारथी का बहुत ही बिजी डे होता है और शायद वो देर से घर लौटते हैं। अच्छा, आप कभी मिस्टर सारथी से मिले हैं?
1: जी कभी नहीं।
0: कभी देखा है? शायद नहीं। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, वैसे भी वर्षा बहुत लकी है। अरे इंदु, तुमने बहुत देर कर दी, क्या हुआ? क्या एम्बुलेंस गई?
2: हाँ बस अभी अभी, मिस्टर सारथी भी साथ चले गए हैं। तुमने तो मदर को भी देखा होगा, कुछ पता चला कि आखिर बात क्या है?
3: ये तो पता नहीं, मगर लगती बहुत सीरियस है। सुना है उनका कोई मेजर ऑपरेशन होने जा रहा है।
2: यही?
3: हाँ यही।
2: और वर्षा?
3: वो घर पर है। कुणाल जी उठिए, आपको वर्षा ने बुलाया है।
1: जी।

0: थोड़ी देर यहीं बैठते हैं।
1: तुम्हारा ड्राइंग रूम खूबसूरत है।
0: तुम्हें पसंद आया?
1: ना आता तो तारीफ क्यों करता?
0: छोड़ो भी, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं?
1: ज्यादा कर रही हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ?
0: और कैसे हो? क्या मेरी तारीफें तुमने कम की थी? वो तुम्हार बांधे थे कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। समझने लगी?
1: क्या कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता?
0: पता नहीं, करते होते तो फिर रोना ही किस बात का था। कनु डियर, तुमने मुझे बहुत तंग किया है, मालूम कैसे?
1: कैसे?
0: एक तो इतनी मुश्किलों से 11 लंबे लंबे सालों के बाद तुम्हारा पता लगा, फिर किस्मत से तुम पास भी आ गए।
1: वर्षा, तुम जानती हो कि मेरा काम कैसा

0: और तुम जानते हो कि कितने मुश्किलों से मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला था। पागलों की तरह उन मैगजीन्स को टटोलती रही जिनमें तुम्हारी कहानियां होती थी। फिर एक दिन क्रिसमस से तुम्हारा पता लगा।
1: तुमने वो सब लिखा था?
0: हाँ, और ये भी लिखा था कि तुम बहुत जालिम हो। माना कि तुम्हारी बीवी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है।
1: अब मुझे ये ऐलान तो होने से रहा कि तुम यहाँ रह रही हो, और फिर ये बीवी को बीच में क्यों घसीटती हो?
0: क्यों ना घसीटू? नहीं कहा था तुमने कि मेरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है?
1: शायद कहा था, लेकिन वर्षा उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था।
0: क्यों?
1: तुम बोलती हो कि उससे पहले तुमने मुझे कितना हर्ट किया था। उस छोटे से शहर को छोड़ने के साल भर बाद ही तो वो नहीं रही थी। मुमकिन है कि यह अफवाह हो, लेकिन
0: अच्छा अच्छा उन बातों को जाने दो डियर। हालात के दबाव भी कई तरह के होते हैं, और फिर मैं उस वक्त बेहद डरी हुई थी। देखो ना, लड़कियों का मामला ऐसा होता है कि
1: लेकिन अब तो लड़की नहीं रही, अब क्या हो गया?
0: क्या हो क्या है?
1: इतनी डरी हुई और घबराई भी हो जैसे तुम
0: मैं तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे मैं सारा वक्त डरी हुई चुईया की तरह भागती फिरी हूँ। जब घबरा गई तो इंदु से लिपटकर खूब रोई। इतनी सारी आफतें एक साथ, अब तुम्हारी गाड़ी के आने का वक्त, बच्चों की छुट्टी, मिस्टर सार्थी का अचानक लौटना, मदर का एम्बुलेंस में लदकर सीधे घर आ धमकना, और छोटे भाई की जिद कि मुझे भी अस्पताल चलना चाहिए। तुम जानते हो कि मैं उससे कितना डरती हूँ।
1: अब नहीं डरती?
0: शायद अब भी कहीं ना कहीं डरती हूँ। एक ऐसा डर जो मुझे आज तक मिस्टर सार्थी से भी नहीं लगा। वैसे भी he is such a nice person, I can't tell you, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, इस कदर प्यार करते हैं कि मैं क्या बताऊं।
1: तुम तो करती होंगी।
0: क्यों नहीं करती?
1: मुझसे तो कह रही थी कि मैं तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार हूँ।
0: प्यार क्या एक ही तरह का होता है? तुम जो अपनी पत्नी से करते हो क्या वो प्यार नहीं है? और अगर प्यार नहीं है तो इतनी तारीफें क्यों करते हो?
1: तारीफें करना प्यार तो नहीं है।
0: प्यार करना तो तारीफ करना है।
1: शायद अच्छा चलो, मात हुई, हम ही हार गए।
0: लफ्जों की बाजीगरी कोई तुमसे सीखे।
1: और लीजिए, अब हार मानना भी लफ्जों की बाजीगरी हो गई। भाई वर्षा, तुम भी हद करती हो।
0: हद नहीं करती, सिर्फ याद दिला रही हूँ कि तुम कभी नहीं हारे। हारी तो सिर्फ मैं थी। क्या कहीं ऐसा भी होता है कि कुआं चलकर प्यासे के पास पहुंचे?
1: आज क्या हुआ? मैं नहीं पहुंच गया तुम्हारे पास।
0: रहने दो, रहने दो, कितने कितने वास्ते दिए तब कहीं जाकर आज मत देखिए हमें इस तरह।
1: किस तरह?
0: जिस तरह देख रहे हैं।
1: क्यों?
0: हमें शर्म आती है ना।
1: पहली बार भी तुमने यही कहा था। उस दिन तुमने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, आंखें गुलाबी हो रही थी, और मालूम है तुम्हारे तहकते हुए होंठ कैसे लग रहे थे?
0: कैसे?
1: जैसे टहनी पर बैठी हुई गुलाबी तितली पंख खोले और बंद कर ले।
0: हाँ, और तुमने कोई शेर पढ़ा था?
1: शेर नहीं, अशार। तुमने अपने बाल धोए थे, सिर्फ धोए नहीं, सुखाकर खुश्क छोड़ दिए थे कंधों पर मचलने के लिए। और वह काज भी याद है मुझे।
0: और वो शेर क्या था?
1: शिकने सुल्फे अंबरी क्यों है, निकले चश्मे सुरमा सा क्या है, सब सब कुल कहां से आए हैं, अब क्या चीज है, हवा क्या है,
0: दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
1: हाँ, एक बात और याद दिलाऊं?
0: हाँ कहो।
1: उस दिन तुम मेरे लिए मुट्ठियों में कुछ लेकर आई थी।
0: हाँ। हाँ, बेसन के लड्डू थे। और तुमने मुझे कितना छेड़ा था, बड़े खराब हो।
1: मैंने कहा था कि एक कहानी लिखनी चाहिए जिसका नाम हो पहला प्यार और बेसन के लड्डू। अच्छा अब मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें अस्पताल कब पहुंचना है।
0: मुझे? अरे बाबा, पहले तुम ठीक से तो बैठो, ऐसा लगता है जैसे पर तोल रहे हो।
1: पर तोल रहा होता तो कभी का उड़ जाता।
0: उड़ तो जाओगे ही, कौन यहाँ बसेरा करने आए हो?
1: आ जाऊं?
0: आ जाओ, है हिम्मत अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ने की?
1: तुम्हें फिर शुरू कर देना पिताने।
0: अच्छा बाबा माफ करो।
1: ठीक है, किया।

0: ये पूछना तो भूल ही गई कि तुम कुछ खाओगे भी?
1: मुझे कुछ नहीं चाहिए।
0: श्योर?
1: हाँ हाँ।
0: आशा ने कुछ खिलाया पिलाया होगा?
1: बड़े खाते तवाजे की, बड़ा ख्याल रखा। हे, तुम जलते हो?
0: जलती तो वहाँ भिजवाती क्यों?
1: तुमने कहाँ भेजा था? वो तो मिसेस वालिया मुझे ले गई थी मजबूरी और डर से।
0: एक ही बात है। कुमुदियर, मैं सोच रही थी कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। 11 साल का अरसा कितना लंबा होता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ने तुम्हें बिल्कुल नहीं छुआ। तुमने उम्र को उसी जगह कैद कर लिया है जहां मैं तुमसे पहली बार मिली थी।
1: अच्छा
0: कन्नू,

0: असल में वर्षा, दूसरे के घर में या दूसरे आदमी के बिस्तर पर लेटते हुए मुझे कुछ अजीब सा लगता है। लगता है जैसे ये मैं नहीं, कोई और है।
1: तुम्हें अच्छा नहीं लगा?
0: नहीं, वो बात नहीं है वर्षा।
1: तो फिर क्या बात है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ आकर शायद तुम्हारे अहम को चोट लगी है। तुम कहो या ना कहो, ठीक है, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी।
0: नहीं, वर्षा।
1: छोड़ो मुझे
0: वर्षा, प्लीज।
1: मैं रोत नहीं रही हूँ कि तुम मुझे मनाओ। माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन क्या ये जरूरी है कि मुझे पौनी साबित करो?
0: कौन किसको पैदा कर रहा है? वर्षा, वर्षा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो।

0: 婉萱，
1: 干活。
0: 我干的。
1: 啥子你干的？干活。不能，就别伸头干。干些野忙。不能干活。怎么就干活？不能，不能，不能。

अभी आप सुन रहे थे जनाब गुलशन खान शानी का तहरीर करदा ड्रामा नाटक दर नाटक। पेशकश योगराज की थी, मुआविन थे सरफराज अहमद। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत का परचमबरदार जहाज बुहेरे अमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास की मेजबानी कर रहा है, जबकि ब्रिक्स के 13वें वज़राए तालीम के इजलास का भी आगाज आज से भुवनेश्वर में हो रहा है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए नौवां मुकाम, जबकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पांचवां मुकाम हासिल किया है। यमन के साहिल के नजदीक बुहेरे अहमर में कल भारत का परचमबरदार तिजारती जहाज MSV फैजे नूरे औलिया हमले के बाद डूब गया है। जहाज पर सवार सभी 14 जहाजरानों को, जिनमें 13 भारतीय शहरी थे, बचा लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय परचमबरदार टैंकर सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल ने कहा है कि इस जहाज को यमन के पानी में हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद ये डूब गया। जनाब सोनवाल ने कहा कि भारत दिफा से कासिर तजारती जहाज पर इस इश्तियालंगेज हमले की सख्त मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की सलामती सबसे अहम तरजीह है। इस दौरान वजारत खारजा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि खित्ते में तजारती जहाज रानी पर हमलों के वाकयात का जारी रहना इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ारत ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में तजारती जहाजरानी को हमले का निशाना बनाना खत्म होना चाहिए और खित्ते के बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में जल्द से जल्द आजाद और बिला रुकावट जहाजरानी और तजारत को बहाल किया जाना चाहिए। वज़ारत ने कहा कि रियाज में वाक़ भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है और अमले के अफराद की हिफाजत और सलामती के लिए यमन के हुक्काम के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदूबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोजा तबादले ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। ये 4 रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनक्किद की जा रही है, जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वज़राए सकाफत की मीटिंग से शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खास तौर पर तज़ईन कारी की गई है। VIP रोड और भोज सेतु को ताजा रंगों और मुराल से सजाया गया है। इब्तदाई 2 रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादले ख्याल करेंगे और बाद के 2 दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग से मुनक्किद होंगी। उज़रा एक मुश्तरक ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। भारत ने रुकन मुल्कों के सामने 2 अहम तजावीज रखी हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक फनकारों और सकाफती वरसे के लिए एक मुश्तरक डिजिटल प्लेटफॉर्म तख्लीक देने से है और दूसरी तजवीज का ताल्लुक ब्रिक्स मुल्कों की तरफ से यूनेस्को की मुश्तरक नामजदगियों की हौसला अफजाई से है। ब्रिक्स के उज़राए तालीम की 13वीं मीटिंग और ब्रिक्स के सीनियर अफसरान की 3री

मीटिंग ओडिशा के शहर भुवनेश्वर में आज से इस महीने की 7 तारीख तक मुनक्किद की जाएगी। वज़ारत तालीम ने बताया कि इन मीटिंग्स में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए तालीम, सीनियर अफसरान और मंदूबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान इश्तराक के मौजूदात पर बातचीत की जाएगी, जिनमें बचपन के इब्तदाई दौर में देखभाल और तालीम, नीज हुनरमंदी को मुस्तहकम बनाने, ताउन में इजाफा करने और इश्तराक पर मबनी तहकीक, इख्तरा, नीज स्टार्टअप को फरोग देने जैसे तरजीही मैदान शामिल हैं। मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ब्रिक्स के वज़राए तालीम की इस तेरहवीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त करते हुए नए जवाबित नाफिज कर दिए हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की सहाफियों को मुल्क के बेशतर इलाकों से रिपोर्टिंग करने से पहले हुकूमत की पेशगी इजाजत हासिल करना लाजमी होगी। पाकिस्तान इस वक्त अपने जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन और उनके खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की वजह से जांच और तनकीद का सामना कर रहा है। इंसानी हकूक की तंजीमों और ज़राए इब्लाग की आजादी के लिए काम करने वाले इदारों ने सहाफियों पर आयद पाबंदियां, इंटरनेट की बंदिश और मुजाहरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर खदशात का इजहार किया है। हाल ही में पाकिस्तान ने POJK में हुकाम की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की कवरेज करने पर मुतअद्दिद न्यूज इदारों पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। गैर मुल्की मीडिया को सहूलत फराहम करने से मुतालिक 2026 के रहनुमा खतूत के मुताबिक अब पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में गैर मुल्की सहाफी आजादाना रिपोर्टिंग नहीं कर सकेंगे, जब तक कि वो इत्तलात नशरियात के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल न कर लें। इससे पहले गैर मुल्की सहाफी जरूरत के मुताबिक हर मामले में अलग से इजाजत हासिल करते थे, लेकिन नए जवाबित ने इन पाबंदियों को बाजाब्ता शक्ल दे दी है और गैर मुल्की मीडिया की सरगर्मियों के तकरीबन हर पहलू पर हुकूमती निगरानी को मजीद वसी कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के नामनिहाद मुकामी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर तमाशा करार दिया है और कहा है कि इस तरह की खोखली हरकतें सच्चाई को नहीं छुपा सकती। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम से कम 90 शहरी जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान के मुनाफिकाना लफाजे को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनक्किद होने वाली ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दो तरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई। भारत के महकमे मौसमियात ने आज आसाम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाज मुकामात पर शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। आज सुबह दिल्ली के बाज़ार हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। IMD के मुताबिक कौमी दारुलहुकूमत में आज उमूमी तौर पर आसमान अब्र आलूद रहेगा और मुतअद्दिद मुकामात पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। आज केरल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसकी शिद्दत गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में कम रहने का इम्कान है। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलप्पुज़ा और पथनमथिट्टा जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि बाज़ मुकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। आसाम में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से रियासत के कई हिस्सों में मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 17 अगस्त से 23 अगस्त के दरमियान मुनक्किद होने वाली BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान साबिक चैंपियन PV सिंधु की खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों में दर्जाबंदी 9 है। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की सबसे आला दर्जेबंदी मर्दों के डबल्स में 7

0: एक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिली है जो 5 है। सभी कालमी चैंपियन और कांसे का तमगा जीत चुके लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स ने 14वें नंबर पर, जबकि ध्रुव कपिला और ओलंपिक खिलाड़ी तनिषा मिक्स्ड डबल्स में 15वें नंबर पर हैं। खास खबरें एक बार फिर। भारत का परचम बरदार जहाज बुहेरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजियों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। भारत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास की मेजबानी कर रहा है, जबकि ब्रिक्स के 13वें उसराय तालीम के इजलास का भी आगाज आज से भुवनेश्वर में हो रहा है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए नवा मुकाम, जबकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 5वां मुकाम हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश खदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

सगाई फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर को सुनिए, फिल्म है जिंदगी और ख्वाब।

0: जब देखा दिल था मीठा हम दे गया
1: सालम करते से तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।

जैसे तेरा दिल ले गया मोटी मोटी अखियों में।

0: मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
1: एक बड़े जैसे मेरा दिल ले गया, जाते मीठा मीठा हम दे गया।
2: फागुन फिल्म का नगमा भी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को। फिल्म का नाम है राखी।

किशोर कुमार राजा भोसले की आवाजों में ये नगमा था आवाज फिल्म से। अब सुनिए लता मंगेशकर और मन्ना डे को, फिल्म है दो बीघा जमीन।

हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये नगमा था अखियों के झरोकों से फिल्म से। अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म है खेल खेल में।

0: रोगाने आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से एयर हो रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है जैन धर्म।
1: जैन धर्म के बानी स्वामी वर्धमान महावीर थे, जो महात्मा बुद्ध के हमअसर थे। वर्धमान महावीर को जैनी लोग अपना 24वां और आखिरी पैगंबर तस्लीम करते हैं। यूं तो उन्होंने अपनी जवानी ऐशोशरत में गुजारी, लेकिन जब वो 28 बरस के हुए तो उनकी रूह बेचैन हो गई और मजहब को ओढ़ना बिछौना बना लिया। ये दिलचस्प बात है कि बुद्ध की तरह उन्होंने भी 12 बरस रूहानी निषाद और तलाश हक में गुजारे और इस राह में बड़ी मुश्किलात और सब राजमा तकलीफ का मुकाबला किया। जैन मजहब के कयाम में असली माशी और माशरती हालात को दखल था। महावीर गैर मामूली सलाहियतों के इंसान थे। उनकी जिंदगी ईसार और खिदमत खल्क से इबारत थी। वो औरतों और मर्दों को मसावियाना हुकूक देने के कायल थे। दूसरों के दुख दूर करने की कोशिश करने से कबल ये जानना जरूरी होता है कि दुख दूर करने के तरीके क्या हैं और वो तरीके काबिल अमल हैं भी या नहीं। स्वामी महावीर का कौल है कि जब तक रूह पाक और लतीफ नहीं होगी उस वक्त तक तलाश हक मुश्किल है। इसके लिए तजर्रुद की सख्त जरूरत है। तजर्रुद जितना गहरा होगा इल्म ज्ञान की गहराई भी उतनी ही होगी। महावीर ने इस आजमाइश में पूरा उतरने की हद तक मखदूर कोशिश की। उनकी हिदायत थी कि इंसान को किसी न किसी तरह की खिदमत खल्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमें जिंदगी की नेमत मिली है तो हमें फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम क्यों ना फलाह आम का काम शुरू कर दें। स्वामी महावीर का कौल है कि किसी काम की कामयाबी के लिए तीन बातों का होना निहायत जरूरी है, अकीदा, इल्म और अमल। ये जैन धर्म की बुनियादी खसूसियात हैं। महावीर का दावा है कि अकीदे के बगैर इल्म हासिल नहीं हो सकता, लेकिन अकीदे का मतलब हरगिज ये नहीं कि उसमें फिक्र का उंसुर शामिल ना हो, वरना वो अंधी तकलीद कहलाएगी। अच्छे ख्यालात और नजरियात का नाम अकीदा है। अंधी अकीदत या कज अकीदगी दुनिया की बदतरीन चीज है। महावीर ने अपने पैगाम में जिन चीजों पर ज्यादा जोर दिया उनमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और खुलूस ज्यादा नुमाया है। उन्होंने सारी मखलूक के साथ मसावात और उखवत का सलूक करने की तलकीन की। उनकी तालीमात की खसूसियात में मखलूकात का तहफ्फुज़, हक गोई, ईमानदारी और जो चीज आपको ना दी गई हो उसको तर्क करना और माया मोह से नफरत करना शामिल है। इनमें अहिंसा को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। इसलिए जैनी हजरात गोश्त से परहेज करते हैं, पानी को पीने से पहले छान लिया करते हैं और वो अंधेरे में पानी नहीं पीते। महावीर ने सिला रहने की चार किस्में बयान की हैं। बदले की उम्मीद किए बगैर दूसरे के साथ भलाई करना, दूसरे की तरक्की पर खुश होना, मजलूम के साथ हमदर्दी और उनके दुख दूर करना और गुनाहगारों के अमल पर कफे अफसोस मलकर उनको तौबा की तरफ रागिब करना।
0: अभी आपने सुना प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था जैन धर्म। तहरीर थी जनाब नजर बरनी की और रावी थे एसएम शफीक। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। मेरी सुन मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब कुछ और फिल्मी नगमे आप सबके

महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण की आवाजों में नगमा आपने सुना टशन फिल्म से। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश फिल्म का नाम है बचना ऐ हसीनो। आवाजें श्रेया घोषाल और लकी अली की हैं।

श्रेया घोषाल और लकी अली के गाए हुए बचना ऐ हसीनो फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप नीतिका त्यागी से आलमी खबरें सुनिए। लोकसभा की कार्यवाही कई उमूर पर अपोजिशन के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से तरक्की करती हुई बड़ी मईशत है, उसने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए

5.25% पर इसे बरकरार रखा है। भारत का परचमबरदार जहाज बहरा ए अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजरानों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप के लिए नवीं दर्जाबंदी, जबकि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं दर्जाबंदी मिली है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलों पर पोजीशन के शोरगुल की वजह से रखना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए जबकि राज्यसभा की 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब लोकसभा का अजलास 11 बजे शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवालात की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। जनाब बिरला ने तमाम अरकान से जोर देकर कहा कि वो वक्फा सवालात की कार्रवाई चलाने में तआवुन करें। उन्होंने कहा कि वक्फाई सवालात कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है जो हर एक मेंबर को अवाम के मामलात उठाने का मौका फराहम करता है। जब ऐवाने बाला का इजलास शुरू हुआ तो सदर नशीन सीपी राधाकृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दरमियान वक्फाई सिफर की कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर के बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सतपाल शर्मा ने दफा 370 मनसूख किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि 7 साल पहले आज ही के दिन यह कदम उठाया गया था। उन्होंने कहा कि आज का दिन न सिर्फ जम्मू कश्मीर की तारीख में बल्कि पूरे मुल्क की तारीख में एक अहम दिन है। बीजेपी ने दफा 370 मनसूख किए जाने के आज 7 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 अगस्त को एक तारीखी दिन करार दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि आईन की ये शिक आईन की रूह को बरकरार रखते हुए मनसूख की गई थी। उन्होंने कहा कि अगरचे खुद दफा 370 आरजी तौर पर नाफिज हुई थी, लेकिन किसी भी साबिका हुकूमत ने कभी इसे खत्म करने का इरादा जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने साल 2019 में यह जरूरी कदम उठाया जिससे सरदार पटेल के अज़्म की अक्कासी होती है। जनाब भाटिया ने यह भी कहा कि फरार मुजरिमों की हवालगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक कौमी तरजीह बन गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इन भगोड़े मुजरिमों के तई हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार की है। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि 274 फरार मुजरिमों को 2019 से 2026 के दौरान 36 मुल्कों से वापस लाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मुल्क की मुआशी तरक्की मुस्तहकम मांग के सबब दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी मईशत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुआशी साल में अप्रैल से जून तक के तिमाही में मुल्क की मईशत की कारकर्दगी तवक्को से बेहतर रही। आज मुआशी पॉलिसी से मुतालिक कमेटी के फैसले का ऐलान करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25 पर बरकरार रखने का फैसला किया है। जनाब मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा मुआशी साल की पहली तिमाही में मईशत की तवक्को से बेहतर कारकर्दगी के सबब मरकजी बैंक ने साल 2026-27 के लिए जीडीपी की हकीकी शरह तरक्की का तखमीना बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मगरबी एशिया बहरान की वजह से कलीदी तजारती रास्तों में रूकावट के सबब आलमी मईशत को चैलेंज का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि आरबीआई ने मुआशी साल 2027 के लिए सीपीआई से मुतालिक इफरात जर का तखमीना पहले के 5.1% से कम करके 5.0% कर दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से ब्रिक्स की सकाफती मीटिंग की मेजबानी की जा रही है। बहुत से मुल्कों के मंदुबीन सकाफत से मुतालिक 4 रोजा तबादला ख्याल के लिए यहां पहुंच गए हैं। ये 4 रोजा मीटिंग भारत की ब्रिक्स अदालत के तहत मुनाकिद की जा रही है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इसमें ब्रिक्स के सकाफती वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स के वजराए सकाफत की मीटिंगें शामिल हैं। इस तकरीब के लिए शहर की खासतौर पर तजीन कारी की गई है। वीआईपी रोड और भोज सेतु को ताजा रंगों और म्यूरल से सजाया गया है। इब्तदाई दो रोज के दौरान सीनियर अफसरान तबादला ख्याल करेंगे और बाद के 2 दिन सकाफत के वजीरों की मीटिंग के मुनाकिद होंगी। वजरा एक मुश्तरका ऐलानिये को कतई शक्ल देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। यमन के साहिल के नजदीक बहरा ए अहमर में

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। प्रदेश में अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। लोकसभा की कार्रवाई कई उमूर पर अपोजिशन के हंगामे के बाद सुपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। RBI के गवर्नर ने कहा है कि भारत सबसे तेजी से तरक्की करती हुई बड़ी मईशत है। उसने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए 5.25% पर बरकरार रखा है। भारत का पश्चिम बर्दाश्त जहाज बोयरा अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाज रनों को बचा लिया गया है। भारत ने इस हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु को BWF आलमी चैंपियनशिप के लिए 9वें दर्जाबंदी, जबकि सित्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं दर्जाबंदी मिली है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात आप सुन रहे थे। दिन के 1:15 होने को है, पहली मजलिस का वक्त अब खत्म होता है। 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। स्वर्ग नाम की एक आलिशान हवेली में रहने वाले अमीर व्यापारी कुमार या साहब जी राजेश खन्ना अपनी पत्नी माधवी, बहन ज्योति यानी कि जूही चावला, दो सौतेले भाई विक्की और रवि और एक भाभी के साथ रहते थे। उनका एक वफादार सेवक कृष्णा यानी गोविंदा भी है। एक व्यवसायिक मामले को लेकर साहब जी एक अनैतिक व्यापारी धनराज यानी परेश रावल के साथ आदर्शों का टकराव होता है और प्रतिशोध में धनराज साहब जी के धन और व्यवसाय को हड़पने के लिए उनकी दोनों भाइयों के साथ मिलकर फैक्ट्री में आग लगा देता है और आलिशान हवेली और व्यापार पर कब्जा कर लेता है। साहब जी एकदम दरिद्र हो जाते हैं और पत्नी के निधन से वो तबाह हो जाते हैं। साहब जी अब कृष्णा को भी अपमानित करके घर से निकाल देते हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके और उनके दुर्भाग्य का साथी न बने। कृष्णा बम्बई चला जाता है और उसको एयरपोर्ट यानी सतीश कौशिक नामक व्यक्ति मिलता है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से वो लोकप्रिय फिल्म स्टार बन जाता है और अपने पुराने मालिक के बराबर अमीर आदमी बन जाता है।

ऐसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है, पैसे के पीछे पीछे

कुछ वर्षों के बाद कृष्णा पुराने शहर में लौटता है। कृष्णा पहले धनराज को बर्बाद करता है, फिर साहब जी को ढूंढने मंदिर जाता है। संयोग से वह साहब जी को भी उसी मंदिर में पाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी और ज्योति की स्थिति दयनीय है। वह उनको वापस उनकी हवेली लाता है। वहां अपने भाइयों को देखते ही भावनात्मक तनाव के कारण साहब जी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो अपने भाइयों को भी क्षमा कर देते हैं और ज्योति और कृष्णा के रिश्ते को मंजूरी देते हैं और उनका निधन हो जाता है और वो सारी विरासत कृष्णा और ज्योति को सौंप देते हैं।

दोस्तों, इस फिल्म में कुमार साहब का किरदार राजेश खन्ना ने निभाया, जो अपने परिवार के लिए हर त्याग करने को तैयार रहते हैं। वहीं गोविंदा ने अपने वफादार सेवक कृष्णा का ऐसा किरदार निभाया जिससे ये साबित किया गया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी बनते हैं। क्या आपको पता है कि स्वर्ग गोविंदा और डेविड धवन की पहली बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी? बाद में यही जोड़ी राजा बाबू कुली नंबर एक, हीरो नंबर एक और कई सुपरहिट फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में गिनी जाने लगी। लेकिन इस जोड़ी की सबसे बड़ी सफलता एक गंभीर पारिवारिक ड्रामा से आई थी, न कि कॉमेडी से। ये फिल्म गोविंदा और राजेश खन्ना की पहली साथ की फिल्म आई थी। दोनों अलग अलग पीढ़ियों के सितारे थे, लेकिन पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री इतनी सच्ची लगी कि दर्शकों ने उन्हें दिल से अपनाया।

आपको बता दें कि स्वर्ग की कहानी पूरी तरह मौलिक नहीं थी। ये पहले बनी कहानियों की परंपरा से जुड़ी थी और इसमें भारतीय पारिवारिक मूल्यों के साथ एक क्लासिक मेलोड्रामा का रंग दिखाई देता है। फिल्म का संगीत भी इसकी सबसे बड़ी ताकत था। आनंद मिलिंद ने भावनाओं के अनुरूप धुनें तैयार की और गीतों को दिल तक पहुंचा दिया। आज भी जब इसके गीत बजते हैं तो 90 के दशक की वही सादगी और अपनापन महसूस होता है।

तो ये थी हमारी आज की फिल्म स्वर्ग। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी मैटनी मेलोडीज में दिन में 3 बजे। 2:30 पर एक ही कलाकार में आज रहेंगी आपके साथ राखी बनर्जी, और कलाकार कौन होंगे इसका इंतजार कीजिए। फिलहाल अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी।

0: कौमी अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। रेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।

0: डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द इवॉल्विंग
1: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
2: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
0: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
1: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
0: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर
1: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रही हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन करकर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई

0: हिंसा जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावां से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेन्द्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसल कर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: ओडिशा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। ओडिशा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानी दयानंद और थारू मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के

गांव में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक है, जिनकी हंसी में कोई बनावट नहीं है और जिनका अभिनय सीधे दिल में उतर जाता है।

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं सबकी चहेती अनफिल्टर्ड और बेबाक अभिनेत्री काजोल की। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 1974 को मुंबई में एक मशहूर फिल्मी परिवार में जन्मी काजोल के डीएनए में ही सिनेमा है। पिता सोमू मुखर्जी एक मशहूर फिल्म मेकर थे और माँ तनुजा अपने जमाने की शानदार अभिनेत्री। इतना ही नहीं, काजोल की नानी शोभना समर्थ और मौसी नूतन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। कजन भाई मोनीश बहल और कजन बहन रानी मुखर्जी तक काजोल की फैमिली में ही एक्टिंग बसी हुई है। काजोल की सगी छोटी बहन तनीषा भी एक्ट्रेस है। काजोल ने शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ गवर्नमेंट स्कूल पंचगनी से की। पढ़ाई के साथ इन्होंने डांस करना बहुत पसंद था। माँ तनुजा चाहती थी कि काजोल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी बेटी एक्टिंग के लिए तैयार है तो उन्होंने उसका पूरा साथ दिया। महज 16 साल की उम्र में काजोल ने स्कूल छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का बोल्ड स्टेप लिया। कैसा था काजोल का शुरुआती फिल्मी सफर ये जानेंगे, पर वक्त हो गया इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीगर का ये शानदार सा गीत सुनने का।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं काजोल, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां काजोल ने पहली बार कैमरे का सामना किया और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1992 में काजोल की पहली फिल्म बेखुदी रिलीज हुई। इस फिल्म में इनके साथ एक्टर कमल सदाना थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, लेकिन काजोल की सहज अदाकारी की तारीफ हुई। पहली ही फिल्म में से ये साफ हो गया था कि इनके भीतर एक्टिंग का नेचुरल गिफ्ट है। इसके अगले ही साल आई फिल्म बाजीगर, जिसने इनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में इनके साथ सुपरस्टार शाहरुख खान थे। फिल्म की कहानी रोमांच और सस्पेंस से भरपूर थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी दर्शकों के दिलों में बस गई। लेकिन असली इतिहास बना साल 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, जिसे आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में गिना जाता है। काजोल ने सिमरन का किरदार निभाया, एक ऐसी भारतीय लड़की जो अपने परिवार का सम्मान भी करती है और अपने प्यार के लिए संघर्ष भी। सिमरन का किरदार देश विदेश के करोड़ों दर्शकों के दिलों में बस गया। काजोल शाहरुख खान की जोड़ी इतनी फेमस हुई कि फैंस इन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में गिनने लगे। फिल्म के गाने, डायलॉग और इमोशनल सीन्स आज भी याद किए जाते हैं। महज 3 साल में एक नई कलाकार से सुपरस्टार बनने तक का काजोल का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं था। लेकिन इनकी सफलता का सबसे सुनहरा दौर अभी बाकी था। इस बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए डीडीएलजे फिल्म का ये प्यारा सा गीत, यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त राखी बैनर्जी के साथ काजोल की जिंदगी का खास सफर। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने काजोल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और यहीं से शुरू होता है इनके करियर का वो सुनहरा दौर जिसने इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। काजोल लगातार एक से बढ़कर एक फिल्मों में दिखाई देने लगी। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर किरदार में पूरी तरह ढल जाती थी, चाहे रोमांटिक भूमिका हो, भावनात्मक दृश्य हो, या एक मजबूत महिला का किरदार हो या फिर नेगेटिव किरदार। काजोल हर भूमिका को सहजता से निभाती थी। फिल्म गुप्त ने इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। फिर इन्होंने इश्क में शानदार कॉमिक टाइमिंग दिखाई। फिल्म में आमिर खान, जूही चावला और अजय देवगन थे। फिर आया 1998 का साल। इस साल इनकी दो बड़ी फिल्में आई, अजय देवगन के साथ प्यार तो होना ही था और शाहरुख खान के साथ कुछ कुछ होता है। तो कुछ कुछ होता है में अंजलि के चुलबुले किरदार ने तो इतिहास ही रच दिया। फिल्म के लिए इन्हें एक और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इसके बाद कभी खुशी कभी गम में अंजलि शर्मा के किरदार में इनको और ऊंचाइयां दी। दोस्तों, काजोल की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, पर फिलहाल वक्त हो गया है फिल्म प्यार तो होना ही था का ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनने का।

दोस्तों आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं अनफिल्टर्ड काजोल। दोस्तों किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी सिर्फ कैमरे की चमक तक सीमित नहीं होती। काजोल की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही रहा। फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात अजय देवगन से हुई। पहली मुलाकात में दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त नहीं बने, लेकिन धीरे धीरे शूटिंग के दौरान बातचीत बढ़ी, दोस्ती ने विश्वास का रूप लिया और फिर यही रिश्ता प्यार में बदल गया। करीब 4 साल तक एक दूसरे को समझा और बिना किसी दिखावे के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। 24 फरवरी 1999 को काजोल और अजय देवगन ने अपने मुंबई वाले घर पर बेहद सादगी से शादी कर ली। उस समय इनकी शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। शादी के बाद भी काजोल ने फिल्मों से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई, लेकिन इन्होंने अपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी। 2003 में इनकी बेटी नायसा देवगन का जन्म हुआ। इसके बाद काजोल ने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया। उसके बाद 2010 में इनके बेटे युग देवगन का जन्म हुआ। बावजूद इसके काजोल का कमबैक शानदार रहा, इसके बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म ये दिल लगी का ये गीत।

दोस्तों अब बात करते हैं काजोल के करियर के उस दौर की जब इन्होंने शादी और मां बनने के बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दमदार वापसी की। 2006 में काजोल ने फिल्म फना के जरिए शानदार वापसी की। फिल्म में इनके साथ आमिर खान थे। काजोल ने एक ब्लाइंड वुमन जूनी का किरदार निभाया। फिल्म में इनकी एक्टिंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इसके बाद इन्होंने माय नेम इज खान में शाहरुख खान के साथ काम किया, फिर दिलवाले के जरिए एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ काम किया। इसके अलावा काजोल ने तानाजी और देवी जैसी फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में भी काजोल ने खुद को समय के साथ बदला। दो पत्ती और द ट्रायल में इन्होंने शानदार काम किया। काजोल ने कभी भी खुद को किसी खास इमेज तक सीमित नहीं रखा। रोमांस से लेकर गंभीर ड्रामा तक ये सब करती रही। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं इनकी फिल्म फना का ये रोमांटिक सा सॉन्ग।

दोस्तों, आज काजोल एक सफल अभिनेत्री, पत्नी और माँ है। इन्हें 2011 में सरकार की तरफ से पद्मश्री मिल चुका है। 50 साल पार करने के बाद भी काजोल परिवार और करियर दोनों को साथ लेकर चल रही हैं। आकाशवाणी की तरफ से इन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी

दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का शो पसंद आया होगा। अगले शो में आपके साथ ऐसे ही किसी बेहतरीन कलाकार के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

3:30 बजे हम पेश करेंगे जनाब सैफुर रहमान अब्बाद का तहरीर करदा ड्रामा 50 साल बाद। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो समझने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 1,71 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मंसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर बदल गई है। आरबीआई ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमू शहर तरक्की का तखमीना लगाया है। उसने कहा है कि इकतसादी नशोनुमा को मुस्तहकम मांग से मदद मिल रही है। भारत का परचम बरदार जहाज बुहरे अहमर में हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजरानों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनखीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और बैडमिंटन में 3 भारतीय खिलाड़ी आसान में कोरिया ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। खबरें तफसील से। आज दफा 370 मंसूख किए जाने के 7 साल मुकम्मल हो गए। साल 2019 में आज ही के दिन पार्लियामेंट ने दफा 370 को मंसूख किया था, जिसकी बदौलत साबिक जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा हासिल था। इससे पहले जम्मू कश्मीर दफा 370 के शेखों के मुताबिक अपना एक अलहदा आइन रखने वाली मुल्क की वाहिद रियासत थी। ये एक आरसी शक थी जिसकी बदौलत इसे खसूसी रियासत का दर्जा हासिल था। दफा 370 मंसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सभी मरकजी कवानीन और मुख्तलिफ फलाही स्कीमें नाफिज हो गई और इस फैसले से खित्ते में सरमाकारी की राह बेहमवार हो गई, जिसके सबब तरक्की के इम्कान में इजाफा हुआ, ज्यादा सरमाकारी से रोजगार के मौके पैदा हुए और खित्ते में समाजी और इक्तसादी बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जा सका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 साल पहले दफा 370 और 35A मंसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम की जिंदगियों में कायापलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, खिजान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है।

0: बहू बहू
1: जी कहिए।
2: इन कान के कॉलेज के पास कोई बात हो गई है क्या?
1: कौन सी बात?
2: पूरी बात तो मुझे नहीं मालूम। आकाश भवन इमकान के कॉलेज के पास ही तो है। तमिल के महकमे का एक ऑफिस है, उसमें सुना है वहाँ के अमले ने किसी वाकये के एहतजाज में इमारत के सामने मुजाहरा किया है, नारे लगाए हैं। अमले के किसी कारकुन के साथ कोई बात हो गई है। सुनने में ये भी आता है कि इमकान के कॉलेज के लड़कों ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया है।
1: इमकान उनमें नहीं होगा।
2: ये तुम कैसे कह सकती हो बहू?
1: आप ठीक ही कहते हैं, मैं भला ये कैसे कह सकती हूँ? किसी से मालूम कीजिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।

0: हालत बिगड़ भी सकते हैं। इम्कान मालूम नहीं इस वक्त कहाँ है।
1: घबरा नहीं, मैं खुद ही जाता हूँ।
2: दादा जान,
1: इम्कान आ गए तुम?
2: हम कहाँ जा रहे थे?
1: तुम्हारे कॉलेज के पास कोई हादसा हो गया है क्या?
2: जी दादा जान,
1: वो आकाश भवन के सामने सरकारी मुलाजमीन ने मुजाहिरा किया है।
2: क्यों?
1: जी तामीर के महकमे के एक मुलाजिम को नौकरी से बर्तरफ कर दिया गया है।
2: क्यों, तुमको जानते हो इस बारे में?
1: वो दादा जान, उस मुलाजिम पर यह इल्जाम है कि उसकी कारगुजारियां नाकाबिले माफी हैं। यह यूं कह लीजिए कि सिफर है। बार बार की याद दहानी और वार्निंग के बावजूद उस मुलाजिम ने अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझा और ऑफिस टाइम को तफरी में बर्बाद करता रहा। और जिस खास स्कीम की फाइल उसके पास थी उस पर एक लफ्ज भी नहीं लिखा गया था।
2: सुना है तुम्हारे कॉलेज के लड़कों ने भी मुजाहरे में हिस्सा लिया?
1: जी दादा जान।
2: ये तो अच्छी बात नहीं है। तालिब इल्मों को अपने निसाब पर तवज्जो देनी चाहिए। इल्म का उसूल हर शय के उसूल से अहम और बेहतर है।
1: लेकिन दादा जान, ये तालिब इल्म भी तो समाज के ही फर्द होते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं है कि जो मुलाजिम बरतरफ किया गया है वो भी किसी तालिबे इल्म का रिश्तेदार हो, उसका उससे कोई ताल्लुक हो?
2: जरूर हो सकता है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो?
1: दादा जान, वो मुलाजिम संदीप अंकल है, मेरे दोस्त और क्लासमेट विक्रम के वालिद हैं। अब आप ही बताएं, ऐसी सूरत में क्या हम दोनों को मुजाहरे में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था क्या?
2: इसका मतलब यह हुआ कि मुजाहरे में तुम भी शरीक थे। अच्छा ये बताओ इम्कान, संदीप साहब पर जो इल्जाम लगाए गए हैं क्या वो दुरुस्त है?
1: ये हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है दादा जान। हमारा मसला तो बस ये है कि संदीप अंकल को नौकरी से निकाल दिया गया है, बस।
2: बेटा साथ सच्चाई का देना चाहिए। अगर संदीप साहब ने वाकई अपने फर्ज से कोताही की है तो ये सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। तुम शायद नहीं जानते बेटा, ऐसे लोग करोड़ों इंसानों के जज्बात से खेलते हैं। ऑफिस के काम का जो वक्त बर्बाद किया जाता है जरा उसके मुतालिक सोचो। एक तो नहीं सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी के नाम पर खुशगप्पियां करते हैं, सैरो तफरीह करते हैं, अखबार मैगजीन और नॉवल पढ़ते हैं या ऑफिस में कहीं सो जाते हैं। इस तरह जो वक्त बर्बाद होता है अगर इसका हिसाब किया जाए तो सिर्फ एक महीने में ही हजारों घंटे बेकारी के खाते में जाते हैं। हर स्कीम पीछे रह जाती है और मजीद मसाइल आगे आ जाते हैं, उनकी तरक्की कैसे होगी? अगर ये मान भी लिया जाए कि संदीप साहब बेकसूर हैं तो भी इत्तेजाज करने का यह तरीका गलत है। सड़कों पर इंतजार फैलाने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर होती है।
1: संदीप अंकल बेकसूर हैं दादा जान, विक्रम ने मुझे बताया है। और अगर मान भी लिया जाए कि वो कसूरवार है तो ऐसा कसूर मुल्क में न जाने कितने ही लोग कर रहे हैं, तो फिर संदीप अंकल को भी सजा क्यों दी जा रही है?
2: बुराई फैलकर अच्छाई नहीं बन जाती बेटा, बुरे का अंजाम भी बुरा ही होता है। कोई गलत काम करने वाला पहले पकड़ा जाता है, कोई बाद में। और यह भी सच है कि कोई पकड़ा ही नहीं जाता, यह महज इत्तफाक है। लेकिन वो शख्स खुद भी यह साबित नहीं कर सकता कि उसने अच्छा काम किया है।
1: आप संदीप पंकल की मुखालफत कर रहे हैं दादा जान।
2: मैं संदीप साहब की मुखालफत नहीं कर रहा हूं इम्कान, सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हक क्या है और ना हक क्या। ये बस इत्तफाक ही है कि बात संदीप साहब पर जा रही है।
1: नहीं दादा जान, नहीं, आप संदीप अंकल की खुली मुखालफत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो हिंदू है।
2: इम्कान ये क्या कह दिया तुमने बेटा? आज एक पोते ने दादा को गाली दी है, तुम ये क्यों भूल गए बेटा कि तेरा दादा खुद एक मुजाहिद आजादी है? तुम एक इमारत के सामने नारे लगाकर वफादार हो गए और मैं अंग्रेजों की गोलियों के आगे नारे लगाकर भी बेवफा ठहरा। हम सब ने साथ मिलकर आजादी हासिल करने की कस्में खाई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता तो कोई ये नहीं देखता कि नारा हिंदू ने लगाया है या मुसलमान ने। मकसद एक था, आवाज एक थी। उस पाक जज्बे में तुम तासुब का जहर खोलने का इल्जाम लगाते हो, वो भी मुझ पर।
0: बदतमीज, अपने दादा से ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो यहाँ से चलो।
2: अम्मी जान
0: चलो, तुम्हें छोटे बड़े की कोई तमीज नहीं? क्या अपने दादा जान का अदब करना तुम्हारा फर्ज नहीं? वो तुम्हारे बाप के भी बाप है बेटे, क्या बड़ों से ऐसी और इसी लहजे में बात की जाती है? तुमने तो इस घर का नाम डुबो दिया।
1: अम्मी जान, अगर मैं छोटा हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं पहले पैदा हुआ था तो मैं भी बड़ा होता।
0: मगर अब हकीकत यही है, वो बड़े हैं और तुम छोटे। गलत दलीलों से अपनी मोमिल बातों की अहमियत मुझे समझाने की कोशिश ना करो, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है।
1: अम्मी जान, अपनी बात की मुआफिकत में कौन नहीं बोलता? क्या हम मुआशरे के फर्द नहीं? अगर हैं तो हमारे हुकूक महदूद क्यों हैं? उनमें तरमीम और इजाफा क्यों नहीं किया जाता? गुस्सा करने के, ऊंचा बोलने के, मारने और रौब जमाने के सारे हुकूक बड़ों ने अपने कब्जे में कर लिए, और हमें मिले सिर्फ चुप रहने और सर झुकाने के हुकूक। हम इंसान नहीं है क्या? हमें भी बातें अच्छी बुरी लगती है अम्मी जान। हमें अपने इजहार का हक क्यों नहीं है? जरा आवाज तेज निकली कि हम बदतमीज हो गए, गुस्ताख हो गए हम लोग? ऐसा क्यों है अम्मी जान, ऐसा क्यों?
0: गला मत फाड़ो, तुम पागल हो गए हो। इस बात को यही खत्म कर दो।
1: ठीक है,

0: बाबू बेटी
1: जी कहिए
0: बेटी, जरा वक्त तो बताना, मेरी घड़ी बंद हो गई है। बल्कि इम्कान की घड़ी लाकर मुझे ही दे दो, मैं वक्त मिला लूंगा।
1: इम्कान घड़ी पहनकर बाहर गया है।
0: हैं? बाहर गया है? आज तो इतवार है, कॉलेज की छुट्टी है।
1: कह रहा था विक्रम के घर जा रहा हूँ।
0: मैं सब समझ रहा हूँ, वो सिर्फ विक्रम के घर नहीं गया है, किसी नए प्लान में हिस्सा लेने गया है। तुमने उसे मना क्यों नहीं किया?
1: मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन वो माना ही नहीं। कहने लगा विक्रम ही के घर तो जा रहा हूँ।
0: तुमने मुझसे कहा होता?
1: सोचा तो था कि आपसे कहूँ, लेकिन फिर इसलिए रुक गई कि कहीं आज भी वो कल की तरह बदतमीजी से पेश ना आए।
0: कैसे मानेगा ये लड़का, कल नसीहत भी की लेकिन आज फिर चला गया। नई नस्ल जमीन देखकर नहीं चलती, आसमान देखकर चलती है। अपने बढ़ते कदमों पर उनकी निगाह जाए भी तो कैसे। नई नस्ल समझती है कि दरमियान का फासला हमने बनाया है, यही उनकी भूल है। नई नस्ल जब खुद सिर्फ बदल कर चलेगी तो कब पुरानी नस्ल के करीब रह पाएगी? पुराने कदरों और आदर्शों की मुखालफत में उसने जदीद कदरों और उसूल वजह कर दिए और तहजीब वाले बन गए। हे खुदा, इनकी ये खुद सभी कहां ले जाएगी इन्हें? इस घर में तो अब दरमियान में कोई हद फासिल भी नहीं। इम्कान मेरी नहीं सुनता, उसका बाप जिंदा होता तो शायद उसकी सुन लेता, मगर वो मेरा बेटा कहां?
1: नहीं,
0: वो तो शेर खामोश में अबदी नहीं सो रहा है।
1: जाने दीजिए, उस ना समझ को माफ कर दीजिए, मैं उसे और समझाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी रिवायत की तरफ जरूर लौटेगा।
0: मैं तो उसे माफ कर दूंगा बेटी, फिक्र तो इस बात की है कि पिछली तारीख इसे

मगर अपनी जगह से इल्लाहाबाद कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। गिरफ्तार कर लो, एक एक को गिरफ्तार कर।

0: अभी आया। आइए आइए माजिद साहब आइए, कई दिनों से आप आए नहीं है ना।
1: जी हाँ जनाब, मैं शहर में था ही नहीं, लड़की के रिश्ते के सिलसिले में बाहर गया हुआ था।
0: अच्छा अच्छा,
1: आज ही तो लौटा हूँ, बल्कि अभी कुछ देर पहले आया हूँ। बदकिस्मती देखी है कि आज कई दिनों बाद आपके पास आया भी तो आपके लिए बुरी खबर लाया हूँ।
0: हाँ
1: जी, कह डालिए माजिद साहब, रोज न जाने कितने ही लोगों को बुरी खबर सुनना पड़ती है, मैं भी इसी माशरे का फर्द हूँ। ये क्या जरूरी है कि मुझ तक पहुंचने वाली हर खबर मेरे लिए खुशी की हो?
2: वो दरअसल आपके पोते इमकान को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई।
1: क्या
2: जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं उसी रास्ते से आ रहा था, सरकारी मुलाजमीन और कॉलेज के लड़के इंजीनियर इन चीफ के बंगले पे मुजाहरा कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। जिस वक्त पुलिस ने इमकान को गिरफ्तार किया सादिक साहब, वो इंजीनियर इन चीफ के बंगले का गेट तोड़ रहा था। आप जल्दी थाने चलिए, मैं भी चलता हूं आपके साथ।
0: नहीं, मेरे उसूल मुझ पर बार नहीं माजिद साहब, कि उन्हें तोड़कर मैं राहत और आराम हासिल करना चाहूं। जब संदीप साहब को अपने किए की सजा मिल रही है तो फिर इमकान अपनी सजा से बरी क्यों हो?
2: जाने भी दीजिए सादिक साहब, इमकान अभी बच्चा है, उसे माफ कर दीजिए।
0: बच्चा जरूर है बाजिद साहब, अगर 20 साल का हो चुका है और बीएससी में पढ़ता है। और फिर देखिए, इमकान को माफ करके इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होता, और मेरे उसूल इंसाफ पर मबनी है।
2: अच्छा सादिक साहब, ठीक है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं।
0: हाँ, आप चूंकि सफर से लौटे हैं, वरना मैं कुछ देर बैठने के लिए कहता।

0: आप आइए आइए तशरीफ रखिए।
1: मैं बेहद परेशान हूँ माजिद साहब
0: जी।
1: आपके और इमकान के दादा के बीच हुई गुफ्तगू मैंने सुन ली है। इमकान के दादा के असूल सच्चे और खरे हैं, बहुत अजीम इंसान है वो। लेकिन माजिद साहब जरा सोचिए, मैं भी एक माँ हूँ, इमकान थाने में है तो मुझे कब एक लम्हा भी चैन मिलेगा। आपसे गुजारिश करती हूँ माजिद साहब, आप जाकर इमकान को ले आइए, अपनी जमानत दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर।
0: जी देखिए, आपके घर से भले ही मेरा कोई हकीकी रिश्ता ना हो, लेकिन जज्बाती रिश्ता जरूर है। मैं सादिक साहब का बेहद एहतराम करता हूं। इस दौर में ऐसा नेक, शरीफ और उसूल परस्त शख्स मौजूद है
1: जी।
0: आप जानती हैं कि वो इमकान को थाने से लाने के खिलाफ है
1: जी।
0: अगर मैं इमकान को थाने से ले भी आऊं तो बाद में सादिक साहब से निगाहें कैसे मिलाऊंगा।
1: माजिद साहब, अपने और इमकान के दरमियान सिर्फ मुझे भी महसूस कीजिए।
0: अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब सिर्फ आपकी जज्बातियत ही मेरे जहन में है। मैं थाने जाता हूं, लेकिन देखना यह भी होगा कि पुलिस इमकान को छोड़ती भी है या नहीं। आप घर चलिए
1: जी।
0: अगर इमकान को लाने में मैं कामयाब हुआ तो मैं वहीं हाजिर होता हूं
1: जी।

0: आदाब आदाब
1: आदाब, आइए आइए आइए माजिद साहब।
0: देखिए सादिक साहब, मैं इमकान को थाने से ले आया हूँ। ये काम मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ किया है, आपका गुनहगार हूं मैं। ले ही आया है तो आइए तस्वीर रखिए। जी
2: आप आ गए माजिद साहब।
0: जी
2: इमकान भी आ गया।
0: अम्मी जान
2: शुक्र है खुदा का।
0: मैं इमकान को तो ले आया लेकिन सादिक साहब से मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा।
1: हाँ आप अब और कितना शर्मिंदा होंगे माजिद साहब, थाने जाना ही एक शरीफ इंसान के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है।
0: मुझे थाने से लाने की जरूरत ही क्या थी किसी को।
2: चुप रहो बदतमीज, फिर जबान चलाने लगे।
1: इसे बोलने दो बेटी, ये सिर्फ इमकान नहीं पूरी नई नस्ल की अलामत है। इसे बोलने दो वरना नई नस्ल हम पर ये इल्जाम लगा देगी कि इनके इजहार ख्याल को बदतमीजी का नाम देकर इनकी जबान काट ली गई। मैं इससे सिर्फ ये पूछता हूं कि चीफ इंजीनियर के बंगले पर तोड़फोड़ करके इसने चीफ इंजीनियर का नुकसान किया है या कौमी इमलाक तबाह की है।
0: तथा चांद, इस जमाने में हक लेने का यही तरीका है, कोई भी सिस्टम ज्यादा दिनों तक राइज रहे तो वो करप्ट हो जाता है। पुराने तौर तरीके भी आज करप्ट हो चुके हैं, अब यहां इंसाफ कहां।
1: इंसाफ तुम्हारी मोटरसाइकिल है क्या जिसे जिधर चाहे मोड़ दो। तुम्हारी नजर में इंसाफ तो वही है जो तुम्हारी मुआफकत में हो, वो इंसाफ जो तुम्हारे खिलाफ हो वो तुम्हारी नजर में ना इंसाफी है।
0: सच तो ये है दादा जान कि आप हम पर जदीद साइंस, जदीद हिसाब, जदीद इंग्लिश और जदीद टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए तो बहुत जोर डालते हैं, लेकिन हमारे तौर तरीकों में अगर जरा भी जदीदियत हो तो आप इसे गुस्ताखी और खुदसरी का नाम देते हैं। दादा जान, मैं क्या सिर्फ इस जमाने का मुंह देखने के लिए पैदा हुआ हूं? पुराने वक्त के साथ साथ आपकी पुरानी कदरें भी गई दादा जान, गई। आप दरमियान के फासले के उस पार खड़े होकर बेकार ही चिल्ला रहे हैं।
2: होश में आओ इमकान, वरना मैं तुम्हें मारने से भी गुरेज ना करूंगी।
0: अम्मी जान,
1: आप सुन रहे हैं माजिद साहब।
0: जी
1: ताल्लुक को इस तरह जदीदियत पर कुर्बान किया जा रहा है और मुझे इन अल्फाज में नवाजा जा रहा है। आज मुझे अगस्त 1900

0: अंग्रेज का वो दिन याद आ रहा है जब हमने भारत छोड़ो का नारा लगाकर अंग्रेज हुकूमत पर लर्जा तारी कर दिया था। आज उस तारीखी वाकये को पूरे 50 साल हो गए, मुल्क भर में उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। मेरी आंखों के सामने उन यादों के जुगनू उड़ रहे हैं। हमने सोचा था इस सरजमीन से अंग्रेजों के नापाक कदम उखाड़ फेंकेंगे और अपने कदमों और आदर्शों के लिए एक साजगार माहौल बनाएंगे, अपनी तहजीब में किसी तहजीब को शरीक नहीं करेंगे, जिएंगे तो खालिस हिंदुस्तानी बनकर। आपको बताता हूं माजिद साहब
1: जी,
0: उस वक्त मैं 20 साल का था, ठीक इस लड़के की उम्र का। मैंने अपने दादा से कहा था, दादा जान मैं आजादी की कीमत चुकाने जेल जा रहा हूं, अंग्रेज सिपाही गिरफ्तारियां कर रहे हैं, मुझे दुआ दीजिए दादा जान कि जेल की तारीख फजा में रहकर भी मैं सुरखरू होकर लौटूं। मेरे दादा जान ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया था माजिद साहब, उनके आंसुओं से मेरी पेशानी गीली हो गई थी, उन खामोश आंसुओं में मेरे लिए सब कुछ था। मैंने अपने दादा जान से कहा था माजिद साहब, आज 50 साल बाद मेरा पोता मुझसे कहता है हम बेकार चिल्ला रहे हैं।
1: सादिक साहब,
0: हम मुजाहिद आजादी थे माजिद साहब, इसलिए शान से जेल गए और शान से वापस लौटे, लेकिन इस लड़के को देखिए, जुर्म की पादाश में जेल गया फिर भी नदामत का कोई एहसास इसके शरीर को नहीं छूता।
1: छोड़िए, देखिए सुनिए जरा
2: जी,
1: आप इमकान को अंदर ले जाइए।
2: जी चलो यहां से, अंदर आओ मेरे साथ चलो।
1: मुझे इजाजत दे सादिक साहब, मैं फिर किसी वक्त हाजिर हूंगा।
0: अच्छी बात है माजिद साहब
1: जी,
0: खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।

0: अभी आया भाई, अभी आया।
1: आइए
2: आदाब अर्ज करता हूँ साहब।
1: आदाब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए मिजाज कैसे है?
2: मेरा मिजाज तो खुदा के फजलो करम से ठीक ही है सादिक साहब, लेकिन इस शहर का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ है।
1: कोई नाखुशगवार वाकया हो गया क्या?
3: क्या बात हो गई माजी साहब?
1: आज क्या हो गया अंकल? आज तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मैं तो आज घर से बाहर भी नहीं गया।
2: सादिक साहब, आज एक संगीन वाकया हो गया।
1: क्या हुआ?
2: अभी एक घंटा पहले ज्ञानपुर गांव की 200 अफराद ने पहले तो आकाश भवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया, फिर इमारत पर पथराव किया। दरअसल बात यह कि ज्ञानपुर गांव के पास एक दरिया है, उसी दरिया से कश्तियों के जरिए ज्ञानपुर के लोग शहर आते जाते हैं।
1: जी,
2: बरसात में यह दरिया इंतहाई खतरनाक हो जाता है। गांव वालों की दरखास्त पर सरकार ने इस दरिया पर एक पक्का पुल बनवाने की स्कीम मंजूर की थी।
1: जी,
2: लेकिन तामीर के महकमे में इस स्कीम की मंजूरी और कार्रवाई से मुतालिक फाइलों की इंदराज में मसलसल कोताही होती रही। ये फाइल संदीप साहब को दिए गए थे, नतीजा ये हुआ कि 2 साल गुजर गए और पुल की तामीर अमल में ना आई। आज ही सुबह जब एक बड़ी कश्ती 40 गांव वालों को लेकर शहर आ रही थी तो बरसात से उबलते उस दरिया के बीचों बीच बेकाबू होकर डूब गई। एक आदमी भी नहीं बचा। इसी वाकये के जेर असर 200 गांव वालों ने आकाश भवन पर धावा बोल दिया। वो सब इमारत में घुसकर इंजीनियर इन चीफ पर हमला करना चाहते थे। इतला मिलने पर पुलिस ने आकर लाठी चार्ज किया, बहुत से गांव वाले घायल हो गए। एन उसी वक्त संदीप साहब आकाश भवन से बाहर निकल रहे थे, जब वो गेट से बाहर आए तो खुद ब खुद हुजूम का हिस्सा बन गए। पुलिस की एक लाठी उनके सर पे जोर से लगी और वो वहीं गिर पड़े। उनके महकमे के दोस्त उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही उनकी मौत हो गई।
1: ये बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। संदीप साहब की सजा मौत नहीं थी। इम्कान बेटे, मैं तुम्हारे जज्बात से वाकिफ हूं, लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं बेटे, तुम वाकयात को यकजा करो और फिर इसमें से जरा संदीप साहब को निकाल कर सोचो। जो शख्स अपनी ड्यूटी से कोताही करता है और फिर इस टाइम को लगवियात में सर्व करता है, वो ये सोचता है कि इसे तो महीना खत्म होने पर तनख्वाह मिल ही जाएगी, मुल्क का नुकसान होता है तो हो, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसका घर भी मुल्क का एक हिस्सा है और इसके जरिए भड़काई गई आग खुद इसके घर को भी लग सकती है। हां, मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क की बुनियादों में दरारें डाल रहे हैं, वहीं अगर नई नस्लें भी मुल्क की तामीर नौ में दिलचस्पी न दिखाई तो उनकी औलादों के हिस्से में एक टूटे फूटे हिंदुस्तान के सिवा कुछ भी नहीं आएगा। इम्कान बेटे, मेरे साथ अस्पताल चलो।
4: दादा जान,
1: फिक्र वहां अकेला होगा, उसकी मां नहीं, आज बाप का सारा भी सर से उठ गया, उसका मकान भी किराए का है, हम विक्रम को अपने घर लेकर आएंगे। आज से वो इस घर में तुम्हारे साथ रहेगा।
4: दादाजान, आपकी कदरों में आसमान की बुलंदियां भी हैं। विक्रम के रहने के मुतालिक ये तजवीज तो मेरे जहन में भी

रंगीन फिल्म का नाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगाति वर्मा मलिक, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और सामने जब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया हिमेश रेशमिया ने, फिल्म है तेरे नाम।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से

तुम्हारा मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूँ।

आंखें तो मिला दे मेरी आंखों।

Yeah.

और सामने जब सुनिए मन्ना डे की आवाज में प्रेम धवन का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया है रवि ने, फिल्म है एक फूल दो माली।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे सूरज फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे हसरत जयपुरी मौसीकार शंकर जयकिशन। सामईन इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें लेना शुरू होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मंसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर बदल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमुई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की का तखमीना लगाया है। उसने कहा कि इक्तिसादी नशोनुमा को मुस्तहकम मांग से मदद मिल रही है। भारत का परचम बरदार जहाज बड़े अहमर में एक हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजरानों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की मजम्मत की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकाम को चाहिए कि वो नौजवान मुजाहिदीन से निमटते वक्त तहवुल से काम लें। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में मुजाहिदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। और यूक्रेन में कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 17 अफराद हलाक और 44 दीगर जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 साल पहले दफा 370 और 35A मंसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम की जिंदगियों में काया पलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्जान सेहत, सनअतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौकों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन, नहायत पसमानदा बिरादरियों या जिन्हें दाइयों से उनके बुनियादी आईनी हकूक से महरूम रखा गया है, इन सबको आईन के मुकम्मल लिफाज के साथ अब बाइख्तियार बनाया गया है। वजीर आजम ने इस बात को भी नुमाया किया कि आज के दिन को इससे भी ज्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि मुल्क इस साल डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां यौम पैदाइश मना रहा है। आज दफा 370 मनसूख किए जाने के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। साल 2019 में आज ही के दिन पार्लियामेंट में दफा 370 को मनसूख किया था, जिसकी बदौलत साबिक जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा हासिल था। इससे पहले जम्मू कश्मीर दफा 370 की शिकों के मुताबिक अपना एक अलहदा आईन रखने वाली मुल्क की वाहिद रियासत थी। ये एक आरजी शिक थी।

0: ने इशारा दिया कि असल मामला अवामी एहतजाज और पाकिस्तानी फोर्सेज की जानिब से मुजाहिरीन का जालिमाना कत्ल है। उन्होंने कहा कि इस साल जून से जारी कार्रवाई में अब तक कम अज कम 90 शहरी जवान जान गंवा बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी इख्तलाफ का जवाब गोलियों, ब्लैकआउट, जोर जबरदस्ती और धमकियों से दिया है और अब इस तरह की खोखली इंतखाबी मशकों के जरिए उन्हें जायज ठहराने का जवाब ढूंढ रही है। जनरल जायसवाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दुनिया को इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की मुनाफिकाना लफाजी को भी सुनना चाहिए। सितंबर के महीने में नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस के दावतनामे से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान की जानिब से इस साल फरवरी के महीने में ओहदा संभालने के बाद उन्हें भारत के दोतरफा दौरे की रस्मी दावत दी गई है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त करते हुए नए जवाबित नाफिज़ कर दिए हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की सहाफियों को मुल्क के बेशतर इलाकों से रिपोर्टिंग करने से पहले हुकूमत की पेश की इजाजत हासिल करना लाजमी होगी। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दफा 370 को मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जिंदगी यकसर बदल गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस माली साल के दौरान 6.7% मजमू घरेलू पैदावार की शरह तरक्की का तखमीना लगाया है। भारत का परचम बरदार जहाज बोर अमर में एक हमले के बाद गर्क हो गया है। 13 भारतीय जहाजरानों को बचा लिया गया है। भारत ने हमले की सख्त मजम्मत की है। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सिलसिले में तनकीद का निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की मीडिया पर बंदिशें आयद कर दी हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समय शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ अपनी आवेल खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी ए पंजाबी सेवाए। इस वेले शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत दे विच आओ सुनदे हां सराइकी प्रोग्राम झोक माही दी।

ये ऑल इंडिया रेडियो दा सिरायकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम खिन के हाजिर हां। अज असां तुहाको सुफियाना कलाम सुनवेंदे हां ते नाल नाल सूफी संगीत ते गल वी करेंदे हां। सुनन आलियो, धार्मिक होवना कीते जरूरी है सूफीवाद। अमीर खुसरो तुंगिन के बुल्ले शाह तोड़ी सारा ने धार्मिक होण ते जोर दिता है। कविता के रिवाज विच पाकिस्तानी उर्दू शायरी, पश्तो कविता, पंजाबी शायरी, सराइकी कविता, बलूची ते कश्मीरी कलाम शामिल हैं। जिथे लोगां दे मन भाव दे सूफी कवियां दी शायरी पढ़न ते गावन भी चाहुंदी है। सूफीवाद को आम किताबां लिखार नहीं पढ़िया वेंदे। हां, सूफियाना कलाम जडन कलाकार गावंदे हैं ना, ता एक समा बच वेंदा है। आओ सुनेंदे हां नुसरत फतेह अली खान ते साथियों ने गाया एक कलाम।

I'm back.

बन दूर मिया मौत जावे दिल न किसे प्यार ऐ कीड़ा सजना प्यार यसा ऐ कीड़ा सजना प्यार

Yeah.

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन पूर्व पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 343 एयर 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 804 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज और DTHD आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी ते 6:30 हो रहे ने। पेश है देहाती प्रोग्राम।

बुलंद कर दे। बम सुट के भजन की जगह गिरफ्तारी देके भगत सिंह ने आजादी की अपनी सोच में हरेक हिंदुस्तान

सच्चियां गवाहियां भी हुई फैसला उही होया जो होना सी दुश्मन भी अंग्रेज ते मुनसिफ भी अंग्रेज 23 मार्च 1931 क्रांति वीर भगत सिंह दो साथियां राजगुरु।

सिंह जी की अगवाई विच चली कूका लहर दीआं कुर्बानियां दे नाल नाल गदरी बाबिआं दी गदर लहर ने भी अंग्रेज हकूमत दीआं चूड़ां हिला के रख दित्तीआं। महात्मा गांधी जी की अगुवाई विच चल रही अहिंसा लहर ते वीर बहादुरां दीआं कुर्बानियां सदका पूरा देश अंग्रेज सरकार दे खिलाफ एकजुट हो गया। हर पासे, हर गली, हर मोहल्ले, हर पिंड, हर कस्बे, हर नुक्कड़ चो यही नारे सुनाई देन लगे, अंग्रेजों भारत छड्डो, अंग्रेजों भारत छड्डो। करोड़ां भारतीयां दीआं रोह भरीआं बुलंद आवाजां सुन के अंग्रेज हकूमत बोल गई ते अंत मां भारती दे वीर सपूतां दीआं कुर्बानियां अगे

0: दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।
2: मंजित मैम
3: जी, लोकेंद्र भाई, आप सुन रहे हैं प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला इंडियन पोटाश लिमिटेड। और जैसे कि हम सभी को पता है कि ये कार्यशाला भी चल रही है गन्ने की, और आज का जो विषय है बहुत ही दिलचस्प है कि गन्ना फसल में कीटों की पहचान और रोकथाम।
2: और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद।
1: IPL की पॉलीहेलाइट।
2: और आज का जो विषय है वो है गन्ना फसल में कीटों की पहचान और रोकथाम। और गन्ने के विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा से। और दूसरे जो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से।
3: और संचालन कर रहे हैं नरेश पराशर। और हमारे जो भी हमारे किसान भाई हैं, गन्ने की समस्या, जो गन्ने की फसल है उसकी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2342-1081 और अगला है 2342-1083, यानी कि 2342-1081 और 2342-1083। और दिल्ली के जो भारतीय श्रोता हैं, दिल्ली का कोड लगाना ना भूलें, दिल्ली का कोड है 011। तो आइए चलते हैं सीधे हम अपने विशेषज्ञों के पास।
4: डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, CBG की बात चल रही थी।
5: हाँ।
4: डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई IPL जो है फ्री दे रही है, अपना भाई ट्रैक्टर लाओ, टैंकर भरा हुआ है, ले जाओ और टैंकर वापस छोड़ जाओ। तो ये क्या और भी इसका विस्तृत कुछ किया है, विस्तार किया है?
6: देखिए, ऐसा है कि ये अभी एक नया है और ये इसको पेट्रोलियम मंत्रालय और भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, इन दोनों का ही प्रयास है कि और इसके पीछे मकसद यह है कि देश के अंदर CNG की उपलब्धता बढ़ाना और प्लस उसके जो वेस्ट है उसकी टेस्टिंग करके कि इसकी जो न्यूट्रिशनल स्थिति है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और साथ साथ में कैल्शियम या जो और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको देख करके किसानों के खेतों में इसका उपयोग कराना है। और ये वाकई में एक मतलब अच्छा है, इसको कहते हैं FOM, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। और जैसा कि अभी तेवतिया जी हमारे बता रहे थे डॉक्टर साहब, कि अगर इसको टैंकर के माध्यम से देते हैं, और ये वाकई में ज्यादातर जितने भी जहां पर जिस जिले में ये CBG प्लांट लगे हुए हैं, इनको उन्होंने उस कंपनी, उस फैक्ट्री ने लिक्विड को टैंकर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है कि आप ले आइए अपना ट्रैक्टर और उसको ले जाइएगा, और उसको कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक लिक्विड मैन्योर। वो लिक्विड की फॉर्म में होता है और वो चूंकि फर्मेंटेड होता है, जैसा कि अगर आपको भी मैं ये कहूंगा, जो भी हमारे किसान भाई हैं, अगर उनके आसपास में कहीं भी CBG प्लांट लगा हुआ तो एक बार उसका विजिट जरूर करें, उसमें जाकर के देखें। वहां पे बहुत बड़ा बड़ा बड़े चैम्बर होते हैं और उसको पहले एक स्लरी के रूप में बड़े उसके कंटेनर हैं, उनमें उसको घोला जाता है और घोल करके इसको बिल्कुल एकदम लुगदी की फॉर्म में ले आते हैं, जैसे नहीं लुगदी बनाते हैं। और जब वो लुगदी बन जाती पूरी तरह से एकदम स्लरी के रूप में, फिर उसको बड़े बड़े चैम्बर हैं उसमें इसको भर दिया जाता है और वो फर्मेंटेट होता है। फर्मेंटेट का मतलब है सड़ ना होना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें बैक्टीरिया उसको तोड़ता है और उसके बाद में इसमें से गैस निकल करके ऊपर आ जाती है और इसका जो वेस्ट है, जो FOM जिसको रूप में जानते हैं, लिक्विड के रूप में है, उसको लेकर के फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसको ड्राई किया जाता है, तो वो एक फॉर्म FOM के रूप में हो गई। जब वो लिक्विड रह जाता है तो वो एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। और ये खेतों में बुवाई से पहले, ये खेत की तैयारी के समय अगर आप डालते हैं, जैसे हम गोबर की सड़ी खाद डालते थे या और चीज डालते थे, उसी तरह से इसको दिया।
4: डॉक्टर साहब, चर्चा इस पे और भी करेंगे, एक फोन आ गया है।
6: जी
4: हेलो।
7: हेलो, नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
7: मैं हरिश्चंद शर्मा बोल रहा हूँ, जिला मेरठ, तहसील सरदना और हमारा मिल है सकोती टांडा।
4: जी शर्मा जी, बताओ क्या सवाल है?
7: सवाल यो है जी, हमारे पास पेडी है, उसकी क्या नाम 0-38 है,
6: 0-38 है।
7: अभी तक हमने उसमें जो कुछ भी लगाया दवाई वाई, कोई कीड़ा कीट नहीं है, ठीक चल रही। ये है,
6: वो टॉप बोरर ना आ जाए, उसके लिए कोई दवाई बताओ। देखिए शर्मा जी, अब इस अवस्था पे अब टॉप बोरर नहीं आएगा। अब जो हाँ, अगर आपका खेत में कोई भी प्रभावित नहीं है, इसकी पहचान यही है कि आप देखे ऊपर की पहली या दूसरी कोई पत्ती उसमें लगा, एकदम एक शीद में छेद तो नहीं हो रहे हैं, या ऊपर की पहली या दूसरी पत्ती सूख तो नहीं रही है, गन्ने की बढ़वार जो हो रही है उनके समान ही उसकी भी बढ़वार हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ऐसा खेत कोई दिखा गन्ना का थावला दिखाई देता है तो उसमें मानिएगा कि इसमें टॉप बोरर के कीड़ा की सूढ़ी इसमें प्रभावित कर दिया है। और जो इसकी मादा, मैंने आपको पहले भी, अगर आप जुड़े होंगे हमारे प्रश्न सुन रहे होंगे, तो मैंने ये कहा था कि इसकी मादा 15-20 जुलाई के आसपास से जैसी पहली बारिश शुरू होती है तभी अंडे देना शुरू करती है, और वो अंडे में से सूढ़ी, पतली सूढ़ी निकलती है और वो ऊपर की गन्ने की पहली, दूसरी, तीसरी, यानी इन तीन पोइयों में से किसी में छेद करके उसके अंदर घुस जाती है और गन्ने को की बढ़वार को रोक देती है। अब गन्ना में जो प्रभावित करना था, जुलाई चल रहा, हमारा अगस्त का महीना चल चुका है और उसमें जो प्रभावित करना था उसने वो कर दिया। अगर आपके खेत में नहीं है तो अब मैं समझता हूँ कि कोई भी दवा डालने का कोई फायदा नहीं है, खर्चा क्यों बढ़ाए आप।
7: मेरी जो है आपसे एक विनती है।
6: नहीं, आप बताएं, बेझिझक बताइए जी।
7: वो जो है हम परंपरागत 3 स्प्रे करा कर ट्रैक्टर से,
6: अच्छा,
7: तो हमने कर दी। हमारा विचार यो है कीट नाम की चीज आवे ही ना, कोई ऐसी दवा बचाओ जैसी पहले हमने इमीदार एक और गेरी थी, कोई दवाई दो, स्प्रे तो हम जरूर करेंगे।
6: नहीं नहीं, स्प्रे आप पहले कर चुके हैं क्या?
5: दो बार।
7: हाँ जी,
6: दो बार कौन कुछ किसका कर चुके हैं बता सकते हैं?
7: एक तो दवाई थी इमेदा और एक और थी कोलेस्ट्रा कोई नाम की, इस तरह की थी।
6: अच्छा, कोलेस्ट्रोल थी भाई, वो कोरा जो आप डाली है वो अच्छी दवा है। वो जो दवा आपने डाली है जिसका आप नाम नहीं बता पा रहे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, अगर वो दवा डाली है तो फिर अब आपको दवा डालने की जरूरत नहीं। उस दवा का लगभग 2 महीने तक असर रहता है। अगर आपने जून में भी दवा डाली होगी तो जुलाई अगस्त तक वो दवा का प्रभाव रहेगा, और इसके बाद में फिर अब जैसे ही मौसम में थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो मादा अब अंडे नहीं दे रही है, जो उसने अंडे दिए थे वो फसलों को प्रभावित कर चुके हैं, अब नहीं मना करेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर आप पहले 2 दवाओं के छिड़काव कर चुके

0: है तो अब किसी दवा के डालने की आवश्यकता है।
1: अरे आपने तो डॉक्टर साहब सारी समस्याएं का सोल्व कर दिया, वाह साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बात और मैं बताऊं, इस समय अगर आप स्प्रे कराना चाहते हो तो 0050 एक SOP होता है फर्टिलाइजर जिसमें पोटास का स्प्रे होता है, वो करिए तो उसमें गन्ने का वजन बढ़ेगा और उसमें मजबूती आएगी और कीट वगैरह भी रुक जाएंगे उससे,
0: चीनी बढ़ जाएगी।
2: अगर थोड़ी संभावना होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो है ही नहीं। तो 0050 यानी 50 होता है उसमें 50%, तो उसका करवाइए 0050 का,
0: 0050 का कहने का
2: 0050।
1: वैसा है जी, ये पाउडर क्या चीज है?
2: ये 1 किलो एकड़ में लगेगा और 1 किलो की थैली आती है, पानी में बिल्कुल पूरी तरह घुल जाता है, इसका स्प्रे कराइए। और अगर आप जैसे कह रहे हैं ना जी स्प्रे तो जरूर कराएंगे, तो अगर आपका मन ना माने तो इसको जरूर इसको मिलवा दीजिए उसमें भी, और अगर अकेले भी करा दोगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा।
0: डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अब आप कीड़े की दवा न डाल करके, जहर न डाल करके उसको ताकत के लिए थोड़ा घी पिलाइएगा। ये 0050 जो 50 बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये 0050 जो है इसके अंदर पोटास है, 0% तो नत्रजन है, 0 आपका फास्फोरस है और 50 इसके अंदर पोटास है। पोटास क्या काम करेगा कि उसको थोड़ा ताकत देगा, किसी बीमारी कीड़े से लड़ने की क्षमता देगा, और साथ ही साथ इसमें गन्ने का में चीनी का प्रतिशत बढ़ाएगा, चीनी का जब वजन बढ़ेगी मात्रा तो गन्ने का वजन भी बढ़ जाएगा।
1: ठीक है जी, धन्यवाद
3: शर्मा जी आपका। जी
1: हेलो,
3: हाँ जी बोलिए।
1: इससे तो यो लाभ मुझे तो हुआ है, हम किसानों को भी फायदा होगा जी,
3: बिल्कुल फायदा होगा जी।
2: जो सुन रहे होंगे ना इसको, उनको सबको फायदा होगा।
1: हाँ जी,
2: बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो और अपना भी भला करो और दूसरे किसान भाइयों का भी।
0: अब आप ये मानते हैं कि आपके जो IPL ने ये कार्यक्रम चलाया ये किसानों के फायदेमंद है या नहीं?
1: हाँ जी खूब है जी।
0: हाँ,
2: और हमारे देखिए सकोती टांडा में हमने एक पास में CBG प्लांट है, उससे हमने टैंकर वैंकर की व्यवस्था करके और किसानों को भी ये लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मुहैया कराया है। तो ये आपको मिला है कहीं नहीं मिला?
1: नहीं जी, ये तो बता दिए कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है।
2: ये हमारा केन हेड है जितेंद्र सिंह।
1: हाँ हाँ है,
2: तो उससे बात करियो कि भाई आपने वो जो बायोगैस प्लांट का खाद था फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जो लिक्विड वो आता तरल रूप में, तो जब सिंचाई करते हैं तो उसमें वहां टैंकर खड़ा कर देते हैं, उसमें से पाइप लगा देते हैं, वो सारे खेत में पानी के साथ फैल जाता है खाद। तो या तो उससे आपका कहीं दूर रहा होगा, मैं पता नहीं आपका गांव का है, लेकिन आप बात करके जानकारी ले सकते हैं।
1: हाँ गाँव तो हमारा कैली है जी, मैं उनसे ही मिलूंगा, वो जो हमारे कैन मैनेजर साहब है ना जितेंद्र सिंह।
2: हाँ,
1: मैं उनको मेरा परिचय है, उनसे ही मिलूंगा,
2: उनसे ही मिलना इस बारे में। ठीक है, ओके जी,
1: ठीक
2: है। क्या नाम है आपका?
3: हरीशचंद शर्मा,
1: शर्मा ग्राम कैली।
2: ठीक है, ठीक है, ओके
3: शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे हो कि CBG डालते हैं लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में भी है
0: जी,
3: तो इसके इस्तेमाल के बाद
0: जी
3: कितना जो हमारे रासायनिक खादें हैं उनमें कमी हो जाएगी?
0: देखिए शुरुआत में जैसे किसान अभी इसी साल से इसका
3: शुरुआत,
0: मतलब इस साल से पिछले साल से भी शुरुआत हुई है, मैंने खुद कृषि जो सभी इस तरह के प्रदर्शन जो है ट्रायल है वो मैं समझता हूँ लगभग सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसके चलाए जा रहे हैं। और मैं शुरुआत में तो नहीं कह सकता हूं, कारण क्या है कि जो इसका मकसद क्या है कि हमारे खेत के अंदर जीवांश का स्तर गिर रहा है
3: बिल्कुल,
0: और अब किसानों के पास में उतने पशु नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, और वो गोबर एक सड़ाने के बाद में खेतों में पहुंचाते थे। अब उसकी भरपाई कैसे किया जाए और खेत में जीवांश का स्तर कितना कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के ऊपर हम बहुत लंबे समय तक खेती नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आपका रासायनिक उसमें जीवांश का स्तर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, यानी अरासायनिक खादें नहीं डालेंगे, जैसे आपकी गोबर की सड़ी खाद है, हरी खादें हैं, बर्मी कंपोस्ट है, स्वगर मिल की निकली हुई मैली है। अब चूंकि मैली में क्या होता था किसान भाई कि उसको डालने में संकोच करते थे, किसान के पास में सड़ाने की वो प्रोसेस नहीं थी, वो इतना एरिया नहीं था कि हम उसको कहां सड़ाएं और सड़ाने के बाद उसको डालें, तो इसके पीछे सब अब एक साथ हमको दो फायदा हो गया, एक तो शुगर मिल की मैली लेकर के उसमें डिकम्पोज हो गई, उससे गैस बन गई और उससे जो चीज निकल के आई उसको फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कह दिया गया, यानी वो ऑलरेडी सड़ी हुई खाद है,
3: तैयार खाद है,
0: उसको लाइए और खेतों में सीधे ले जाके डालिएगा, उससे खेत का जीवांश बढ़ेगा, खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से निश्चित रूप से किसान की लगातार अगर 2-3 साल लगातार डालता है तो उसके जो नत्रजन फास्फोरस और पोटास देता है उसमें वो मृदा का परीक्षण कराने के बाद में उसमें वो कटौती कर सकता है।
3: तो ये शुरुआत है किसान बहनों भाइयों। और डॉक्टर साहब जैसे अभी शर्मा जी से ही बात हो रही थी
0: जी,
3: बोले हम तो 3 डालते हैं कुछ भी हो जाए,
0: नहीं देखिए
3: तो ये एक मान लो नहीं है, अब उनके वहां कीट का कोई पहचान वो नहीं है, अंदेशा है, फिर भी एक डाल दें तो पैसे का भी नुकसान है और वो नुकसान वैसे भी करेगा।
0: देखिए ऐसा नहीं, जो ये मैंने क्लोरेंट्रानेप्रोल जो दवा है ये बड़ी महंगी दवा है और ये किसान को हम लोग ये कहते हैं, कारण क्या है कि कुछ दवाएं ऐसी होती है एक हाइट पे जाकर के, एक ऊंचाई पे जाकर के वो दवाएं काम नहीं करती हैं
3: जी।
0: उसके लिए हम कहते हैं कि फिप्रोनिल डालिए, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड डालिए, ये एज कम की अगर देखा जाए क्लोरेंट्रानेप्रोल की अपेक्षाकृत कुछ सस्ती है, लेकिन किसान क्या करते हैं कि अर्ली शूट बोरर आता है, अगेती तना छेदक कीट आता है गन्ने में, उसमें भी ये इसको डालते हैं। तो मेरा अपना सुझाव है किसान भाई जो मेरे इस सुन रहे हैं कार्यक्रम को, शुरुआत में अप्रैल मार्च और अप्रैल के महीने में क्लोरेंट्रानेप्रोल को न डालें, उसके स्थान पर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड है या फिप्रोनिल है 0.3% का आता है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे तो उससे भी उनको फायदा मिलेगा।
3: डॉक्टर साहब चर्चा जारी रखेंगे, एक फोन आ गया है। हेलो
1: नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: अशोक कुमार शर्मा
3: जी, बताइए अशोक जी क्या सवाल है?
1: सवाल मेरा ये जी जीरो दवाई
3: जीरो 50 के बारे में पूछ रहे हो?
2: 0050 जो अभी बता रहे थे
1: जी,
2: ये दवाई नहीं है, ये है टॉनिक, ये है फर्टिलाइजर, ये है प्लांट न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व,
1: और
2: एक किलो पड़ेगा बस, मुझे लगा 250-300 की एक थैली आएगी, एक एकड़ में पड़ेगा, उसको 400 लीटर में घोल के और ऊपर से स्प्रे करा दो, और ड्रोन से भी स्प्रे करा सकते हो, ड्रोन में तो 10 लीटर में ही घोल लेंगे,
0: ड्रोन में कम में काम हो जाएगा।
3: ओके शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब वापस लौटते हैं, जो कीट रोग की बात हम कर रहे थे, एक ही कीट रोग की बात हो पाई है, उसके अलावा कौन कौन से रोग हैं?
0: देखिए कीड़े में तो एक इस समय सबसे ज्यादा हमारे उत्तर भारत के किसानों को परेशान करता है, उसमें टॉप बोरर ही है, और टॉप बोरर से ये देखा जाता है कि कभी कभी 50% तक पैदावार हमारी कम किसानों की कम हो जाती है। क्यों, कारण क्या है कि गन्ने की जो अगर किसी किसान ने अब मार्च में अप्रैल में गन्ना बोया तो उस समय उसकी हाइट जाकर 5.5 फीट से लेकर के 6 फीट हो सकती है, तो अब उसने अगर टॉप बोरर ने उसमें जाकर के प्रभावित कर दिया तो वो जिस फीट जितनी हाइट का है, 5 फीट का है तो 5 फीट का रह जाएगा, 4 का है तो 4 फीट का रह जाएगा, फिर उसके बाद गन्ना नहीं बढ़ेगा
3: जी।
0: तो अगर आप ये देखेंगे कि पूरा एक हेक्टेयर में अगर 2.5 से 3 लाख गन्ना है तो उसकी मिलेबल केन है, उसमें अगर 3 फुट का जो गन्ना हमारा कम से कम 7 फीट का 7.5 फुट 8 फीट का गन्ना होना चाहिए था तो लगभग आधी हाइट पौधे की गन्ने की रहेगी तो उसका वजन भी उतना ही कम हो गया, तो वो प्रभावित उसको करता है
3: जी।
0: तो एक तो सबसे ज्यादा जो मेन समस्या है वो हमारी टॉप बोरर की अगोला वेदक कीट की रहती है, इसके लिए किसानों को विशेष रूप से सचेत रहना चाहिए, और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों से कहूंगा कि रासायनिक दवाओं के साथ साथ में जो हमारे जो प्राकृतिक वैसे हैं, जैसे मैंने आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल है ट्राइकोकार्ड के लिए मैंने कहा था, या प्रकाश प्रपंच के लिए कहा, फेरोमोन ट्रैप के लिए कहा है, ये चीजें जरूर अपनानी चाहिए, ये आपको बड़े ही थोड़ा सस्ती भी रहती हैं और इससे बहुत ज्यादा कारगर प्रभावित करती हैं इनकी कीटों की संख्या को कंट्रोल करने में।
3: डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि खरपतवार,
0: हाँ,
3: खरपतवार जो है ऐसे दुश्मन है किसान के, किसी भी फसल में आ जाए, वो जितना भी हम ऑर्गेनिक खाद या दूसरी खाद देते हैं वो भी लेते हैं, अपनी सेहत बनाते हैं, पानी की मात्रा भी लेते हैं, तो अगर गन्ने में भी ये समस्या तो रहती है खरपतवार की।
0: देखिए ऐसा है कि इस अवस्था में जैसे कि हमारा अब गन्ना लगभग जो पेड़ी है वो लगभग मैं समझता हूँ कि हाफ मैच्योरिटी की स्टेज में आ रही है, क्योंकि सितंबर के टाइम पे उसमें ब्रिक्स ब्रीडिंग आ जाती है 15-20 सितंबर के बाद में, तो पेड़ी की समस्या है। और जो बाबक गन्ना है उसमें भी ये

0: व्यवस्था जो है अब खरपतवार नियंत्रण के लिए उसमें बहुत ज्यादा उनको प्रभावित करने वाली स्टेज निकल चुकी है,
1: फसल हमारी बढ़ चुकी है।
0: हाँ, बढ़ चुकी है। अब जो जो उन्होंने प्रभावित किया था वो अवस्था पीछे छूट चुकी है। अब ये केवल ये कि अगर किसी किसान भाई ने गन्ना पिछेता बोया है, यानी अप्रैल लास्ट में और 15 मई के आसपास गन्ना बोया हुआ है, उन गन्नों की बढ़वार कम होगी। और इस समय केवल एक जो गन्ना खेत जमीन है वो सैंडी लोयम है, बलुई दोमट है या दोमट मिट्टी है, वहां पे आइपोमिया स्पीसीज है, जिसको कहते हैं पान के ऐसा पत्ता होता है, आइपोमिया स्पीसीज है वो, जिसको किसान भाई हमारे पश्चिम में किसान भाई उसको बेल के रूप में भी जानते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। और ये अवस्था ऐसी आती है कि उस पर किसी भी दवा का छिड़काव करना संभव नहीं होता, क्यों अगर ड्रोन से भी करते हैं तो वो नीचे आ जाती है और उसको ऊपर तक दवा नीचे नहीं पहुंच पाती है। तो ये एक मैनुअली थोड़ा समस्या है, क्योंकि वो गन्ने को लपेटती है और लपेटने के बाद में गन्ने को गिरा देती है। तो इसके लिए विशेष किसान भाई सचेत रहे। और इसका इस रोकथाम करने के लिए है कि जैसे ही जुलाई का महीना हमारा शुरू होता है, जुलाई अगस्त में 15 जुलाई से पहले पहले जो हमारा कीटनाशक है उनमें से कोई में जो उनमें कीटनाशक है उसमें 2,4-D का इथाइल ईस्टर आता है 50% का 1.25 लीटर, यानी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या हेलो सल्फ्यूरान एक दवा आती है 75 WG वेटेबल पाउडर आता है, इसकी मात्रा लगभग 990 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी एक दवा आती है मेट सल्फ्यूरान प्लस क्लोरीम्यूरान, ये बहुत अच्छा प्रभावशाली दवा है। इन दोनों दवाओं का अगर छिड़काव कर देते हैं तो भी आइपोमिया स्पीसीज करके जो आइपोमिया है खरपतवार है बेल के रूप में जिसे जानते हैं किसान भाई, उसको रोकथाम करने में काफी हद तक कारगर होगा।
2: देखिए पारा सर जी,
1: जी
2: ये जो डॉक्टर साहब बता रहे ये है जो आपने देखा होगा एक वो चलाते थे नागपास।
1: हाँ।
2: नागपास वो पैरों को भी हाथों को भी जकड़ लेता है पूरा है, नागपास में बांध दिया था ना उसमें, रामायण में भी उनको उसने
1: राम लक्ष्मण को बांध दिया था।
2: तो ये बेल है, इसमें किसान इतना सावधान रहे जैसे ही शुरू में चलने लगे उसमें खेत में घुस के उन्हें नीचे से उखाड़ दे बस
0: जड़ सहित।
2: हाँ, जड़ सहित, क्योंकि अगर एक बार लिपट गई तो चाहे आप जड़ को भी उखाड़ दो सूख जाएगी लेकिन लिपटी रहेगी, वो इतनी मजबूत होती है वो उसको छोड़ेगी।
0: बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, गन्ना नीचे पटक के डाल देती है एकदम गिर जाता है गन्ना,
2: क्योंकि पत्तियों को भी लपेट देती है उससे, ऐसे कर देती है बांध देती है।
1: तो कुल मिला के बात जैसे डॉक्टर साहब, फिर आपकी बात जो है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है कि भाई खेत में जाओ फसल के साथ बातचीत करो, रोज जाओ
2: और देखो नागपास तो नहीं कहीं हमला करने के लिए तैयार।
0: और ये विशेष करके भारी जमीनों में नहीं होती है, जो हल्की जमीनें होंगी मैंने कहा ना बलुई दोमट मिट्टी होगी उनमें सबसे ज्यादा होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि जो गन्ने की फसल में जो किसान है इस समय समसामयिक कार्य की बात करें तो कौन कौन से काम इस समय करने चाहिए उनको?
0: देखो इस समय बड़ा सही चलते चलते हम लोगों ने प्रश्न किया है कि इस समय एक हमारे सबसे पहले किसान ने कहा था कि हमारी पहली बनाई हो चुकी है। देखिए इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि गन्ने की बनाई करना, अगर क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और हवा भी चलती है, गन्ना न गिरे और अच्छी पैदावार मिले, इसलिए किसान भाई सभी जो सबसे मुख्य बात है वो अपने गन्नों की बंधाई जरूर कर दें। और एक बंधाई जो है आपके इस अगस्त के बाद में और सितंबर के महीने में जरूर कर दें, जिससे कि गन्ना हमारा प्रॉपर बढ़वार करे और गिरे नहीं।
2: और एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: जो कि इस बात से ही संबंधित है, जैसे बंधाई गिरने से बचाने के लिए एक और किसान सावधानी रख सकते हैं कि आजकल सबके मोबाइल में मौसम बता देता है वो आगे का 2-3 दिन का, तो अगर किसान को लगता है कि बारिश होने वाली है तो वो पानी ना लगाए।
0: बिल्कुल,
2: अगर पानी लगाया और बारिश आई और बारिश के साथ हवा आ गई और पहले से ही पानी लगा हुआ है तो गन्ना गिरेगा चाहे बांध भी रखा है, अगर बहुत तकड़ी वो आ गई तेज हवाएं आ गई तो उसको गिरा देंगे। अगर उस समय आपने पानी नहीं लगाया है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि गिरे, तो इसको किसान भाई विशेष ध्यान रखते हैं,
1: यानी कि मोबाइल का सदुपयोग करें।
2: हाँ,
1: है ना डॉक्टर साहब?
0: हाँ, नहीं, और इसमें भी हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, इससे हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सभी मंडल हैं, सभी जिले हैं, मतलब मेरठ मंडल है, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, यहां तक कि आगरा का

0: कानपुर तक की फोरकास्टिंग भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय से एक समूहों के माध्यम से और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से जिले वाइज एडवाइजरी जारी की जाती है कि आपके इस जनपद में कितनी बारिश से एक, और वो साप्ताहिक की जाती है, एक बार मंगलवार को की जाती है, एक बार शनिवार को की जाती है, एक एक चार चार दिन की अंतराल का। तो उससे भी किसान भाई उससे जुड़े, उसको फॉलो करें और उसमें बड़ा ही सटीक, क्योंकि इसमें कारण क्या है कि अब हर जिले में ऑटोमेटिक वेदर फोरकास्टिंग के वो लगे हुए हैं, प्लांट वो लगे हुए
1: हैं,
0: सेंसर स्टेशन बने हुए हैं, और वहां से पूरा डाटा एक ऑटोमेटिकली जाकर के वहां एक कलेक्शन होता है, वहां से एनालिसिस होता है और वहीं से फिर पूरे देखिएगा, आपको व्हाट्सएप पे भी या सोशल मीडिया पे एडवाइजरी
1: भी जाएगी। सिंपल SMS भी आते हैं। एक बार मैं अपने खेतों पे था तो एकदम से मेरे इसमें मैसेज आया, वो यूपी शाही है, बल्कि अपने वहां से पंतनगर से
0: पड़े हुए
1: हैं, अपने जूनियर थे, उनका मैसेज आया तुरंत के बहुत तेज आंधी और हवा आने वाली है, सावधान रहे। और वो थोड़ी देर में वहीं पे बहुत आंधी आ गई एकदम से,
2: आपके रहते रहते।
1: हाँ, वहीं था मैं खेतों में, तो मैंने कहा देखिए कितना सटीक जो है, लेकिन किसानों को इन चीजों का ध्यान रखना
2: पड़ेगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि सदुपयोग करना है मोबाइल का।
1: और एक और पाराशर जी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज इसी बारे में कि अगर किसी वजह से गन्ना गिर गया उसके बाद क्या करें, 72 घंटे के अंदर जितना जल्दी हो जाए उसको खड़ा करें लेबर लगा के, और उसको पैर से उसके नीचे जो है उसको
0: मिट्टी
1: दबाएं और उसको खड़ा करें, क्योंकि अगर देर हो गई तो वो जड़ पकड़ जाएगा और फिर उसे सीधा करोगे टूट जाएगा, तो गीली जमीन में ही उसको तुरंत सीधा कर दें तो उनकी फसल में नुकसान नहीं होगा और बच जाएगी।
0: और अगर गीदड़ भी नहीं खाएंगे, चूहे नहीं खाएंगे और रूटिंग नहीं करेगा, बहुत कुछ फर्क पड़ता है इस चीजों।
2: तो कुल मिला के डॉक्टर साहब देखिए, आज तो ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि अगर आप इन बातों को सुन रहे हो और ऐसा हो आपके साथ तो क्या करना है, कैसे बचाना है, ये सारी बातें आज डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते इस बार की तो बात होगी, शरदकालीन जो गन्ना बोना चाहते हैं किसान, तो वो किस तरह की तैयारी इस समय कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा एडवांस में इसलिए कर रहे हैं।
1: तो सर जी, आज आपने वो उनका सामान का कोई गीत भी इतने सुनवा किसानों को।
2: डॉक्टर साहब, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये किसानों से इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ मिलेगी फिर बताओ।
0: तो चलते चलते याद दिलवा रहे
2: तो थोड़ा पहला याद दिलाते तो मैं बाड़का तो कर देता रिक्वेस्ट की भाई एक सामान का गीत बजा दो, पर इफ टाइम रहेगा बहुत कम, तो डॉक्टर साहब से यही पूछ लें कि भाई शरदकालीन के लिए क्या तैयारी करें।
0: मेरा महेश जी से IPL के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी किसान भाई जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, शरदकालीन गन्ना की पैदावार अच्छी लेने के लिए, निश्चित रूप से हमारा शरदकालीन का गन्ना है वो अच्छी पैदावार देता है, और इसके लिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि एकल गन्ना न बोए, शरद काल में निश्चित रूप से ये सभी लोग प्रण करें कि गन्ने के साथ में हमको सह फसली खेती लेनी है, और उससे आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा, क्योंकि हमारी 10 महीने की फसल है और उस 10 महीने की फसल के बीच में लगभग 3 महीना हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी अंतः फसल हम ले सकते हैं। गन्ने के साथ में हम फूलों की खेती कर सकते हैं, गन्ने के साथ हम सब्जियों की खेती कर सकते हैं, गन्ने के साथ में हम तेल वाली फसल आपकी सरसों कर सकते हैं। सबसे आसान जो है वो गन्ने के साथ में सरसों करना है, अन्यथा सब्जी है आपकी, सब्जी वाली मटर है, सब्जियां हैं, फूलों की खेती है, बहुत ही फायदेमंद देने की बात है, और मैं समझता हूं इस पर किसी दिन हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे किसान भाइयों से, लेकिन ये आपसे इस कार्यक्रम में अनुरोध है कि गन्ने की 15 सितंबर से लेकर के तैयारी शुरू कर दें और समय से इसकी बुवाई करें, बीज का अच्छी प्रजाति का चयन करें, उर्वरक का सही तरह से इस्तेमाल करें और साथ ही साथ में FOM को जरूर डालें।
2: बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब दी है। तो डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर US तेवतिया जी, इतनी अच्छी जानकारी के लिए, किसानों की मदद के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी किसान
1: बहुत धन्यवाद,
0: और सभी किसान भाइयों को राम राम। फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में अगले सप्ताह,
1: और जुड़े रहिए गन्ने की पाठशाला से और मिठास लेते रहिए।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और विषय था गन्ना फसल में कीटों की पहचान और रोकथाम, जिसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।
4: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से

0: जीवंत बनाए ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए।
1: फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: फोन इन कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश पारासर, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शुभनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त शाम के 7:35 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं गजलों पर केंद्रित कार्यक्रम से और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:42 हुए हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और आखिरी गजल चित्रा सिंह की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों पर केंद्रित ये कार्यक्रम, और ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय शाम के 7:44 हुए हैं। ठीक अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 7:45 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही, RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
5: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल

0: विकास व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा भवन निर्माण स्वीकृति, फैक्ट्री लाइसेंस, फायर क्लियरेंस, पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन सहित अनेक सेवाएं इसी पोर्टल के माध्यम से तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि कम जोखिम वाली गतिविधियों के लिए स्वयं प्रमाणन की व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा, भवन योजना स्वीकृति, प्रदूषण संबंधी अनुमति तथा लो टेंशन बिजली कनेक्शन जैसी प्रक्रियाएं स्वयं घोषणा के आधार पर पूरी की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि इससे छोटे, कम जोखिम वाले और कम खतरे वाले उद्यम बिना अनावश्यक देरी के अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जिन उद्यमियों का पहले से जीएसटी, एफएसएसएआई, एमएसएमईडी अधिनियम और लेबर कोड्स के तहत पंजीकरण है, उन्हें अलग से ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, ईटिंग हाउस लाइसेंस तथा दुकान और संस्थान के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। इससे एक ही उद्देश्य के लिए कई प्रकार के लाइसेंस लेने की बाध्यता समाप्त होगी और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी आवेदक से वह दस्तावेज या जानकारी दोबारा नहीं मांगेगी जो पहले से दिल्ली सरकार के किसी विभाग के पास उपलब्ध है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है जिसमें मंजूरियां आसान हो, प्रक्रियाएं स्पष्ट हो, निर्णय तय समय सीमा के भीतर लिए जाए और अनावश्यक अनुपालन की बाधाएं समाप्त हो। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसेवा सदन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत योजना, संपत्ति नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
2: मुख्यमंत्री ने सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध समाधान और प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंशन से संबंधित शिकायतों की जांच कर पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने को भी कहा। इस अवसर पर महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। श्रीमती गुप्ता ने महिलाओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत, कला और अभिकल्पना परंपराओं को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहले से सफल तरीकों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्लीवासियों, कलाकारों और युवाओं के लिए ऐसे समावेशी मंच तैयार किए जाएं जो राजधानी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने में अपना योगदान दें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की दो रिपोर्ट तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित एक रिपोर्ट अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। इसके अंतर्गत रामजस कॉलेज के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 6 सप्ताह का समर इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्री सूद ने कहा कि अगली पीढ़ी को तैयार करने और भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसे मंचों को बढ़ावा देना जरूरी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कैंप कार्यालय में रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान, नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। श्री सिंह ने कहा कि राजधानी की डबल इंजन सरकार जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा नोडल अधिकारियों के साथ साथ एंटी स्मॉग गन और वाटर स्प्रिंकलर्स की तैनाती को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सिंह ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बवाना में दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम द्वारा बनाए गए लाल फ्लैट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बात की और वहां की समस्याओं की जानकारी भी ली। दोनों नेताओं ने समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल में डफरिन ब्रिज तथा

0: मिठाई के नीचे स्थित ओवरहेड उपकरण के डेड जोन में विद्युत लोकोमोटिव के रुक जाने की लंबे समय से जारी परिचालन संबंधी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया है। एक रिपोर्ट।
1: रेलवे ने बताया कि कई वर्षों से ये दोनों स्थान विशेष परिचालन चुनौती बने हुए थे। पुलों के नीचे सीमित हेडरूम के कारण इन स्थानों पर 50 मीटर से अधिक लंबे ओएचई डेड जोन बनाए गए थे। इन डेड जोन से गुजरते समय कई बार विद्युत लोकोमोटिव की विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती थी, जिससे वे बीच में ही रुक जाते थे। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेनों के संचालन में विलम्ब होता था और इन व्यस्त रेल मार्गों पर परिचालन प्रभावित होता था। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस उपलब्धि से रेल परिचालन की विश्वसनीय में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर 22 अगस्त तक राखी डाक से भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की है। संचार मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली के 34 प्रमुख डाकघरों के साथ साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राखी डाक के लिए विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। डाक विभाग ने लोगों से राखी और अन्य जरूरी सामान समय पर तथा सुरक्षित ढंग से पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट सेवाओं का उपयोग करने की भी अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नागरिक अपनी यात्रा के दौरान तय 15 दिन की समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके थे। विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 11 डबल एंट्री वीजा और 14 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी 11 लोगों को हिरासत केंद्र में भेजा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 से पहले दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग तथा समन्वय को मजबूत करना और स्वतंत्रता दिवस समारोह को बिना किसी घटना के संपन्न कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने की। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक भयावह योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल जिन दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, उन्होंने जांच के दौरान यह खुलासा किया कि वे दिल्ली में प्रदर्शन स्थल पर पेट्रोल बम से हमला करने के इरादे से आए थे। हालांकि वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। गाजियाबाद के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज सवेरे एक हादसे में हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे तीन युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक अलीगढ़ के रहने वाले थे। उनकी दोपहिया वाहन में किसी तेज गति के वाहन ने टक्कर मार दी थी और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी गई है। मामले की जांच जारी है। शिक्षा और खेल मंत्री आशीष सूद ने जूडो खिलाड़ी हर्ष सिंह और अस्मिता डे से मुलाकात की। दोनों खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। श्री सूद ने कहा कि केंद्र सरकार खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और भरोसा जताया कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार ने सोशल मीडिया में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को भी कहा है। राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान कल 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। मुख्यमंत्री लेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल के मसौदे पर विचार किया गया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी की समृद्ध विरासत और कला को प्रदर्शित करने के तरीकों पर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रामजस कॉलेज में शोध फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्वेषण 2.0 के समापन सत्र को संबोधित किया। लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने रोहिणी सेक्टर 20 और 21 की सीवर व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका का।

जी हाँ श्रोताओं, शाम हो चुकी है और इंतजार भी आप सभी का खत्म हो जाता है और हम लेकर आ जाते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम गीत मालिका। वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात के 8 बज चुके हैं। गीत मालिका के कार्यक्रम से आप हमेशा की तरह जैसे जुड़ते हैं जुड़ चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, मोहम्मद रफी की आवाज में भी आपने इस गीत को सुना और फिल्म रही दुल्हन एक रात की। आप जुड़े हुए हैं गीत मालिका के कार्यक्रम से और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना और हम बात कर रहे हैं शाम की। जी हाँ, वो शाम जो कुछ न कुछ संदेश लेके आती है हम सभी के नाम। दिन भर दुनिया को वक्त दिया, अब ये शाम अपने नाम कर लीजिए। शाम है तो भाई ख्याल तो यही आता है कि दिन भर आपने क्या क्या किया, और कहा जाए कि अपने बारे में सोचने के लिए वो वक्त शुरू हो जाता है जो रात तक चलता है। तो आप भी इस शाम में हमें शामिल कर सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पे। जी हाँ, ये हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप अपनी शाम की बातें, अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। हमें इंतजार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में इस गीत का आनंद लेते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, वादों की शाम आई। आनंद और आनंद फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में और आशा भोसले की आवाज में अभी आपने गीत को सुना। और वाकई में शाम जो है ना, बहुत सारी ऐसी बातें लेकर आती है कि हमें मजबूर कर देती है वो भी सोचने के लिए, जिसे हम सोचना भी नहीं चाहते। कभी आपने सोचा है कि सुबह जब होती है थोड़ी भाग दौड़ वाली होती है, लेकिन शाम जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें स्लो कर देती है। शाम आए तो ऐसा लगता है चाय भी ना मीठी सी लगने लगती है, खामोशी भी ऐसा लगता है जैसे कोई गीत सुना रही हो, ना कोई जल्दी ना कोई शोर, बस दिल से दिल की बात हो जाती है इस शाम में।

और चलिए शाम की बात चलिए तो एक खूबसूरत संदेश हमारे पास आया छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा का और सप्रेम नमस्कार अपना भेजते हैं और लिख रहे हैं कि हमारे नगर में सुबह से अभी तक सावन की घड़ी लगी है। पर ये तो बहुत अच्छी बात है, सावन का मौसम है और इसमें सुबह और शाम बेहद खूबसूरत रहती है। तो शुक्रिया आपने

बताया आपके यहाँ का मौसम का हाल, लेकिन आप भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। आप सुन रहे कार्यक्रम गीत मालिका, मैं हूँ आपके साथ चेतना।

जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अजीज की आवाज में भी आपने इस गीत को सुना और फिल्म रही नाम। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, मैं हूँ आपके साथ जीतना। और हम बात कर रहे थे कि शाम, जी हाँ, ये वो वक्त है जब बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं, मतलब रात कह सकते हैं, लेकिन वो जो भाग दौड़ वाली जो सुबह होती है उसका तकरीबन अंत सा हो चुका होता है इस वक्त तक। और दिल में सिर्फ एक कोने में हल्का हल्का से एक सवेरा होता है कि भाई कल सुबह क्या करना है, वही भाग दौड़। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, यहां से शुरू हो जाता है आपके लिए आपका अपना वक्त। और एक बार फिर बता दें आपको हमसे जुड़ने के लिए कौन सा है तरीका, ipradio@gmail.com पर आप हमसे जुड़ सकते हैं।

जी हाँ, अभी आपने गीत सुना आशा भोसले की आवाज़ में इजाज़त फिल्म से, और इस गीत को संगीत दिया राहुल देव बर्मन ने। खाली हाँ शाम आई है, लेकिन एक सुबह को जरूर लेकर आती है वो शाम, जब हमें एक उम्मीद मिलती है कि जो काम आज नहीं बना, जो

ख्वाब आज पूरे नहीं हुए, कल सुबह वो जरूर होंगे। शाम होते ही पुराने खत याद आ जाते हैं, वो गली, वो बारिश, वो तुम याद आ जाते हो। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन पर शाम जो होती है ना, वही पुरानी सी लगती है, जैसे हर बार होती है।

0: अभी आपने गीत सुना, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया। बेहद बेहद खूबसूरत गीत, उम्मीद करते हैं आप सभी ने जरूर पसंद किया होगा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप मीडियम वेव 366.3 पर हमें सुन रहे हैं। कार्यक्रम है गीत मालिका और मैं हूं आपके साथ चेतना। इस वक्त तक धूप जो है वो ढल जाती है, ठंडी हवा जो है वो चल जाती है, चाय की प्याली और तेरी याद। जी हाँ, शाम आते आते ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने पल भर के लिए एक सांस से ली है। वाकई में जनाब, ऐसा लगता है जैसे हाँ अब हमारे लिए कुछ वक्त है, हम अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। दिन भर भाग दौड़ के बाद ये कुछ लम्हे होते हैं जो हमें सुकून देते हैं, जो हमें थोड़ा सा ठहरा देते हैं।
1: कोयल फड़क के मस्त करे जब अलाप से दिल के वलवले दब जाएंगे, तबले की थाप।
2: शामे फुरकार, शामे फुरकार।

जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सन्यासी से गीत था आप सभी के लिए। आप जुड़े हुए हैं गीत मालिका के कार्यक्रम से और वक्त स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:35 हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, दिन भर हम दुनिया के पीछे भागते हैं भाई, भाग दौड़ में दुनिया शाम आ जाती है, शाम को खुद से मिलना हम भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये वक्त ऐसा होता है जब आप खुद से बात करते हैं। भाई शाम को साहब हिसाब किताब मत कीजिए कि कैसा रहा दिन, कुछ नहीं, सब भूल जाइए, बस चाय का कप उठाइए और जिंदगी को जी लीजिए।

फिल्म नया कानून से मोहम्मद रफी की आवाज में गीत और इस गीत को संगीत दिया मदन मोहन ने। देखिये ना स्टूडियो की घड़ी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, पता ही नहीं चला है तकरीबन हम आपके साथ कितनी देर से थे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना ना भूलें, हमें इंतजार रहता है।

जी हाँ श्रोताओं, तलत महमूद की आवाज़ में अभी आपने इस गीत को सुना और आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से। मैं हूँ आपके साथ जीतना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि की 8:41 हो चुके हैं और लगभग अब जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन इस वादे के साथ जा रहे हैं कि आपसे मिलेंगे 11:10 पर लेकर कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, आपके गीतों को शामिल करेंगे और कुछ रहेंगी आपकी हमारी बातें। फिलहाल इस आखिरी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी 11:10 पर। अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर ठीक 8:45 पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
3: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
4: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने

0: विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बम्बई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला। पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: तो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाते हैं 8 लोग और वहां इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए

0: मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
1: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रूपये पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रेयांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
4: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India, since 2019, the Supreme Court recorded institution of 75,410 fresh matters last year, against a disposal of more than 65,000 cases. The volume of litigation in the Supreme Court has constantly been on the rise due to a persistent gap between institution and final disposal of cases in the court. The increase in the number of judges in the Supreme Court is expected to expedite the disposal of cases and ensure timely justice to the people. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
3: After completing the business, the deputy chairman adjourned the upper house for the day. Earlier in the day, the upper house witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest on the NEET paper leak issue. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the government keeps itself informed of global developments and evolving international regulatory approaches relating to online safety, including measures adopted by different jurisdictions for protection of children in the digital environment. He said the Digital Personal Data Protection Act 2023, DPDP Act, has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. The DPDP Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content, and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered under intermediary definition and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. In Jharkhand, the students protest against the alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations being held at Jaipal Singh Munda Stadium in Ranchi is intensifying with each passing day. The agitating students have announced plans to lay siege to the Jharkhand Assembly during the upcoming monsoon session to press their demands. The BJP today hit out at senior Congress leader Rahul Gandhi over his silence on the ongoing protests in Jharkhand against alleged irregularities in the Jharkhand Public Service Commission and Jharkhand Staff Selection Commission examinations. Addressing a press conference in New Delhi, BJP spokesperson Sambit Patra alleged that Mr. Gandhi has not visited Jharkhand because the Congress is part of the ruling alliance in the state. He also criticized the Congress leader for bringing innocent children to his press conference for the party's own political purposes. The BJP spokesperson said children are the future of the country and should not be drawn into politics for any issue. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. He said women, marginalized communities or those who were denied their basic constitutional rights for decades have been empowered with the full application of the constitution. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
5: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
3: India today asked Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istehsal. He said the world is not fooled by these orchestrated spectacles. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. Punjab police has uncovered a sinister plan of cross-border terror module to target Delhi's Jantar Mantar during a recent student protest. The persons involved in two ISI

आप महसूस हो रहे थे सुदर्शन फाखरे के कलाम से और आवाज जगजीत सिंह की थी। एक और खूबसूरत गजल इसी दिलकश आवाज में आपकी नजर करते हैं। कलाम है जिगर मुरादाबादी का।

एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे हैं जगजीत सिंह की गाई चंद गैर फिल्मी गजलों से, और ये है इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। सलाम निदा फाजली का।

एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे जगजीत सिंह के गाए चंद गैर फिल्मी गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज दफा 370 और 35 ए को तारीखी तौर पर मनसूख किए जाने को 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में इसी दिन दफा 370 और 35 ए को मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में कायापलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्जान सेहत, सनतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की की हुकूमत के अज़्म का इयादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदा ताबीर करने और इस सिलसिले में तआवुन करने का मौका हासिल हो। दफा 370 को मनसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कानून इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तारीखी कदम से जम्मू कश्मीर में तरक्की में तेजी आई है। दफा 370 को मनसूख किए जाने के 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सेहत, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में खातिरखा तरक्की हुई है। पंजाब पुलिस ने तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर को निशाना बनाने के सिलसिले में दहशतगर्दी के एक सरहद पार ग्रुप के मंसूबे का पर्दाफाश किया है। अमृतसर पुलिस की जानिब से पता लगाए गए आईएसआई के हामी सरहद पार दहशतगर्दी के 2 ग्रुपों ने तहकीकात के दौरान इंकशाफ किया कि वो पेट्रोल बमों के साथ एहतजाज के मकाम पर हमला करने के इरादे से दिल्ली गए थे। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हिरासत में लिए गए 9 अफराद में से 4 कम उम्र के हैं और उन्हें आईएसआई के आकाओं ने तरबियत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मालियाती पॉलिसी कमेटी ने आज अपनी पॉलिसी मीटिंग के अख्तिताम पर अहम पॉलिसी रिपो रेट में कोई तब्दीली न करने का फैसला किया है और इसे 5.25% बरकरार रखा है। फैसलों का ऐलान करते हुए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि एमपीसी ने अपने रुख में भी कोई तब्दीली न करने का फैसला किया। भारत ने आज पाकिस्तान से कहा कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में खूनरेजी बंद करे, अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे, नीज भारत के उन तमाम इलाकों से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जनूबी कोरिया के असन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिली जुली रही। खवातीन सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं, वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खरब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अस्मिता चनीहा, ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वली शेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मीटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35 ए की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और अवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: रेडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मशवरे सेहत के

इस सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से लेकर हाजिर है आपका मेजबान नईम आदाब। आज के सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे फल की जिसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है और मुंह में पानी भी आता है क्योंकि इतना खूबसूरत होता है। और ये जो फल है वो है कीवी फल, जिसे चीनी करौंदा भी कहा जाता है। एक छोटा सा लेकिन गजाइत से भरपूर फल है और चमकीले हरे गूदे और काले बीजों के लिए ये और अपने जायके के लिए भी मशहूर है। अगर इस फल की बात की जाए तो विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई के साथ साथ फाइबर्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा। फॉलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये कीवी, जिससे कई तिब्बी फवायद हासिल हो सकते हैं। और खास बात यह है कि इसमें जो गजाइत है उसकी वजह यह है कि अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, कुव्वत मुदाफियत जिसे हम इम्यूनिटी भी कहते हैं, उसमें इजाफा होता है और आपकी सेहत में खातिर खा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा कीवी में चूंकि कम कैलोरीज होती हैं, फाइबर्स ज्यादा होते हैं, तो लिहाजा वो अफराद जो वजन कम करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं वो कीवी का अगर इस्तेमाल करें तो वजन कम करने में उनको मदद मिल सकती है। और ये बहुत ही उम्दा फल है और कीवी को कहा जाता है कि गजाइत का खजाना है। अपने छोटे से साइज में ही बहुत सारी चीज रखता है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वगैरह वगैरह। विटामिन सी की वाफर मकदार होने की वजह से यहां तक कि संतरे से भी ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है और इसमें विटामिन के, विटामिन ई और फोलेट भी होता है। और अगर इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस का एक अच्छा ये सोर्स है जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बनाकर रखता है। खास बात यह कि हमारे अज़लात को, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी ये मुआविन साबित हो सकता है। और कीवी एक ऐसा फल है जो फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो जिसमें ऑक्सीडेंटिव जो टेंशन होता है, सूजन है, उसे लड़ने में मदद करता है। और फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से आपका निजाम हाजमा बेहतर रहता, पेट भरे होने का एहसास होने की वजह से ये वजन कम करने में मुआविन साबित होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि विटामिन सी बहुत ज्यादा इसमें पाया जाता है, इसी वजह से इन्फेक्शन आपके जिस्म में, इन्फेक्शन को रोकने में ये मुआविन साबित होता है। और अगर आपके जिस्म में कोई जख्म हो जाए तो उसको भरने में ये मददगार साबित होता है। और पोटेशियम इसमें मौजूद है, इस वजह से आपके ब्लड प्रेशर के को कंट्रोल करता है और दिल से मुतालिक बीमारियों को कम करने में भी मुआविन साबित हो सकता है और उसके खतरात को भी कम करता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने और आपके निजाम हाजमा को दुरुस्त करने में मुआविन साबित हो सकते हैं। और आपकी बुनाई को भी ये बेहतर करता है। वजह उसकी है कि इसमें ल्यूटिन और जैक्सेंथिन जो है वो मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है। उम्र से मुतालिक जैसे आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं या वक्त से पहले उम्र दिखाई देने लगती है आपके चेहरे पर उसको, या फिर दाग धब्बे हो जाए आपके जल्द पर, तो उनसे भी ये उनको दूर करता है और बिनाई को बेहतर करता है। और एक खास बात यह है कि शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो शुगर को कंट्रोल करने में मुआविन साबित हो सकता है। और कीवी में कुछ ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज या गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से अगर कहीं सोजिश या सूजन है जिसमें, तो उसमें भी इफाका हो सकता है कीवी के इस्तेमाल से। और अक्सर बेशतर बीमारी में जब कमजोरी हो जाती है या फिर बीमारी से लड़ने की ताकत जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें माहिरीन जो है कीवी फल को खाने का की आपको सलाह देते हैं, तो बहुत सारे उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे चंद तिब्बी फवाइद उस छोटे से फल के हवाले से जिसे हम कीवी के नाम से मौसूम करते हैं। आज के मशवरे सेहत के सिलसिले में बस इतना ही।

0: मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फिर डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। और अब वक्त हुआ है मार्केट मंत्रा के रिपीट ब्रॉडकास्ट का, तो आइए सुनते हैं मार्केट मंत्रा का ये रिपीट ब्रॉडकास्ट।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawanlal with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Desh videsh ki aarthik gatividhiyon aur share bazaar ki halchal par charcha ke liye aaj shrotao hamare saath aamantrit hai hamare samaksh varishth aarthik patrakar Siddharth Singh. Siddharth, karyakram mein aapka abhinandan.
2: Prachi, ke saath saath Gaurav, aapko bhi good evening.
1: Sabse pehle ek nazar aaj ki aarthik surkhiyon par.
0: Thank you, Prachi. Siddharth, once again, good evening, welcome. Listeners, a quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged. Raises current fiscal year growth forecast to 6.7%. Trims inflation projection to 5%. And global crude oil prices rise.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त सेंसेक्स 150 अंकों से ऊपर बढ़ा निफ्टी 24,600 से ऊपर बंद हुआ भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है चालू वित्त वर्ष में विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया वहीं महंगाई दर का अनुमान 5% घटाया है दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% बढ़ा बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा दोनों प्रमुख शेयर सूचकांक कमजोर होते नजर आए हालांकि कारोबार के अंत में क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के बाद दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कुछ हद तक रिकवरी भी की
0: Benchmark domestic equity indices ended on a positive note today. The Sensex gained 152 points to close at 78,581. The Nifty rose marginally by 10 points to settle at 24,625. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.2% and the small-cap 100 index added 0.8%. Earlier, the markets opened in the positive zone, but as the session progressed, both benchmark indices slipped into negative territory. However, towards the end of the session, the Sensex and the Nifty paired their losses after the closing auction session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई सबसे ज्यादा बढ़त वाली कंपनियों के शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट 2% एनटीपीसी 1.8% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.7% बढ़े वहीं घाटा दर्ज करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.2% एचसीएल टेक 1% से अधिक और रिलायंस में लगभग 1% की गिरावट आई
0: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, housing finance advanced 1.8%, metal rose 1.6% and auto gained 1.4%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt, energy and oil and gas fell by 0.4%, mid-small private banks fell 0.3% and capital goods dropped by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,292 companies advanced, 1,958 declined and 198 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ सिद्धार्थ अगर हम पिछले यूएस स्टॉक मार्केट के सेशन की बात करें तो वहां पर एक रैली रही तो क्या ये उसी का प्रतिरूप हमें आज बाजार में देखने को मिला कि बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर बंद हुए
2: नहीं उसके अलावा प्राची जो मुझे लगता है न केवल जो यूएस मार्केट का रिफ्लेक्शन जो आप बोल रही हैं वहां पे जो तेजी है पिछले तीन चार दिनों में, खासकर आईटी स्टॉक्स में तेजी है जो अमेरिकी बाजारों में, मुझे लगता है कि आज जो मुझे लगता है जैसे जैसे जब बाजार खुले तो काफी फ्लैट थे, उसके बाद गिरे भी लेकिन उसके बाद रिकवरी आई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो तीन जो महत्वपूर्ण कारण मुझे लगता है, खासकर एक जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध है उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाजार में बनी हुई है, और उसके अलावा मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला मुझे लगता है, तो कहीं ना कहीं ये दो कारण और मुझे लगते हैं जो जो बाजार पे कहीं ना कहीं हावी
1: है। रेट का भी कुछ,
2: रेपो रेट का मतलब जो रेपो रेट जो आया आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है रिजर्व बैंक का सेंट्रल बैंक का, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, वो एक्सपेक्टेड था कि कोई बहुत ज्यादा मतलब इस समय कोई वो बदलाव
1: सरप्राइजिंग नहीं था, मतलब
2: नहीं बिल्कुल नहीं, वो जो न्यूट्रल स्टांस है, और वो आप देखेंगे चाहे अमेरिका का जो फेड है फेड रिजर्व, उन्होंने भी अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, तो मुझे लगता है वो उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं था, बाजार ने उसको मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रखा था, और वो अच्छा भी है, शुभ संकेत है हमारे बाजारों के लिए।
0: सो दैट लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स बिल्डिंग इन सर्टेन प्री एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, कीपिंग ऑल दैट इन माइंड एंड ऑल्सो कीपिंग आई थिंक द फैक्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज सॉलिड रोबस्ट, आई थिंक कंजम्पशन इज स्टिल देयर, द मॉनसून हैज पिक्ड अप which was predicted not to be so good, but I think by and large it's averaging out with little pockets of disturbance. Do you think that somewhere in August and September there was a sentiment that maybe the markets won't be really rallying or really picking up? Do you think the range in which they're going to move is going to go up a step now?
2: Gaurav, it will all depend the direction of the market for as you asked, the will they move out of the current range, that I think to a large extent would depend on how US President Donald Trump, his next stance, because obviously now first current uncertainty, that is the US-Iran war that is going on, and one thing which has become certain is uncertainty. Every day we hear both the sides, or at least the American president saying or announcing that they are expecting to reach a peace deal with Iran, but from the other side then there is some contradiction. Again yesterday their hopes have been raised, he has issued a statement sometime earlier in the day, also we saw the statement that the Strait of Hormuz is likely to get normal, operations are likely to get normalized. So I think one would be how the US-Iran conflict pans out in the coming days, and how the peace, whatever peace deal is reached, how it is actually implemented, or whether it is something which is stable, which stabilizes or is implemented actually on the ground. So I think that would be one factor. Plus, yes, as far as our own GDP numbers would come now, we had very good GDP numbers. Q4 was very good. And also, if you look at the monetary policy announcements by the RBI governor, I think he's also up, the growth prospect has gone up. And the concern, which is that inflation was a concern, obviously, because of the West Asia, because we are huge importers of energy, and that obviously feeds into our prices. So, right. So that also apprehension he has kind of allayed, and they've also lowered the projection for inflation, though very small, marginally, right. Yeah, by a small percentage. But even then, he is confident of keeping it within the range of 4% plus minus 2.
0: Right. So help us here, Siddharth, understand, do a little zoom out and say that the resilience or the range, or I think the flexibility that the Indian market has shown over the last year, right? Uncertainty, geopolitical, everything starting, year or year, right? Tariffs and everything, right? And keeping all that in mind, how is international money, how is foreign funding now looking at India in the midterm to say, you know, because resilience plays a huge role?
2: What a very important question. And if we look at last, I would say from the time, especially if you look from the time Mr. Trump announced tariffs across the globe, and we were also victim, I would say, of that, of his announcements. And after that, we saw a huge exit by the foreign institutional investors. And even there was, I would say, not say disappointment, but yes, there was concern also on the foreign direct investments, not only institutional or portfolio investors, also in terms of FDI inflows. So, and if you look at the numbers, the statistics that we've been getting from the from April this year, current financial year, starting April, if you look at the FII inflows, also look at the FDI inflows, we've got huge positives. So at least for FIIs, obviously the inflow is not so much still in the capital market. But right. Yes, hugely in the debt market, and that also especially because we also announced certain tax concessions to them. Even the, yesterday there were some amendments moved in Parliament by the Finance Minister, also giving a kind of ease of doing business to.
0: So it's on the radar for the economists in India and the policy.
2: Obviously, I think because the kind of stability, the growth prospects, if you look in medium to long term, despite so much of uncertainty, instability, we still continue to be well grounded, and we are still one of the fastest growing economies of the world.
0: Right, that's reassuring. Moving on to our next story, the Reserve Bank of India, RBI, has kept the repo rate unchanged at 5.25% while retaining a neutral policy stance. Announcing the Monetary Policy Committee's decision, RBI Governor Sanjay Malhotra said that the country's economic growth continues to be supported by resilient demand, and it remains the world's fastest growing major economy. The RBI has raised its growth projection for financial year 2027 and lowered its inflation forecast.
3: Taking all factors into consideration, real GDP growth for this year is now projected at 6.7%. This is 10 basis points higher than our previous projections. Q1 at 7%, Q2 at 6.4%, Q3 at 6.5%, and Q4 at 6.8%. CPI inflation increased to 4.4% in June after remaining below target for 16 consecutive months. It turned out to be lower by 30 basis points than what was our earlier projections. After considering all factors, CPI inflation for this year is now projected to be 5%, 10 basis lower than our earlier projections, with Q2 at 4.7, Q3 at 5.9, and Q4 at 5.5%.
1: Siddharth, repo rate unchanged, policy stance neutral, और GDP growth की जो forecast है, that is 6.7, जो कि एक राहत की सांस है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: प्राची, राहत ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ये राहत की सांस है, बट मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी में है या जो रेजिलियंस की बात अभी गौरा कर रही थी, तो मुझे लगता है शायद उसी को उन्होंने अपने आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है सेंट्रल बैंक का, वो उन्होंने उसको और मजबूती से पेश किया है. आप अगर उनका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जहां तक महंगाई की बात उन्होंने कही है कि अभी भी महंगाई खाली फूड और फ्यूल और नहीं जो है वो एक चिंता का सबब है, और दूसरा उन्होंने जो चिंता जताई है वो है खरीफ की जो सोइंग चल रही है इस समय और जो मॉनसून और एल नीनो का इम्पैक्ट, तो वो एक दो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज. हालांकि उन्होंने उसके साथ साथ ये भी बोला कि जो डाइवर्सिफिकेशन के सरकार ने कदम उठाए हैं क्रॉप्स के, और जो हमारे पास अभी भी फूड ग्रेन के जो स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छे हैं, तो इसीलिए आरबीआई ने शायद जो महंगाई का जो उनका आकलन था, जो एस्टिमेट था, उसको भी मार्जिनली घटाया है. साथ साथ जो उन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की और जीडीपी का भी आकलन जो है उसको भी ऊपर किया है. पहले पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इट वॉज 6.6 और इस बार उन्होंने 6.7 का एस्टिमेट किया है फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर. तो कहीं ना कहीं, और अगर आप रूरल डिमांड देखें या अर्बन डिमांड देखें, इंडस्ट्रियल साइड, सर्विस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं, और जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, चाहे जीएसटी के नंबर्स आए हों या जो कार सेल्स के नंबर आए हों, तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल दिखती है कि जो हिंदुस्तान मैक्रो इकोनॉमी

0: अपने फंडामेंटल्स हैं इंडिया के वो इंटैक्ट हैं एंड देयर इज नथिंग टू वरी।
1: बिल्कुल सिद्धार्थ, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी हमारे जो डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हैं वो पहली तिमाही में काफी रेजिलियंट नजर आए। बहरहाल इस संदर्भ में आइए सुनते हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा।
2: Renewed tensions in West Asia, which are disruptive of global supply chains, volatility in international financial markets, and weather-related shocks pose downside risks to growth. However, domestic economic activity has exhibited resilience, as reflected by the high-frequency indicators available for Q1. Early results of corporates for Q1 indicate healthy performance in the manufacturing sector. This is also corroborated by an expansionary PMI. Services activity too maintained its momentum in the wake of strong domestic demand. Overall, the Indian economy performed better than expected in Q1.
1: आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़ी एक और खबर। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ टेस्ट कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इनके सुरक्षा फीचर्स और अन्य विवरण जल्द साझा किए जाएंगे। प्लास्टिक के नोट जब चलन में आ जाएंगे, जिसकी परिकल्पना हम अभी कर रहे हैं, और किस तरीके से उभरेंगे ये तो वक्त बताएगा सिद्धार्थ, मगर आप इसे कैसा देखते हैं ये हम जानना चाहेंगे।
0: प्राची, मुझे लगता है कि दुनिया के 30 देश कम से कम ऑलरेडी प्लास्टिक नोट्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और आरबीआई रिजर्व बैंक भी इसको एक पायलट के तहत अभी शुरू कर रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, हालांकि जो एक्चुअल हमको देखने को मिलेंगे नोट्स वो अगले साल अप्रैल में, जो उन्होंने बोला अगले वित्त वर्ष के शुरू में। और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कम से कम ऐसा बोला जाता है कि जो अपने कागज के नोट हैं उनसे कहीं ना कहीं कम से कम 2 से 4 गुना ज्यादा उनका लाइफ स्पैन होता है। आप उसमें जो फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स और अच्छे डाल सकते हैं, और अगर लाइफ स्पैन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा अगर कॉस्ट इनिशियली ज्यादा भी होगी तो जो उनकी लाइफ स्पैन है अगर वो ज्यादा है तो वो उसको कवर कर लेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो दो कारण तो ये हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि जो छोटे नोट्स हैं, जो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं
1: जी,
0: उनका जो उसका शुरुआत हम वहां से कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 या 20 रुपए के नोट्स की जो बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ज्यादा जो आप इस्तेमाल में आते हैं वो 10 रुपए या 20 रुपए के नोट्स का चलन ज्यादा होता है,
1: चेंज होते हैं।
0: हाँ, जो 500 का नोट है वो आप रोज रोज हर चीज में अपने लेन देन में उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे जो है छोटे नोट्स, इसीलिए फोकस इज ऑन स्मॉल नोट्स, स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। और ये आने वाला मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने बोला कि पायलट के तौर पे शुरुआत करें, अगर रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो इसको और जो है बड़े पैमाने में इसको आगे बढ़ाएंगे।
1: बिल्कुल।
3: मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट न्यूज आइटम, द ऑफर फॉर सेल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच क्लोज्ड टुडे अट्रैक्टेड बिड्स फॉर अबाउट 70% ऑफ द शेयर्स set aside for retail investors. According to BSE, the category placed bids for about 57.6 million shares compared to 82.2 million shares reserved for retail investors. Yesterday, offer for sale in the LIC received an overwhelming response from institutional investors and was oversubscribed. In view of the exceptional demand, the government had decided to exercise the green shoe option. Moving on to our next story, India's services sector remained in expansion territory in July, supported by healthy export demand and continued hiring. According to the HSBC India Services Purchasing Managers Index PMI, data compiled by S&P Global, the seasonally adjusted services PMI, business activity index stood at 53.3 in July. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. However, the country's service economy growth slowed in July as business activity rose at the weakest pace in over 4 years. This was largely due to softer demand, competitive pressures and order postponements. Meanwhile, service providers continued to report growth in activity with strong overseas demand emerging as a key support factor. The report showed that the rate of job creation showed an uptick from that in June, with service providers continuing to expand their workforce. Further, input cost inflation softened to a 6-month low and remained below the long-running average despite higher fuel, labor, material, technology and transportation expenses. Additionally, the HSBC India Composite PMI Output Index, which tracks both manufacturing and services activity, fell to 54.3.

0: I think you already have made your comment on crude oil prices, so we shall move to gold and silver, the glittering metals. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 2.2% up at 1,47,490 rupees per 10 grams, while silver was trading 3% higher at 2,28,800 rupees per kilogram. A short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.8% बढ़कर 1,45,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.7% की बढ़त के साथ 2,27,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सिद्धार्थ, समय की परिधि में रहते हुए मैं टिप्पणी आपसे चाहूंगी सोने के दाम पर खास करके, और एक सोने चांदी अगर आप दोनों के दाम पर बताएं तो बेहतर है।
2: देखिए, सोना अभी तक जो बॉटम हमने देखा इस पिछले 2-3 महीने में, हमने देखा तकरीबन $4,000 पर आउंस पे कहीं ना कहीं वो बाइंग आ रहे हैं। हाँ, वहां बाइंग आ रही है, लेकिन अभी आप जब आज की बात करें तो एक बार फिर कीमतें बढ़ी हैं, तकरीबन मुझे लगता है $4,100 के ऊपर पर आउंस है। और उसके दो प्रमुख कारण मुझे लगता है, एक तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं, साथ ही साथ जो यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स हैं या बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी थोड़ा घटा है हल्का सा, तो वो दोनों कारण है। क्योंकि गोल्ड को ये माना जाता है कि इसमें कोई आपको रोज कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो लेकिन साथ साथ इसके साथ साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अभी भी बड़े पैमाने पे गोल्ड जमा कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड बनी रहेगी।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, मेरे और गौरव के हम दोनों के ही तमाम सवालों के जवाब।
2: आप दोनों को भी धन्यवाद।
0: थैंक यू सिद्धार्थ। Before we close the headlines, benchmark domestic indices end on positive note. Sensex rises over 150 points. Nifty settles above 24,600. RBI leaves repo rate unchanged, raises current fiscal year growth forecast to 6.7%, trims inflation projection to 5%, and global crude oil prices rise. That's all for today. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
1: सामने अभी आप मार्केट मंत्रा प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फरमाइश फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। आज का ये प्रोग्राम लेकर एक बार फिर आपका दोस्त नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। तरसा दिया है अबरे गुरेजा ने इस कदर, बरसे जो बूंद भी तो समंदर लगे मुझे।

तबस्सुम और उनके कुछ और साथी कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा की फरमाइश भी थी, इसी नगमे को एंजॉय कर रहे थे। मुल्ला गुड़दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, और आप हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मूड़त बोरखेड़ा उज्जैन से, और इसी नगमे की फरमाइश खानजी पीर उदयपुर से मौसूल हुई, जब्बार मोहम्मद नजीब खान और मंजू अशरफ की जानिब से, और यह फरमाइश मेल मौसूल हुआ हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा का, और आप हैं करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी, और यह फरमाइश दिल्ली से मिली है बजनू का टीला से, और हमारे सामने कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। शाहरुख अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी की फरमाइश हररु मटकली जिला बरेली से आई थी इस नगमे के लिए, और आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर भी सुनना चाहते थे इसी नगमे को। सिद्धार्थ नगर दरेपुर बावली से ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ गजानन येले, नवदीप येले और सुशील येले का, और आप हैं मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, और आखिरी दीवान एमपी से फरमाइश की रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल और अहले खाना ने। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा है, और फिल्म की जहां तक बात है दोस्तों, तो फिल्म है भाभी। तो आइए ये नगमा आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ नाम और नगमे की बारी तो जनाब है ही। राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर, साथ में अक्षय रामेकर। नालापार बाग छोटे साहब रामपुर से फरमाइश की है नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन और मोहम्मद जमालुद्दीन, और उनके अहले खाना भी साथ में शामिल हैं। वज्र लेआउट नागपुर से अनिल कोहले, छाया कोहले और प्रियांश कोहले, और कमल भगत की फरमाइश जालंधर पंजाब से मिली है, और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। साकरा सोमनी राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू और देवेंद्र प्रताप साहू और अहले खाना, और इसे पढ़ने में थोड़ा सा मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। एचपी वाचे गौड़ा और बेबी सी पूर्णा है, चंद्रा तेजस्वी भी नाम शामिल हैं, और स्टेट कर्नाटक से है ये फरमाइश, गांव है हलागापुरा, जिला चमराजा नगरा, कुछ इस तरह से अगर कहीं गलती हुई दोस्तों माफ कीजिएगा, लेकिन कोशिश की है कि जैसे आपने लिखा वैसे पढ़ा जाए। अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको साइड लाइन करते हैं, और यही फरमाइशी ईमेल मिला है व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही और राजश्री का, और साथ में कुछ और साथी भी हैं। रेलवे रोड गंज डुंडवा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी की फरमाइश भी अगले नगमे के लिए, और आप हैं कोल सिटी बरकाताना से अफजालता शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और जगराम साहू, साथ में हैं बबलू साहू, जामुन देवी और उनके कुछ और साथी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के नागर कोहरा से आपकी फरमाइश हमें मिली है, और शिवप्रेम एमपी से मनोज नामदेव, मयंक नामदेव और खुशबू नामदेव, जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान मुलानी, फूल चिंचोली तागलुलो का पंधरपुर से, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता सानी और बेबी शयाना, और आप हैं परकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से, इस नगमे को सुनने के मुतमन्नी मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, साथ में शाहनवाज सरफराज अब्बासी, और अजीत भावसार की फरमाइश मिली है सिमंदर पार्क विमगाम से, साथ में प्रमिला भावसार, और ये फरमाइश मेल के आर साहू, गंगूलाल रजक मुरली छत्रे का है, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

हैं अमोल लोखंडे, शारदा लोखंडे, आरती लोखंडे, नेवासा महाराष्ट्र से, और ये फरमाइशी ईमेल नेहरू चौक पैंथर से मिला है। डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सुनील प्रसाद जाधव का इसी नकमे को सुनना चाहते हैं। अनवर साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, दाऊद सराय सहारनपुर से, और अगला नकमा आपके नाम भी करते हैं। आप हैं भाई मनोज सेन, पूनम सेन और दीपक सेन, सौम्य सेन, सिटी सेंटर खंडवा से। राधे कुमार विद्यार्थी, सवित राधे विद्यार्थी, बुल्के वाली फलना चाहे, गोकुल चौक गंज जिला सहरसा से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई। और बिशनपुर गिरडीह झारखंड से है हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम, इसाफ मोहम्मद, खदीजा बेगम, मोहम्मद अल्ताफ है, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, और मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसन पवार की फरमाइश ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मिली है। और कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसीन आजाद, आसमा परी और नूर आयशा अहमद बागवान, और राहुल मनवर, सलम मनवर, साथ में उनके बेबी प्रियांशी हैं। शाहनगर यवतमाल से आपकी फरमाइश है। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं बगबुड़ पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, और आप हैं मोहम्मद अनीस मुखाल, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अगला नाम शामिल हो चुका है इसलिए ये बिल्कुल शामिल नहीं होगा, कतन कतन शामिल नहीं होगा। बादश फैल शेगांव महाराष्ट्र से, तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप अपने ही नाम लिखकर भेजिए, दूसरा नाम जब दूसरे ईमेल में आता है तो फिर आप क्यों लिखते हैं उसको। इस मामले फिर ये होगा कि आपका भी नाम शायद शामिल होने से रह जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिलहाल तो नकमा के बारे दोस्तों ये नकमा सुन लेते हैं।

दिव्या हर्षित तलेकर और यह फरमाइश मिली है उन दोस्तों की जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। देवी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू और अश्वनी वर्मा और उनके कुछ और साथी, और ये फरमाइश मिली है छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम अक्षय सेन की, और इसी नकमे को सुनने के मुतमन्नी है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, साथ में नौरीन अंसारी, और इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा है बिशनपुर गिरडी झारखंड से। अगला ईमेल है उन दोस्तों का जो हो चुके हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं जनाब। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और कापा सेड़ा वाला भी ईमेल पहले शामिल हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। मलिया सदरा मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, साथ में हमेशा की तरह मास्टर जीपीएम जैन, और ये फरमाइश मिली है उन दोस्तों की जिनके नाम हो गए शामिल। आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल करते हैं। ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी, रईस उल दूला अंसारी और अहले खाना। अगले नामों की फरमाइश आपकी भी है, लेकिन आप वो दोस्त हैं जो शामिल हो चुके हैं। ये दोनों ईमेल रिपीट हुए, तो आगे बढ़ते हैं। बलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुनिसा बेगम और सद्दाम सोनी, और ये फरमाइश नेवस्तीगंज डंडवाए से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी की, और शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर भी साथ में शामिल है। इसी नाकमे को सुनना चाहते हैं नासिर शेख, नाजिर नासिर, साजिद शाहिद, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, और चंद्रेश गौर, वंदना गौर, जयपाल यादव की फरमाइश सागर से मिली है। अगला ईमेल है कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, वेदिका फूलमाली का, अहमदपुर खेगांव खंडवा से, उत्तम कुआ भगत, श्वेता भगत, केशुताशु पाकुर झारखंड से सुनना चाहते हैं इस नकमे को, और बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक तन्नु। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नकमा। लता मंगेशकर की आवाज में है ये खूबसूरत नकमा, फिल्म है धरती कहे पुकार के, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और नगमा यकीनन मजरूह सुल्तानपुरी का होना चाहिए।

0: इसी नगमे को कुछ और दोस्तों ने पसंद किया, उनके नाम शामिल करना चाहेंगे। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और कुमार ओम कुमार सुरलकर, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तृप्ति साहू का, और छोटे अंसारी के साथ में आज कौन है, आलम अंसारी, असद अंसारी हैं, पंजूसराय संभल से आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है। और नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर और ज्योति ठाकुर है, चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बालोदा बाजार छत्तीसगढ़, काफी लंबा चौड़ा पता है जनाब। और गुरु नानक नगर मालोट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया और आरती सेतिया और उनके कुछ और साथी, बहुत दिनों के बाद तशरीफ आप लाए हैं, कहाँ गायब थे जनाब इतने दिनों, बताइएगा जरूर। और मलेरकोटा पंजाब से सुनना चाहते थे नगमे को मोहम्मद इरफान खान, मुस्कान खातून और रौनक खातून, इसी नगमे की फरमाइश की अल्ताफ हुसैन सैफुल्ला सबाद ने सांगली जत शहर से। आप हैं बल्लारपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया भारशंकर, मास्टर ओमी भारशंकर और बाबा साहेब वडोदे आदिचर पे चंद्र प्रभा वडोदे की फरमाइश जरूर वरूर से मिली थी। मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, पदमपुर, श्री गंगानगर, राजस्थान से सुन रहे थे इस नगमे को, और ये फरमाइश मेल मौसूल हुआ पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुरेश आशीष गौड़ का आवास विकास कॉलोनी कासगंज से। और अगले मेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार की फरमाइश थी गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, और आप हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी, गांव फरासी जिला हिसार से। और अगला ईमेल मिला है यवतमाल से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे का, इसी नगमे को सुन रहे थे बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ। और दोस्तों का जिनके नाम हो गए हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल करते हैं। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, साथ में बल्लू निषाद। तामिल निषाद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अपने मेजबान नईम के साथ। दोस्तों ये प्रोग्राम अभी जारी है, आइए पहले सुनते हैं खबरें बड़े सकीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन, और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा तामिल निषाद प्रोग्राम का।
1: ये आकाशवाणी है, बड़े सगीर की खबरों के साथ मैं अब्दुल हफीज। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफार्मों की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाइख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है

जो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में खुरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिस पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोकसभा भेज दिया गया। लोकसभा ने इस बिल को पीर के रोज मंजूर किया था। ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक कानून 1956 में तरमीम करेगा, जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस के अलावा अदालत आलिया में जजों की मौजूदा तादाद 33 से बढ़कर 37 की जाएगी। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया। राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया पर बढ़ते काम के बोझ और उभरते हुए आईनी और कानूनी मामलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की जरूरत और एक बरवक्त इसलाह है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा भारत के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मामलात के बोझ से निपटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मुअस्सर हल है। इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मामलात जेर इल्तवा थे। अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फर्क मौजूद है। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और अवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा। लोकसभा ने बैंकर्स बक्स के शवाहिद से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हम आहंग करना है और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निजाम की जरूरियात पूरी की जा सकें। इसमें यह भी इल्तिजाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिले कबूल कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आराई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई। मीटा, जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक के हैं, के सीईओ मार्क जगरबर्ग ने आज भारत सरकार से बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, इससे मुतालिक दीगर मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म के कामकाज में होने वाली गलतियों पर माजरत का इजहार किया। जराए के मुताबिक मीटा ने यह भी तस्लीम किया कि मखसूस किस्म के मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम अदा की जाती रही। भारत सरकार ने मीटा को वाजे किया कि वह सिर्फ 40 प्लेटफॉर्म की तारीफ के तहत नहीं आती क्योंकि वह खुद फैसला करती है कि कौन सा मवाद किस तारीफ को दिखाया जाए। इस पर मीटा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत का इजहार किया। आज दफा 370 और 35A को तारीखी तौर पर मनसूख किए जाने को 7 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में इसी दिन दफा 370 और 35A को मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम की जिंदगियों में कायापलट कर देने वाली तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तौसी हुई है और तालीम, हिफ्जान सेहत, सनअतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अजम का यादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदे ताबीर करने और इस सिलसिले में ताउन करने का मौका हासिल हो।
مرکز کے زیر انتظام علاقے میں بہتر بنیادی ڈھانچے، کنیکٹیوٹی، عوامی خدمات

निगम फिल्म का इनाकाम सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी ने इस नगमे को कलमबंद किया, मौसीकी रोशन की थी और पसंद किया था रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहेब बिहारी बाबू ने, गुलाज बेगम हाशमी, सैयद आलम हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी की फरमाइश थी। अजमेर शरीफ राजस्थान से आप हैं, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, साथ में उमा तिवारी और नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन की फरमाइश है। पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से मिली थी और इसी नगमे को पसंद किया था अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके ने, संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, और आप हैं सुब्रत चौधरी कोलकाता से। इसी नगमे से महसूस हो रहे थे तारक सत्यदेव, दुर्गा सत्यदेव, सृष्टि सत्यदेव, आपने स्टील सिटी भिलाई छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश हमें साल की है, और उषा मोहन, अनिल मोहन, साथ में टीरू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, और ये फरमाइश मिली मित्रनगर बेवशह से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, साथ में अदिति बंसोड़े, पंजाब रामटेके, यशोधरा शेफा की फरमाइश सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से मिली, और आप हैं चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा, सतीश अनेजा साहब, और नवासा कुट्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला पोपटकर की फरमाइश भी थी। ओम विकास राय, उषा राय, अमित कुमार है कोटवा नारायण कुमार पट्टी बलिया से, इसी नगमे को सुन रहे थे ताज मोहम्मद अंसारी, मेराज जहां और गुलाम साबिर रही आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, प्रवीण शिरमाली, मीना शिरमाली की फरमाइश कमर कॉलोनी बड़वा खरगोन से मिली, और आप हैं मोहम्मद साद

इसी नगमे की फरमाइश की गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी ने, और आप हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, लेवाई छत्तीसगढ़ से, और कमल पाठक साथ में हैं उनके, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा हैं अनारकली बाजार जगराव से, भूषण मंचो चंद्रकिरण और छाया की फरमाइश मिली पारदूप छत्तीसगढ़ से, और आप हैं राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, तन्मय गजबी, अनिष्का गजबी माफ कीजिएगा, और डूंगर गांव छत्तीसगढ़ से, इनका पूरा नाम है अनिष्का तन्मय, कुछ इस तरह से नाम लिखा है आपने, और वेडिंग खेड़ा पंजाब से विंटू थॉमस, पिंकी अरोड़ा की फरमाइश भी मुकम्मल हुई, और आप हैं बांद्रा आर्मकोट मुंबई ईस्ट से बेगम सोनम शेख, मारिया शेख, मोहम्मद अरीब शेख, और छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, इकबाल अहमद और साथ में इमरान अहमद और अहले खाना, और गगनदीप थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रेम थांडी है नवाशहर टोरवाल पंजाब से, और ये फरमाइश मेल मिला है डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार का, अमीर खुसर रोड गंज टंडवाड़े से, कल्पना मदन झा, मानव और मयंक है निर्मला अपार्टमेंट नरोड़ी फाटक लाडवापी गुजरात से, और अगला ईमेल हो गया है रिपीट, इसको करते हैं साइडलाइन, और ही फरमाइशी ईमेल विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, योगेश कड़वासरा का है, आपने तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान के गांव कराना से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। इस बीच में नगमा भी हो गया है मुकम्मल, एक और नगमा आपकी नजर करते हैं, कमर जलालाबादी का लिखा नगमा है, मुकेश की आवाज में कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी और फिल्म है उपकार।

से नफने को पसंद किया कुछ और दोस्तों ने। शेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और साथ में लोकेश एस काले, विनायक बिंडे, मंगला शुभम की फरमाइश। मुझे लगता है ये पहले शामिल हो चुके, तो आगे बढ़ते हैं आप। और ये फरमाइश ये मिला है जमशेदपुर से अनुपम कुमार यार पूर्व सिंह और राकेश कुमार का। और इसी नफने को सुन रहे हैं स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुकटुक और उनके कुछ और साथी। और आप हैं अभिजीत गोहनकर, रही सरिता गोहनकर, अर्जुन गोहनकर डुकू मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, और दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा की फरमाइश चौटाला महाराष्ट्र से मिली है, राजस्थान से धर्मिंद छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और ये फरमाइश ये मेल उन दोस्तों का जो हो गए हैं शामिल, तो आगे बढ़ते हैं। उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो और शेख और करिश्मा है, हिपस होगा लातूर से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता है कलेरा मोहल्ला पटियाला से, और मनमोहन राजावत राज, मधुर राजावत, राशि रक्षित।

इसी ने अपने को पसंद किया जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी ने, और आप हैं निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई और शेख चांद फारूक और उनके कुछ और साथी, किशन सपकाल आशा सपकाल विशाल सपकाल शास्त्री नगर बीड शहर से, जॉन डिकेस्ट रोसी और विलिस की फरमाई जनकपुरी सहारनपुर से मिली है, और आप हैं पलसी महाराष्ट्र से विजय शेखोकार, रेणुका शेखोकार और ऋषिकेश और उनके कुछ और साथी, एम ए वही दुमानी डॉक्टर मोहम्मद जमीर मोहम्मद फसी फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से, नर्मदा पार्क मंगल वेडा से हैं अनिल पटेल मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, और तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रा विश्वकर्मा मीरा विश्वकर्मा चेतन विश्वकर्मा की फरमाइश भी हो गई है पूरी, और कोली नांदेड़ से नारायण का

और अब शामिल हो रही मिल के जरिए आनंदाज सागर, तरलोता सागर, चांदखेड़ा, अहमदाबाद से। और ये फरमाइशी ईमेल मिला है कमालगंज फरोखाबाद से तस्नीम अहमद फारूकी की जानिब से। सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, एकता कॉलोनी रोहतक से हैं। नागपुर महाराष्ट्र से विठल यादव, अनुसुईया यादव, पवन राजे यादव भी हैं। और मुख्तसर पंजाब से बाब सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, लवनीत ऋषि की फरमाइश भी शामिल हो गई है। नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, सुरेश शर्मा है मंडी हरजीराम मलोट से। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। और कुछ और ईमेल भी रिपीट हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बेगुन राबिया शेख, साथ में रहीम मुन्ना। और अगला ईमेल फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशाल और विशु खेड़ा का। और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं आप। और आकोट महाराष्ट्र के बालू पाटिल, सविता पाटिल, नितिन पाटिल और उनके कुछ और साथी, और शंभू दयाल कटक, विमला देवी, योगेश है गांव जाखोद राजस्थान से। और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा शबनम और अहले खाना की जानिब से। और ये फरमाइशी मेल मिला है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति का, पेपर रोड सरगांव 36 से।

0: बोमपट्टी में धोनी व्यास है, अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य कुमारी और उनके बहुत सारे साथी और डीएमएल रिपीट है, इसको भी करते हैं साइड लाइन। परांताप डोरा से वली सारी बेगम असमा और यहां नामों के साथ कुछ छेड़छाड़ है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको यहीं रोक दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करण राजस्थान से, राजू टूटे जा खुशदिल, उर्मिला टूटे जा साथ में, शिव सेठी करणपुरी, सोमदत्त साथ में, गुरमंत कौर, मनु और ज्योति नाभा पटियाला पंजाब से। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। नुमैर मैसौल सीतावनी बिहार से नाजिया नूरीना, शाजिया शाहिनाद और नुसरत जहां नाज की फरमाइश भी हो गई है मुकम्मल। और आप हैं पुरानी बागपत से इलियास मुस्कान कुरैशी, रानी कुरैशी, बाबा जैद कुरैशी और उनके कुछ और साथी। और ये फरमाइशी ईमेल उन दोस्तों का जो पहले शामिल हो चुके हैं, तो जाते जाते एक ईमेल और शामिल कर लेते हैं। और ये ईमेल है सागर आरबी महाराष्ट्र, नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शन मिर्गे, डॉक्टर प्रियंका काल पांडे का, और इस बीच में नामा भी हुआ मुकम्मल। तो ये थी तमिल शत प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं हाल ही में संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर। और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे इस विधेयक के विभिन्न आयामों पर और साथ ही जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को लेकर जो पुरानी स्थिति थी और अब इस विधेयक के बाद जब ये अधिनियम के रूप में हमारे सामने आएगा तो उसमें क्या बदलाव आएंगे, क्या सामाजिक और इसमें प्रशासनिक जो जटिलताएं थी उनको दूर करने में इससे मदद मिलेगी। हम इस विषय पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे विशेषज्ञ सुविमल भट्टाचार्य जी। सुविमल जी बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: सुविमल जी। अगर हम भारत में नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे सामने 1969 का एक मूल कानून है जिसमें जन्म और मृत्यु का जो रिकॉर्ड है वो स्थानीय प्रशासनिक रिकॉर्ड माना जाता रहा है। लेकिन जब ये विधेयक अब संसद में पारित हो चुका है और अधिनियम के तौर पर ये विधेयक हमारे सामने आएगा तो क्या कुछ इसमें हमें तब्दीलियां देखने को मिलेंगी?
3: देखिए, ये बहुत जरूरत था इस संशोधन को लाने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग आपकी जो जन्म और मृत्यु समय पर रजिस्टर नहीं करते हैं और जो एक प्रशासनिक रूप से भी तकलीफ होते थे, बहुत सारे फ्रॉडुलेंट गतिविधि भी चलते थे इस डेटर पार्ट में। और जब हमारे आगे की जो

0: वेरिफिकेशन पर्पसेस या बहुत सारे बेनिफिशियरी पर्पसेस के लिए जब करेक्ट रिकॉर्ड सही रिकॉर्ड रखना जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए इसको शुरू से ही लाभ के इसमें सारे जो बदलाव लाना था इसलिए इसको लाया गया। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में जो ये जन्म की पूंजीकरण ये 86.6 2014 में जो था उससे 99.1 तक पहुंच गया 2024 में, और मृत्यु कर पूंजीकरण 72.99 तक आ गया। तो ये जो एक बदलाव आया था मुझे लगता है कि इसके साथ साथ ये सही और वेरीफाइड तरीके से ये पूंजीकरण होना चाहिए, तभी आगे एक करेक्ट और रिकॉर्ड सिस्टम में रहेगा। और ये काफी दिन हमारा इसमें बहुत उसमें देखा जाता था कि एज बेनिफिट के लिए बहुत लोग अपने जन्म की तारीख गलत या कम करके डालते हैं। आप बहुत सारे मैंने सरकारी संस्थान में भी देखा है कि बंदा देखने में लग रहा है कि वो रिटायरमेंट एज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन उम्र में वो 50 भी नहीं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए इस तरीके के जो फ्रॉडुलेंट गतिविधि होते थे इनको भी रोकना जरूरत था, इसीलिए इस संशोधन को लाया गया था।
1: ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने सुविमल जी बताई कि जो सत्यापन या वेरिफिकेशन है उस पर महत्वपूर्ण फोकस है इस विधेयक में, और जो जन्म और मृत्यु है वो नागरिकों की एक बहुत एक ऑथेंटिक डेटा होना जरूरी है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे में ये भी है कि जो पहले हम देखते थे कि जैसा आपने भी बताया कि जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के जो आंकड़े थे उनमें बहुत बिखराव था, अब ये प्रावधान है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा नागरिकों का। तो ऐसे में जो पूरा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारे सामने नागरिकों का जन्म और मृत्यु को लेकर सामने आएगा, उससे कैसे आंकड़ों के इस बिखराव को समेटने में मदद मिलेगी और कैसे हमारे सामने पुख्ता और सही आंकड़े जन्म और मृत्यु को लेकर नागरिकों के सामने आ सकेंगे?
0: देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में ये सारे रिकॉर्ड्स रहने का पहले से करना चाहिए था। हमारा यहाँ ये गतिविधि राज्यों का बीच में राज्यों अपना तरीका से इसको रिकॉर्ड रखते थे और बहुत समय ये एक कोऑर्डिनेशन का भी इश्यूज होते थे। जब 2023 में ये कानून का ओवरहॉल हुआ था तब बर्थ सर्टिफिकेट को एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ की उसको ठीक किया गया था और जगह और डेट ये दोनों सब की पब्लिक सर्विसेज जो दिया जाता है जैसे स्कूल एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, आधार और सरकारी नौकरियों के लिए भी इसको आधार बनाया गया था कि एक सिंगल मैंडेटरी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सिंगल मैंडेटरी प्रूफ को आप लागू करने के लिए एक कॉमन डेटाबेस में होना चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के काम देश में हुए हैं लेकिन ये देखा जाता था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अलग अलग डेटा फेंकते हैं। तो इसको एक कॉमन डेटाबेस में जब लाते हैं तो ये वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए जरूर सही होते हैं लेकिन जो आपकी वेरिफिकेशन के अलावा भी जो एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में सुविधा के लिए उसमें भी बहुत मदद होते हैं।
1: बिल्कुल, और हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे समय बदला है तो अब हमारी जो मांग है वो दूसरी तरह की है, अब हम एक डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में हमारे जो कानून और अधिनियम है वो भी उनका ढांचा भी डिजिटल होना, उसका स्वरूप भी डिजिटल होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जब ये संशोधन संसद में पारित हुआ है तो उसका जो एक डिजिटल स्वरूप अब हमारे सामने आएगा उससे जो आम नागरिक है उन्हें कैसे अपने स्तर पर फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि हमारा जो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड है, खासतौर पर अगर जन्म के ही हम बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट है वो हमें कई अवसरों पर पड़ती है। तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाएगा कि एक डिजिटल रूप से हमारे सामने कॉमन डेटाबेस से एक आम नागरिक को जटिलताओं से दूर होने में उसे मदद मिलेगी?
0: देखिए, नागरिक के लिए ये बहुत अच्छा कदम है इसीलिए क्योंकि हर जगह में इनको बार बार वेरिफिकेशन करना ये जरूरत नहीं पड़ेगा। एक कॉमन डेटाबेस जहाँ एक स्थिर डेट ऑफ बर्थ रहेगा उसी के साथ हर संस्था जो इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वेरिफिकेशन के लिए वही पे उस रिपोजिटरी से इसको टैली करेंगे। तो इनको बार बार हर जगह एक्सप्लेनेशन देना या दिखाना वो काम से ये जो एक टेडियस एक जॉब होते हैं कि इनको हर जगह में अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिखाना पड़े वो मेरे ख्याल से एक नागरिक का रूप में उनके लिए एक सुविधा होता है। दूसरी बात होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिसिटी जिस तरीके से लोगों का बहुत सारे लोगों का अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी देखे गए हैं कि वो कहीं एक

0: ही आदमी कभी इस डिस्ट्रिक्ट में दाखला किया ही किया हुआ है, तो ये जो डुप्लीकेट की जो बात आती थी वो भी दूर हो जाते। तो एक साफ सुथरा डिजिटली रिकॉर्डेड डेटाबेस में जब नागरिकों की रिकॉर्ड्स रहते हैं तो आगे इनके लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है कि क्या किस तरीके से वो नागरिक प्रमाण करें। थोड़े बहुत आउट चेंजेस लाए गए कल जैसे राज्यसभा ने पारित किया है, मुझे लगता है ये जो एक एनोमली था पब्लिक पोजिशन में वो साफ हो जाएगा।
1: मृत्यु की जो रिकॉर्ड की अस्पष्टता जो थी उसमें कई बार ऐसी अड़चने हमें व्यावहारिक तौर पर देखने को मिलती थी, चाहे वो एक अगर उदाहरण लें संपत्ति का हस्तांतरण हो, पेंशन, बीमा क्लेम, इस तरह से जो कई कागजी अड़चने थी वो भी क्या आने वाले विधेयक से आम परिवारों को राहत देंगी कि अब मृत्यु के रिकॉर्ड में स्पष्टता रहेगी?
0: जरूर, अगर आप देखें तो जब आधार लागू किया गया था तब देखा गया था कि बहुत सारे जगह में लोग गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी उनकी पेंशन जा रही है या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के माध्यम से जो बेनिफिट जाते थे वो भी जा रहे हैं। तो ये जो मैंडेटरी रूप से ये डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है और जिस तरीका से आपकी डेथ सर्टिफिकेट को इश्यू किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में, इससे ये सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होते थे या बहुत सारे केसेस में फ्रॉडुलेंट के अलावा भी बहुत लोग नहीं जानते कि कहां से डेथ सर्टिफिकेट में या डेथ सर्टिफिकेट मिलने में भी जो तकलीफें होते थे ऑफिस में, मेरे ख्याल से ये सारे दूर हो जाएंगे। तो इससे आपका लोगों का जो जेन्युइन स्थिति है, जैसे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा डेथ के बाद या जो पेरेंटल ट्रांसफर्स होते हैं या बहुत सारे जगह में आपकी एक डेथ के साथ जब बंद होते हैं खाता, तो इसी में बहुत मदद होगा।
1: जी, आपने अभी SIR का जिक्र किया तो मैं मतदाता सूची पर ही आना चाहूंगा। जब हमारे पास एक स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे जन्म और मृत्यु को लेकर, तो एक ऑटोमेटेड हमारे पास वोटर लिस्ट को अपडेट करने की सुविधा क्या हो पाएगी? अगर हमारे पास स्पष्ट रिकॉर्ड होंगे तो चुनाव निर्वाचन आयोग के पास 18 वर्ष पूरी कर चुके जो युवा मतदाता है उनकी स्वतः सूची को अपडेट करने में इससे कुछ मदद जरूर मिलने वाली है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल, बहुत मदद मिलेगी क्योंकि अब जो प्रयास हो रहे हैं उससे वो जो रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल साफ हो रहे हैं और करेक्ट हो रहे हैं। इसमें कोई जिस तरीका से आपकी टाइमिंग दिया गया है कि 30 दिन की डिले के पहले क्या हो सकता है, 30 दिन डिले के बाद क्या हो सकता है, एक साल या दो साल, इसमें जिस तरीका से माइन्यूटली ये प्रोविजन्स लाए गए उससे क्या होगा कि लोग अपने आप एक डिसिप्लिन की तौर से वो अपने आप बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और जो बर्थ सर्टिफिकेट जिस हिसाब से लेंगे वो उसका भी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे एकदम सही बर्थ रिकॉर्ड होगा और जो आगे इनकी जो और सारे बेनिफिट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन वो करते रहेंगे उसमें वही टेली होगा। तो इलेक्शन की कार्ड में भी जो इश्यूएंस होगा 18 साल होने पर ये इसी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर होगा और जो सही डेट ऑफ बर्थ है।
1: एक और सवाल मेरे मन में आया कि जैसे खासतौर पर चुनौतियां उन बच्चों के साथ भी होती थी जो विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे, जैसे सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके बच्चों के जन्म के डेटा को लेकर, या फिर जो गोद लिए हुए बच्चे हैं या जिनके माता पिता नहीं है उनके जन्म के रिकॉर्ड में, तो क्या कुछ ऐसे विशेष प्रावधान इस विधेयक में दर्ज हैं जो इन विशेष परिस्थितियों वाले बच्चों के जन्म के रिकॉर्ड को भी सही तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे और उनको किस तरह से फायदा होगा इससे?
0: जी, 2023 में जब 1969 की जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट की अमेंडमेंट लाए गए थे उसी में ये सारे केसेस को बड़े विस्तार रूप से देखा गया है और उसका लिए किस तरीके से उसको एप्लीकेशन होगा वो भी दिया गया। अब जो आया है इस कल राज्यसभा में पारित किया, इसमें विशेषकर ये जो आपकी दाखला में या एप्लीकेशन में जो डिलेज होते हैं इसको देखने के लिए, जी आप अगर ये 30 दिन तक डिले होते तो ये डायरेक्ट लोकल अथॉरिटी इसको रजिस्टर कर सकता है प्रिस्क्राइबर, अगर 30 दिन से एक साल है तब फिर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और लेट फी के साथ होगा, एक साल से दो साल होता है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो नए प्रोविजंस आए कि एक साल और दो साल से ज्यादा एक्सीडिंग जो डिलेज आए तो उसमें, तो ये इसमें ऐसा कोई नया कुछ नहीं लाया गया जो 23 में संशोधन किया था, जहां तक आपने जो विशेष वर्ग के कुछ केसेस उदाहरण बताए उनके लिए ऐसा इसमें कोई कल की उसमें कुछ नहीं है।
1: एक अंत में मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से इस तरह के विधेयक संशोधित रूप में हमारे सामने आते हैं सामने, उनकी जरूरत समय के साथ होनी कितनी जरूरी है कि उसमें परिवर्तन आए। अगर हम जन्म और मृत्यु संशोधन विधेयक का ही उदाहरण लें, तो जो टारगेटेड डिलीवरी है योजना

0: योजनाओं की या जो कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच है या जो सही मानक हैं लोगों तक पहुंचाने, उनमें सरकार को कितनी और प्रशासन को कितनी मदद मिलती है जब एक परिपक्व और संशोधित समय के साथ विधेयक हमारे सामने आता है?
1: जरूर, ये बहुत फायदा होता है, इसीलिए क्योंकि हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स पहले से उसको उस इंटीग्रिटी से किया नहीं गया है। जैसा बहुत सारे बांग्लादेश से भी आए माइग्रेंट लोगों को भी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए, तो हमें किसी एक समय इन चीज को साफ करना था। अब ये जो प्रयास हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ में, जब बर्थ्स रजिस्ट्रेशन है तो उसी में ये क्लैरिटी रहेंगे कि जो सही है वही आपकी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो साफ करने का जो काम प्रयास था ये बहुत सही समय पे हुआ है, क्योंकि इससे भी आगे आप आज हम आधार के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी वो सिस्टम ऑलमोस्ट क्लीन कर चुके हैं, लेकिन आगे भी इस तरीके से और आगे इसको कैसा और सख्त किया जाए कि किसी तरीके से फ्रॉडुलेंट एंट्रीज ना आए सिस्टम में, इसीलिए समय समय पर संशोधन लाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आजकल जो नेटवर्क्स होते हैं और आपकी वेरिफिकेशन की सुविधा भी बहुत बढ़ चुका है, सो मुझे लगता है ये बेसिक करेक्शन जो इस संशोधन से आएगा इससे बहुत सारे आगे फायदा होगा।
0: जी बहुत धन्यवाद सुमिबल जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर आपने विभिन्न आयामों पर हमारे साथ अपना विश्लेषण रखा, बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुबिमल भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत कवालियां फनकार नवाज साबरी कवाल और हमनवा।

0: दिए गए बयान पर सहाफियों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से नाम निहाद योम इस्तेसार मनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अटूट और नाकाबिले तंसीख हिस्सा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को दिए गए आईनी इकदाम भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इन इकदाम पर तबसरा करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस वक्त पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर POJK में बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुशाहदा कर रही है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कल मगरबी एशिया और दीगर खित्तों में बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान भारतीय मल्लाहों की सलामती और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए सीनियर अहदेदारान के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सोनोवाल ने कहा कि मरकज ने मुसलसल मल्लाह के पहले का तरीकेकार इख्तियार किया है, जिसके सबब दुनिया भर में मल्लाहों की खिदमत फराहम करने वाला भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बना है। उन्होंने कहा कि DGCOMM सेंटर मुसीबत के वक्त अलर्ट की निगरानी करने और बचाव कार्रवाईयों में तालमेल की खातिर काम कर रहा है। जनूबी कोरिया के आसन में जारी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी मिलीजुली रही। खवातीन सिंगल्स में सभी 7 खिलाड़ी दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब रहीं, वहीं मर्दों के सिंगल्स में सभी 6 खिलाड़ी इफ्तिताही राउंड में ही बाहर हो गए। खवातीन सिंगल्स में अनमोल खर्ब, मानसी सिंह, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिया, ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वलीशेट्टी ने शानदार जीत के साथ दूसरे राउंड में जगह बना ली। अनमोल खर्ब ने हांगकांग चीन की लो सिन यान को हराया, जबकि मानसी सिंह ने कोरिया की किम जो यून को शिकस्त दी। रक्षिता रामराज ने कोरिया की आ यून यू को, जबकि अश्मिता चालिया ने जापान की रिरीना हिरामोतो को हराया। ईशारानी बरुआ ने कोरिया की ली सो ही को, वहीं तन्वी शर्मा ने चीन की आन की युआन को शिकस्त दी। श्रियांशी वली शेट्टी भी चीनी ताइपे की यू पो पाई को शिकस्त देकर दूसरे राउंड में पहुंच गयी। हालांकि आकर्षी कश्यप को राउंड ऑफ 32 में कोरिया के मिंग जी किम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मीटा के CEO मार्क जगरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेमाल से मुतालिक मवाद, डीपफेक मवाद और प्लेटफार्मों की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खुरेजी बंद करे, दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। और कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ये खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 kHz, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडेज पर हमारी नशियात जारी है। क्लासिक मौसीकी में लीजिए आप सुनिए निजामुद्दीन खान का तबले पर बजाया 3 ताल।

0: वरुण खटोला फिल्म का नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में और इस नगमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल हफीज से खबरें सुनिए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 37 करने का बिल मंजूर कर लिया है। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देने वाले बिल को भी मंजूरी दी। मीटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, डीप फेक मवाद और प्लेटफॉर्म की खामियों पर भारत सरकार से माजरत का इजहार किया है। दफा 370 और 35A की मनसूखी के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन आईनी तब्दीलियों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तरक्की और आवाम को बाइख्तियार बनाने के अमल को फरोग मिला है। भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खुरेजी बंद करने, दहशतगर्दी नेटवर्क का खात्मा करे और भारत के उन इलाकों से दस्तबरदार हो जाए जिन पर उसने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब समेत भारत के 7 खिलाड़ी खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में बहस के बाद इस बिल को वापस लोक

ही मामलात के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफा वक्त की जरूरत और एक बरवक्त इसलाह है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए असल कानून में तरमीम करते हुए पिछली मरतबा भारत के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मामलात के बोझ से निमटने के लिए जजों की तादाद में इजाफा एक मौसर हल है। इस साल 1 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से ज्यादा मामलात जेर इल्तवा थे। अगरचे 2019 से सुप्रीम कोर्ट तकरीबन अपनी मंजूर शुदा मुकम्मल तादाद यानी चीफ जस्टिस समेत 34 जजों के साथ काम कर रही है, फिर भी पिछले साल 75,410 नए मुकदमात दर्ज किए गए और 65,000 से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है क्योंकि नए केसेस के इंदराज और उनके हतमी फैसलों के दरमियान एक मुस्तकिल फर्क मौजूद है। तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने से मुकदमात के जल्द फैसले होंगे और आवाम को बरवक्त इंसाफ मिल सकेगा। लोकसभा ने बैंकर्स बक्स के शवाहिद से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी। इस बिल का मकसद बैंकों के रिकॉर्ड से मुतालिक शवाहिद के कवानीन को जदीद तकाजों से हम आहंग करना और उन्हें मौजूदा डिजिटल बैंकारी निजाम के मुताबिक बनाना है। इस बिल के जरिए कानूनी फ्रेमवर्क को जदीद बनाया जाएगा ताकि मौजूदा बैंकारी निजाम की जरूरत पूरी की जा सके। इसमें यह भी इल्तिजाम है कि बैंक के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल नकल अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल कानूनी तौर पर दुरुस्त और नाफिजुल अमल होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर यह बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुसलसल हंगामा आरई के बावजूद लोकसभा ने बगैर किसी बहस के इस बिल को मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई थी। मीटा जो दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की असल मालिक है के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से मुतालिक मवाद, इससे मुतालिक दीगर मवाद, डीफेक मवाद और प्लेटफॉर्म के कामकाज में होने वाली गलतियों पर माजरत का इजहार किया। जराये के मुताबिक मीटा ने यह भी तस्लीम किया कि मखसूस किस्म के मवाद को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी रकम अदा की जाती रही। भारत सरकार ने मीटा को वाजे किया कि वह सिर्फ 40 प्लेटफार्म की तारीफ के तहत नहीं आती क्योंकि वह खुद फैसला करती है कि कौन सा मवाद किस तारीफ को दिखाया जाए। इस पर मीटा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माजरत का इजहार किया। कल दफा 370 और 35 के तारीखी तौर पर मंसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल हो गए। इस मौके पर अपने पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2019 में इसी दिन दफा 370 और 35 ए को मंसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आवाम की जिंदगियों में कायापलट कर देने वाली तब्दीलियां आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मरकज के जेर इंतजाम दोनों इलाकों में बुनियादी ढांचे में तोसी हुई है और तालीम, हिफाजत, सेहत, सनअतकारी और खेलकूद जैसे शोबों में मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खवातीन और हाशिए पर रह रही बिरादरियों और उन अफराद को जिन्हें दहाइयों से बुनियादी आईनी हकूक नहीं दिए गए, उन्हें आईन के मुकम्मल नफाज से बाख्तियार बनाया गया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की तरक्की के हुकूमत के अजम का इरादा किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी को विकसित भारत के लिए बड़े ख्वाब देखने, उन्हें शर्मिंदे ताबीर करने और इस सिलसिले में ताउन करने का मौका हासिल हो। दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस मुकम्मल होने के मौके पर कानूनी इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तारीखी कदम से जम्मू कश्मीर में तरक्की में तेजी आई है। दफा 370 को मंसूख किए जाने के 7 बरस बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, हुक्मरानी, सियाहत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में खातिरख्वाह तरक्की हुई है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बेहतर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, अवामी खदमात और इक्तिसादी तरक्की के जरिए अक्सर तब्दीली आई है जिससे हुक्मरानी और मेयारी जिंदगी बेहतर हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने कल पाकिस्तान से कहा कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में खुरेजी बंद करे। अपनी सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल एतमाद, काबिल तस्दीक और ठोस कार्रवाई करे। नीज भारत के उन तमाम इलाकों से फौरी तौर पर दस्तबरदार हो जाए जिस पर उसने गैर कानूनी तौर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के वजीर खारजा की जानिब से नाम निहाद योम इस्तेसाल से मुतालिक दिए गए बयान पर सहाफियों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की जानिब से नाम निहाद योम इस्तेसाल मनाने की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है।
جناب جیسوال نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ

0: एक क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानी हरक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक कल ताशकंद में हुई। बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा शिक्षा, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुखरोब जोन सोजिक जोनोविच सिरोजोव ने की। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अंतर्गत दोनों देशों में विशेष प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे जिससे सैनिक एक दूसरे के अनुभवों और बेहतर रणनीतियों को साझा कर सकेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने ताशकंद स्थित सैन्य सुरक्षा और रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बड़ी क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। नेटफ्लिक्स इंडिया ने बताया कि बैठक में भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच पर ले जाने की साझा सोच पर बातचीत हुई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। वहीं झारखंड ने उत्तर प्रदेश को शूटआउट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is a need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers, books and to align it with the contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of the Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, constitutional changes made in 2019 assured development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded opportunities in the areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
2: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated. Both heritage and development have received a boost. Employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
1: Prime Minister Narendra Modi underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships in the Indian Institute of Creative Technologies, IICT, and the National Film Development Corporation, NFDC. Lalit Kala Academy yesterday celebrated its 72nd Foundation Day in New Delhi, marking more than 7 decades of promoting and preserving India's rich visual arts tradition. Joint Secretary in the Ministry of Culture, K.K. Mishra, graced the occasion and launched two publications, Chitra Kanudasai and Kala Guru Ravishankar Raval, authored by Kanaiya Lal Fakir Chand Patel. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asun with 7 players advancing to the second round of women's singles, while all 6 men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Kaur, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita Ramraj, Ashmita Chaliha, Isharani Barua, and Shriyanshi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. And that is the end of this news bulletin.
3: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10 प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे. इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे और उन यादों में ले जाते हैं जो आपकी प्लेलिस्ट में गीत शायद रखे हुए हैं और आप एक मूड के अनुसार उन्हें सुनते होंगे, लेकिन हम हर रात 1:10 पर लेकर आते हैं इस कार्यक्रम को उन यादों को ताजा करने के लिए. तो चलिए चलते हैं उस सफर पर और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म बाबुल से तलत महमूद की आवाज में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं शकील बदायूं ने और संगीत से पिरोया है नौशाद ने.

अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त को फिल्म बाजी से ये गीत। अगला गीत पेश है फिल्म अनीता से, जिसमें आवाज आप सुनेंगे मन्ना डे और असरानी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था।

कार्यक्रम गीत सुनहरे आप सुन रहे हैं और अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीब से, जिसमें आवाज आप सुनेंगे लता मंगेशकर की।

और अब आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसी तारीफ की ओर जो आपकी जुल्फों की नहीं, आपकी बातों की नहीं, आपकी आंखों की तारीफ करेंगे। और आंखें कैसी होती हैं? शायद सागर जैसी। जी हाँ, आप सही समझे। फिल्म सागर से आ रहा है ये गीत। किशोर कुमार की आवाज है, बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

अभी आपने सुना फिल्म आंधी से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत। अब अगली आवाज आपको सुनवाते हैं परवीन सुल्ताना की फिल्म कुदरत से, ये अगला गीत।

0: इसी गीत के साथ अब इजाजत दीजिए गीत सुनहरे कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाला कर्मी नहीं पाया गया। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,098 हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान की गई थी। उन्होंने कहा कि सभी चिन्हित लोगों को 40,000 रूपये की एक मुश्त सहायता राशि दी गई है। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। भारतीय रेल ने कंटेनर ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर एक ही अखिल भारतीय लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय रेल के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेन चला सकेंगे। अलग अलग मार्गों के लिए अलग अनुमति और शुल्क की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि नए नियमों से प्रक्रिया आसान होगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रेल के जरिए माल ढुलाई बढ़ेगी। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा, ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बतूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of the Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, "Constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two Union territories." In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded opportunities in areas such as education, healthcare, entrepreneurship and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
4: धारा 370 और 35 से
5: आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 ए वर डिस्क्रिमिनेटरी एंड अनजस्ट प्रोविजंस विच वर अबॉलिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019. सिंस देन द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज एक्सेलरेटेड बोथ हेरिटेज एंड डेवलपमेंट हैव रिसीव्ड अ बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव इंक्रीज्ड एंड पीपल हैव विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ.

हम आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल से बोल रहे हैं। मध्य रात्रि के 2:10 ये समय है कार्यक्रम गीत बहार का, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक। तो चलिए, गीतों की लिस्ट आपके लिए तैयार है और इस सफर पर निकलते हैं इस गीत के साथ।

0: इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024-25 में किए गए सर्वेक्षण में देश के किसी भी जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी को नहीं पाया गया है। राज्यसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2013 और 2018 के सर्वेक्षण में 58,000 से अधिक ऐसे कर्मियों की पहचान की गई थी। मंत्री ने बताया कि नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा दे रही है। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा और रचनात्मक प्रतिभाओं की बहुत क्षमता मौजूद है। इसका उपयोग भारत को वैश्विक स्तर पर कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस से मुलाकात की। भारत में श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिसरी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुण रणराजा से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के विकास के लिए उसकी जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत को गर्व है कि वो अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 93 अरब डॉलर रहा। डॉ जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के प्रति भारत की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में युगांडा की संसद में बताए गए 10 सिद्धांतों से प्रेरित है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन पवन हंस लिमिटेड ने नई दिल्ली में नॉर्वे की कंपनी नोएमी एयरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह सहयोग देश में स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों में नई तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का सामना पंजाब से और झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब ने कर्नाटक को 5-2 से, ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters, and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. It aims to modernize the legal framework to meet the requirements of the present banking system. The bill also has a provision that an electronic or digital record of a banker's book will be admissible, valid and legally enforceable as evidence. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill when the House reassembled after the first adjournment at 2 p.m. August 5, 2026 marked 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. On this day in 2019, a landmark decision marked the beginning of a new chapter in the journey of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said, constitutional changes made in 2019 ushered in development and empowerment in the two union territories. In a social media post, Mr. Modi highlighted that infrastructure has expanded, opportunities in areas such as education, healthcare and entrepreneurship, and sports have grown in both Jammu and Kashmir and Ladakh. On the 7th anniversary of the abrogation of Article 370, Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal, while talking to media, said the historic step accelerated development in Jammu and Kashmir.
4: Article 370 and Article 35A were discriminatory and unjust provisions which were abolished by Prime Minister Narendra Modi in 2019. Since then, the pace of development in Jammu and Kashmir has accelerated, both heritage and development have received a boost, employment opportunities have increased and people have witnessed unprecedented infrastructure growth. The people there are happy.
3: Prime Minister Narendra Modi underscored that India has a rich tradition of storytelling and an extraordinary pool of creative talent, which can leverage to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting, they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision on taking India's media and entertainment industry to the global

श्रोताओं, ये प्यारी सी गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज में। आइए सुनते हैं अगली गजल उन्हीं की आवाज में।

श्रोताओं, अगली गजल आइए सुनते हैं पंकज उदास साहब की आवाज में। पंकज उदास भी गजलों की दुनिया में एक जाने माने नाम है। उन्होंने भी गजलों में एक अलग ही मुकाम बनाया था जो कि, और आज भी उनका नाम बहुत मशहूर है, लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। आइए हम भी उन्हें याद करते हैं उनकी इस प्यारी सी गजल के जरिए।

श्रोताओं, गजल गायकी की दुनिया में एक गायिका भी हुई हैं जिनका नाम है चित्रा सिंह। वो भी एक मशहूर गजल गायिका रह चुकी हैं। आइए सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में ये गजल।

0: श्रोताओं, गजल गायकी में भूपेन हजारिका का भी एक अलग मुकाम है, उनकी एक अलग पहचान है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये दो गजलें।
1: भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियतें हैं। वो संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और शायर भी हैं। ये सारे गीत जिनका मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी वो गा चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद मैं पेश कर रहा हूं। भूपेन दा के गीत निजी कम हैं और आवाम के ज्यादा हैं, लोगों के ज्यादा हैं। उनकी धुनों में वहां के लोक गीतों की खुशबू बसी हुई है, इसलिए इनका अनुवाद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि जबान और अल्फाज का मुहावरा ज्यादा से ज्यादा उनके ओरिजिनल एक्सप्रेशन के पास पास रहे, क्योंकि यह ना हुआ तो ये गीत आसाम के बजाय किसी और इलाके के महसूस होंगे, जैसे पहाड़ी चढ़ते हुए पालकी उठाने वालों की हैया ना में वहां के मजदूर की फूली हुई सांस भी सुनाई देती है और इस शायर के सीने में उठती हुई टीस भी।

एक तो यह है कि भूपेंद्र के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहिगीर हो, रंगरिया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारे का सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुरु बना रहे हैं।

श्रोताओं, घड़ी की सुई अब इशारा कर रही है कि गजलों और गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। आइए सुनते हैं चलते चलते ये अंतिम गजल भूपेंद्र साहब की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

प्रस्तुति भगवान मुरुगन को समर्पित कुछ भक्ति रचनाएं स्वर टीएम सौंदरराजन का है। अर्चना कार्यक्रम में पहले प्रस्तुत है एनएस चिदम्बरम की रचना।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

Ne ba ne ba ma ne ba ma ne da ne ba ba.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। उसके बाद 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी सुन सकते हैं। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का और 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 9 और 6:55 पर आप संस्कृत में समाचार सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर आप गीतों भरी कार्यक्रम सुनेंगे गुड मॉर्निंग। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम समाचार प्रभात और 8:15 पर गुड मॉर्निंग न्यूज अंग्रेजी गीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार और 8:45 पर आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का आनंद उठा सकते हैं। सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका और 9:30 पर आप सुन सकते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल।

सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप सुनेंगे।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर ना निधि आवे ताए। सब थाई हुए सहाए दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाए दसां पातशाहिया दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दात

विद्वान विवेक दान विसह दान परोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नेओटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चौक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वालों करह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सदक परोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर करा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत ला

Thank you.

0: दो ब्राह्मण को कर लाभ को बरतर जाय जप माली ताल मिले छाई अंतर पूजा पड़े कते बासन के दुर्गा पाई छोटी ने पखंडा नाम लिये जाय तरंदा महंदा पहला
1: मानस खाने करे नवाज श्री बगाय तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पुरे ना दियो ना पिया वै साध कुड़ी रासपुरा वा पार कूड़ बोल करे आहार शम तम का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत टिका किर धोती खाई हाथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पैर प्रवान मले स्थान ले पूजे प्राण पके आक कुठा बकरा गाना चौके